0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

चाहते हो खुद के लिए सम्मान, तो कुछ सम्मान दूसरे का भी करना सीख लो। चाहते हो खुद के लिए कुछ सम्मान, तो कुछ सम्मान दूसरे का भी करना सीख लो। अकड़े रहते हो हर जगह, कभी कभी कहीं पर झुकना भी सीख लो। 5:39 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि के तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। छह बजकर 55 मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। ठीक 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर एक बार आप फिर से सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात का। 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। 8:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू में समाचार। 8:45 पर आप सुन सकेंगे म्यूजिकल दिल लगी। और ठीक 9 बजे होंगे एक बार फिर से हिंदी में समाचार। 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और 9:10 का समय रहेगा जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। हो चुके हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर

0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University yesterday evening. Mr. Modi said, "India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength." He said, "India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism." He said, "The world is watching India become the fastest growing major economy."
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers. He stressed that an 8% increase in steel and cement consumption proves that construction, housing and commercial activity are expanding rapidly. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the Islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also

हे ईश्वर, हे कृपा निधान, तेरी कृपा से चमके जग का हर स्थान। अंधकार सब दूर भगाओ, सबके जीवन में ज्योति जगाओ। सत्य मार्ग पर हम सब चलें, प्रेम सुधा रस में हम ढलें। सबके प्रति मन में दया का भाव रहे, भेदभाव का ना कोई स्थान रहे। दूर रहें हम सब अज्ञान से, भर दो जीवन भक्ति ज्ञान से। तेरी शरण में शीश नवाएं, तेरा ही हम नित गुण गाएं। हे प्रभु, चरणों में हमें दे दीजिए स्थान, हम आपके ही हैं बालक नादान। प्रभु चरणों में समर्पण।

अर्पण अपने भक्ति भावों का। 6:13 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है सुबह की सबसे खूबसूरत बेहतरीन बेला, जहां शुरुआत होती है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अर्पण की। आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं शीतल, आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

अक्सर हमें कहा जाता है कि अपने जीवन में यदि हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। पर मन के संयम का असली अर्थ मन का पूर्ण रूप से भगवान में लग जाना है।

उसका शून्य हो जाना नहीं। शून्य होने का तो अर्थ ये है कि उसका किसी भी भावना के प्रति कोई भाव ही न रह जाए। इसीलिए सारी साधना है भगवान का महत्व, उनका प्रभाव, उनको जानना। और फिर अगर हमारी बुद्धि हमें इधर उधर खींचती है और बुद्धि अगर एकाग्रचित्त नहीं होती है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन का यही स्वभाव है। हम किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को उसके स्वभाव से उलट नहीं कर सकते, और अगर हम उसके स्वभाव से उलट करने का प्रयास करेंगे तो हम वहाँ बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे और बार बार मिलने वाली असफलताओं से हम परेशान भी हो जाएंगे। तो मन को संयमित करने का प्रयास, धैर्य बनाए रखने का प्रयास अवश्य करें, पर हम ये समझते रहें कि ये अपनी जगह से बार बार भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। बस इस बात के लिए प्रार्थना तो हम परमपिता परमात्मा से ही कर सकते हैं कि हम हर एक क्षण, हर एक पल सिर्फ उनका ध्यान रखें और उनके ध्यान के अलावा हमारा और कहीं पर भी मन ना टिके।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है अर्पण, अर्पण में आज आपके साथ हूं मैं शीतल। जीवन में जो सबसे प्राथमिक है, या कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो है हमारी सांसें। हम अपने जीवन में हर एक क्षण, हर एक पल इन सांसों के आधार पर ही खुश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, किसी से नाराज हो सकते हैं, किसी के नजदीक हो सकते हैं। लेकिन कमाल देखिए कि हमारा लगभग पूरे जीवन में ध्यान बहुत कम अपनी सांसों पर जाता है। हाँ, हम योग में सांसों को नियंत्रित करने की और सांसों से अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बहुत सी गतिविधियां करते हैं, उन्हें सीखते हैं, पर क्या सीख कर भी हम अपने इस श्वास के महत्व को जान पाते हैं? और अगर नहीं जान पाते तो अब थोड़ा सा रुकिए, विराम लीजिए, सोचिए। सबसे अहम ये सांस है, और उससे भी खास बात, ये जो सांस है ये हम नहीं चला रहे, ये वो परम पिता परमात्मा हर क्षण हमारे भीतर जीवित है। हम जब भी उसे महसूस करना चाहें, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा सकते हैं। जब भी हम किसी अभाव में, किसी परेशानी से रो रहे हों, दुखी हो रहे हों, तब हम ईश्वर का अपने इतने नज़दीक होने का एहसास कर सकते हैं। तो बाहर दुनिया में जो भी चल रहा है वो चलता रहेगा, हमारी दुनिया तभी तक चलेगी जब तक हमारा सांस चलेगा। तो चलिए एक बार फिर हम मिलकर लौटते हैं अपनी सांसों की तरफ। ईश्वर की कृपा से हम जीवित हैं। आज का ये नया दिन हमारे जीवन में ढेरों खुशियों का संदेशा लेकर आ रहा है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: इस जीवन की सबसे खूबसूरत चीज है हर एक क्षण हर एक पल नए मौके का मिलना। हम उन मौकों को पहचान पाए न पहचान पाए ये हमारे ऊपर है, पर हमें हर आने वाला क्षण इस जीवन में नए कार्य करने के लिए, नए परिवर्तन करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा एक नया मौका नवाजता है। हम इस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस मौके में सफल हो पाते हैं असफल हो पाते हैं, ये बाद की बात है। पर है ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी कि हमारे जीवन में हर एक क्षण जो आ रहा है वो ढेरों नई उम्मीदों के साथ आ रहा है। बस हमें देखना ये है कि हम इस क्षण में क्या करते हैं, इस क्षण को हम किस ऊर्जा से भरते हैं, क्या हम इस क्षण में खुश रहना चाहते हैं। और यह निर्णय हमारा स्वयं का है। बेशक से बाहर युद्ध हो रहे हों, बेशक से बाहर बहुत से अभाव हों, लेकिन ये निर्णय फिर भी अंतिम रूप से हमारा ही है कि कैसी भी परिस्थितियां हों उनमें हम इस क्षण में खुश रहना चाहते हैं या गम में डूब जाना चाहते हैं।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, शोभ ना हो, जो राग विराग, छल कपट, दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाँच। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर होगा एक बार फिर आपका हमारा साथ गोल्ड सुप्रभात में। अभी आप सुनिए संस्कृत में समाचार, मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीति सम्बद्ध गतिरोधात् नीति सम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यद् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तरभारतपर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: निरंतर क्रियमाणानाम् आलोचनानाम् प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लाख करोड़ रुपयाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अतिविशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों द्वारा बनाई गई कंपनियां भी विश्व का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे।

स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्यों को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: हमारे जीवन में हम वही तस्वीर देखते हैं जो हमें सामने वाला दिखाता है। वहीं जब बात आती है अपने देश की एक तस्वीर बनाने की, तो वो तस्वीर सारा संसार देखता है जो हम भारतवासी बनाते हैं। अभी हम बार बार एड में सुन रहे हैं कि 12 और 13 सितंबर देश के लिए एक खास मौका है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकें कि हमारा कल्चर, हमारा अतिथि भाव और साथ में हमारा देश समय के साथ कितना उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे तत्व, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मक चीजों को ज्यादा सामने लाने की कोशिश करती है। तो मैं यही चाहती हूँ, पूरी आकाशवाणी टीम यही चाहती है और मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी भारतवासी यही चाहते हैं कि जब भी हमारे देश के बारे में बात हो, किसी भी देश में हो, चाहे वो ब्रिक्स के सदस्य देशों की बात हो, और खास बात यह है कि सिर्फ इसमें जो ब्रिक्स है उसी के सदस्य देश भाग नहीं ले रहे हैं, 20 देशों के जो है प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं। तो हम खास तौर से दिल्ली वासियों के पास एक खास मौका है कि हम उनको बेहतर फील करा सकें। हम बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं और

हम शायद बहुत बड़ी भूमिका भी नहीं निभा सकते हैं, लेकिन एक छोटी भूमिका भी बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है। छोटे छोटे काम, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, साथ ही में अपने देश की एक बेहतर तस्वीर की हम कल्पना भी करें और उस कल्पना में रंग भी भरें। यानी हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए जिन कामों से हमारे देश का भाग्य चमके।

दिल तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या अपने दिल की हर एक बात को हम मान लेते हैं? नहीं ना, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमारा दिल नहीं भी कहता, हमें माननी होती हैं, और उनमें से एक है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा टाइम स्वास्थ्य को देना और साथ में योगा के लिए थोड़ा सा समय निकालना। आप अपनी त्वचा को बेहतरीन, खूबसूरत, चमकदार रखने के लिए योगा कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे योगा पोजेस होते हैं जिन्हें आप बैठे बैठे व्यस्त समय में भी कर सकते हैं। मुंह में आप हवा भरिए और फिर उसे थोड़ी देर रोक कर रखिए, फिर उसे छोड़ दीजिए, और ऐसे ही छोटे छोटे योगा के आसन आप देख सकते हैं जिनसे हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और देखा, आपको याद आ गया ना कि आपको योगा करना था, लेकिन बिना किसी विशेषज्ञ और एक्सपर्ट की सलाह के आप कोई भी योग मत कीजिए।

हम चाहते हैं आप हमको यूं ही याद करते रहें, दिल आपका हमारे साथ यूं ही जुड़ा रहे, लेकिन वक्त है जो कहता है कि घड़ियों के साथ आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आप सुनिए समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे, मुझे यानी शीतल को दीजिए गोल्ड, सुप्रभात को यहीं विराम देने की इजाजत। अपना रखिए खूब ख्याल, ठीक 8:45 पर होगा आपका और हमारा साथ म्यूजिकल दिल लगी में।

0: नमस्कार। आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर इस समय मैं नवीन और शगुन स्टूडियो में मौजूद हैं आपके आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए। एक और दिन आपके सामने खड़ा है बाहें फैलाकर। आइए मुझे ग्रैब कीजिए और आज मुझे इतना खूबसूरत बना दीजिए कि आज पूरा दिन पूरी जिंदगी याद रहे, है ना शगुन?
1: Well, exactly. And let's begin the program. Well, good morning, good day, everybody. A very warm welcome to all our listeners. Wake up, shake off the sleep, and turn the volume all the way up. This is Aaj Savere, and it's with me, Shagun Chopra, and Naveen, and we are very thrilled and very excited to start it. We are blasting through your morning. Actually, we have the latest trending stories and all the information that you need to kickstart your day.
0: Shagun, रविवार का दिन आपका अपना दिन होता है। छह दिन लगा लगातार काम करने के बाद आप चाहते हैं कि आज का दिन सुकून से गुजरे, रेस्ट के साथ गुजरे। आप एक अच्छी नींद ले चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं। उठिए, दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज कीजिए। और देखिए, जब आप सड़कों पर दौड़ने के लिए निकलेंगे या पार्क में दौड़ने के लिए निकलेंगे ना, बहुत ही खूबसूरत लोग आपको दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा जैसे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे, आज आप नहीं आए दौड़ने के लिए, आज आप इतना लेट क्यों आए? तो उठिए, अपने दिन को खूबसूरत बनाइए। और शगुन ने जैसा कहा है, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दीजिए क्योंकि आज हम आपको तैयार कर रखे हैं दिन भर के लिए। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर।
1: Exactly, we'll begin now.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की कई बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीयों द्वारा बनाई गई कंपनियां भी विश्व का नेतृत्व कर सकती हैं।
2: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: The National Board of Examinations in Medical Sciences has successfully conducted the NEET PG 2026 examination for the affected candidates of the Ion Digital Zone, Sitapura Test Center in Jaipur. In a social media post, Ministry of Health and Family Welfare said that the examination was held across 5 test centers in Jaipur in a secure, fair and transparent manner. Earlier, on 30th of previous month, due to internal power supply issues at the test centers in Jaipur, Rajasthan, Examination could not be completed for 2,445 candidates.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वो आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संवाददाताओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे थे।
1: Well, we have a very interesting story. It's about vultures, the misunderstood creature.

0: Species. The Melghat and Penj tiger reserves in Maharashtra have emerged as India's most successful sites for the reintroduction of captive red vultures. And this recorded encouraging survival rates. We have more details on this from our correspondent. Let's listen in.
1: According to the Bombay Natural History Society, BNHS, 29 vultures released across the two reserves between December 2025 and January 2026 recorded survival rates of up to 78%. BNHS said the success demonstrates the viability of shifting bird release enclosures to prey-rich and inviolate tiger habitat. The results are a significant boost to ongoing efforts to conserve and restore India's declining vulture populations. The encouraging survival rates offer hope that such conservation efforts will help revive vulture populations and ensure a stronger future for these important birds. With C. Prarthna, Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
2: महाराष्ट्र के बाद अब आइए छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 की हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। अगली खबर, सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया है कि यह दावा बिल्कुल फर्जी है और वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोतों से मिली खबरों पर ही भरोसा करें, और शगुन भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोत जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को फॉलो कीजिए और हम सीधी सही सच्ची और बिल्कुल सटीक खबरें आप तक पहुंचाते हैं।
0: कंप्लीटली फैक्ट चेक। The naval force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed that it carried out strikes against three oil tankers traveling through what it described as an unauthorized route in the strategic Strait of Hormuz, as well as three vessels allegedly affiliated with the United States. The development came after the United States reportedly struck three Iranian oil tankers in the Persian Gulf and the Sea of Oman. The IRGC Navy said the U.S. strikes caused damage to the vessels and described the action as an attempt to close the Strait of Hormuz. The IRGC subsequently warned vessels operating in and around the strait to avoid what it termed unauthorized waterways.
2: अरब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को परास्त कर दिया है। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 19वें ओवर तक वो टिकी रही, लेकिन महज 55 रन ही बना सकी और आउट हो गई। ये T20 में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब वक्त है आपके शहर की खबरें जानने का, तो चलिए सबसे पहले शगुन के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है चेन्नई में।
0: Well, yes, in Tamil Nadu, all the district administration authorities have issued directions on account of Ganesh Chaturthi celebrations on the 14th of this month, beginning with 14th of September. And the regulations are that only idols made up of natural, biodegradable, eco-friendly raw materials without any toxic, inorganic raw materials such as traditional virtuous clay and mud without plaster of Paris, they will be allowed for safe immersion in water bodies, and it makes a lot of sense. No toxic inorganic raw materials should mix up with water bodies, right? And use of toxic non-biodegradable chemical dyes or oil paints, synthetic based paints on idols should be discouraged, and the idols should be submerged in designated water bodies only.
2: बिल्कुल शगुन, ये एक civic sense होती है, एक सभ्य नागरिक की एक sense होती है कि आपको किस तरह से अपने शहर को बचाना है, किस तरह से प्रदूषण को कम करना है, और बहुत सी ऐसी तकनीक है जिससे आप इस तरह के toxic chemicals जो हैं उनको आप dispose of कर सकते हैं,
0: right.
2: लेकिन कहते हैं ना कि आसानी से जो काम हो जाए इसलिए लोग क्या करते हैं, जो भी आपने बताया,
0: राइट। सो इको फ्रेंडली मटेरियल्स शुड बी यूज्ड। नाउ वी आर हेडिंग टू बेंगलुरु।
2: बिल्कुल।
0: मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड जल शक्ति वी

0: Manna today flagged off an assured transit time container train service connecting Whitefield ICD in Bengaluru with Tughlakabad in Delhi via Tondiarpet, Chennai. Launched by Concor in collaboration with Indian Railways, this service will operate every Saturday with a scheduled transit window of 166 hours. Mr. Somanna said the service, this is first of its kind in South India, a short transit time container. This would benefit industries in Bengaluru and surrounding hubs by improving supply chain efficiency, inventory management and production planning. Now, Naveen, we are heading to Hyderabad. So, emphasizing that a healthy nation forms the bedrock of a developed country, Union Minister for Coal and Mines, G. Kishan Reddy, stated that achieving the vision of Viksit Bharat by 2047 requires a sustained focus on health, nutrition, sanitation, fitness and the overall well-being of women and children. So, addressing the valedictory event of the five-day Poshan Maah celebrations at AV College grounds in Hyderabad, G. Kishan Reddy urged citizens to transform nutrition and fitness awareness into a widespread people's movement rather than leaving it as a government initiative. So it should be in the hands of the individuals as well to apply it, to follow it. He highlighted the vital role of youth and students in promoting healthy habits and commended the interactive competitions organized during the event.
1: और आइए अब आपको दिल्ली, मुंबई और कोलकाता लिए चलते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कल नई दिल्ली में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी सड़कों के पक्कीकरण और उनके हरितीकरण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मानक ढांचे के अनुरूप था। अगली खबर, दिल्ली नगर निगम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक के आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली नगर निगम के साथ साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक का उद्देश्य अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कल आगामी शब्दोत्सव की तैयारियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के माध्यम से आयोजन को और अधिक गरिमामय तथा जन जन को जोड़ने वाली रूपरेखा तैयार करने के लिए थी। मुंबई का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आर्थिक सहयोग से अलग हटकर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी सम्मान और संवाद को मजबूत करने का आह्वान किया। कल मुंबई में ग्लोबल इंपैक्ट फोरम 2026 के दूसरे संस्करण के उद्घाटन में उन्होंने ये बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी कर मौजूदा भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा करने और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बात नवी मुंबई की। नवी मुंबई नगर निगम के प्रमुख कैलाश शिंदे ने आगामी 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजनों को अंतिम रूप देने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। ये सम्मेलन 14 से 15 सितंबर को होगा। वहीं महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए सेवानिवृत्ति सम्मान योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य परिवहन और धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र यात्री परिवहन चालक कल्याण बोर्ड ने 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 735 सदस्यों के खातों में 10,000 रुपए का मानदेय जमा किया है। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कल डेकर्स लेन समेत एस्प्लेनेट इलाके में व्यस्त खाद्य केंद्रों में खाद्य गुणवत्ता का निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षकों ने विभिन्न भोजनालयों में खाना पकाने के इस्तेमाल में होने वाली सामग्रियों की जांच की और खराब गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कई दुकानों से बड़ी मात्रा में मिठाइयां जब्त की और उन्हें बंद किया। और अब पलटते हैं एक और पन्ना आज सवेरे का और जानते हैं कि कैसा है आपके शहर का मौसम।
0: वेल अगेन लेट्स बिगिन विद चेन्नई। Chennai is likely, partly there will be the possibility of moderate rain or thunderstorm with partly cloudy sky, and the temperatures are expected to range between minimum 27 degrees Celsius and maximum 35 degrees Celsius. Bengaluru, if we talk about Bengaluru, it is forecast to experience generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. The minimum temperature is expected to be around 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. And Naveen, Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. Temperatures are expected to range from 25 degrees Celsius at the minimum to 32 degrees Celsius at the maximum in Hyderabad.
1: Delhi ka rukh kare to Delhi mein aamtaur par mausam kal jaisa hi rahega. तापमान जो है 32 डिग्री मैक्सिमम रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और आज भी बारिश होने की संभावना है ऐसा मौसम विभाग कहता है और अगर कल जैसी बारिश हो गई शगुन तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे मध्यम बारिश होने की संभावना है तापमान 33 डिग्री और 27 डिग्री के आसपास रहेगा और मुंबई के लोगों के लिए बारिश तो आम बात है और वो हमेशा उसका ख्याल भी रखते हैं आज भी आप हल्की बारिश महसूस करेंगे महसूस क्या करेंगे आप पर आज भी हल्की बारिश हो सकती है अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहेगा तो ये था आपके शहर का मौसम और अब बात करते हैं आज के दिन की हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है शगुन और आज का दिन खास है उन लोगों के लिए जो किताबों के शौकीन हैं कहते हैं कि कुछ सफर पैरों से तय होते हैं और कुछ सफर आंख बंद करके तय किए जाते हैं और कुछ सफर बस एक किताब खोलते शुरू हो जाते हैं एक किताब जो हमें हमारे कमरे में बैठे बैठे दुनिया घुमा देती है कभी हिमालय की चोटियों तक ले जाती है तो कभी समुद्र की गहराइयों में उतार देती है तो कभी हमें भीतर ही भीतर दुनिया से मिला देती है और शगुन मजा तो उस वक्त आता है जब आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और अपनी छाती पे रख के उस उपन्यास को आप रख देते हैं और फिर नींद आ जाती है और उसके कैरेक्टर में आप डूब जाते हैं किताबों की बात आज इसलिए क्योंकि आज है इंटरनेशनल रीड अ बुक डे यानी अंतरराष्ट्रीय दिवस कि आप एक किताब तो जरूर पढ़ें
0: Well, yes, all the bookish days, they may seem similar. National Reader Book Day invites us all to grab a book we might enjoy and spend the day reading. Reading improves memory, concentration and reduces stress. Adults who spend time reading show a slower cognitive decline and tend to participate in more mentally stimulating activities over their lifetime. So books, Naveen, they are inexpensive entertainment or educational tool and time machine too.
1: शगुन आज के दिन किताब पढ़ने किताबों से दोस्ती करने और कुछ पल मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहना चाहिए शब्दों की दुनिया में खोने का दिन है लेकिन जरा सोचिए आपके हाथ में एक किताब है पन्ना पलटते हैं और अचानक किसी अनजान लेखक के शब्द आपके अपने लगते हैं यही तो कमाल है किताबों का
0: Well, that is true. So don't keep what you're reading to yourself. You can share your experience as well. Read aloud either to children or to grandparents, your parents. Read to your pets even or to your stuffed animals, to children. And sit back, relax, read a book. Whether you prefer to escape into the world of fiction or learn something new, celebrate with your favorite books.
1: किताबें बोलती नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं शगुन. हमारे सामने बैठती नहीं हैं, फिर भी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। चलिए थोड़ा सा बचपन की तरफ मुड़ते हैं शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पंचतंत्र चंदा मामा विक्रम बैताल मैंड्रेक और ये सब कहानियां और ये सब कॉमिक्स न पढ़ी हो ऐसा हो कि नहीं सकता तो अपनी किताबों के शेल्फ में से आज कोई पुरानी किताब ही निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए और खो जाइए उसमें और देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस किताब को खत्म करेंगे तो आपको लगेगा यू आर द पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर
0: And Naveen, if you'd like to start reading regularly, but you can never seem to find the time, why not use National Reader Book Day today as an opportunity to investigate other ways of fitting reading into your day. Try downloading and listening to an audiobook also on your daily commute. It will help. Or if getting to bookshops is the problem, invest in an electronic reader or download books straight to your device. There are so many options.
1: बिल्कुल यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और अगर नहीं पढ़ना चाहते ना तो कम से कम आज तो एक एक पन्ना तो पढ़ के देखिए, मजा आएगा. जस्ट वन पेज,
0: राइट.
1: तो ये थी आज के दिन की बात, लेकिन आज के दिन में और भी बहुत कुछ छुपा है. सीधे आपको लिए चलते हैं सन 1774 में.
0: Well, yes, the British government supported पेशवा रघुनाथ राव टू रीकॉन्कर पुणे इन 1774.
1: आज ही के दिन सन 1776 में ग्वाडेलोप द्वीप में तूफान आया था जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.
0: In 1965, the Indian Army crossed the international border toward Lahore, Pakistan. This was a strategic move to counter Pakistan's Operation Grand Slam in Jammu and Kashmir. Now, in the year 1990, the Indian Parliament officially passed the Prasar Bharati Bill to establish India's public service broadcaster. This happened in 1990. In 1947, the government created a new Ministry of Relief and Rehabilitation of Refugees.
1: मैं आपको लिए चलता हूँ सन 2007 में. आज के दिन ब्रिटेन की द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ने मानव पशु संकर भ्रूण पर शोध करने के सिद्धांत को रूप से अनुमति दे दी थी. तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. अब याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को, उन महान व्यक्तियों को जो आज कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं. सबसे पहले बात अलाउद्दीन खां की. प्रसिद्ध सरोद वादक, आज उनकी पुण्यतिथि है.

अलाउद्दीन खान ने सबसे बड़े भारतीय घरानों में से एक मैहर घराने की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खान को सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद अली अकबर खान भारत में शास्त्रीय संगीत की परंपरा के पितामह कहे जाने वाले बाबा अलाउद्दीन साहब के ही बेटे हैं। उन्हीं के संरक्षण में मैहर घराने की विरासत को उन्होंने संभाला। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने पंडित रविशंकर और अल्लाह रखा खां को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया। और शगुन, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो ये कि दरबारी संगीतकार होने के बावजूद अलाउद्दीन खां साहब ने आम जन में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संगीत में कई तरह के वाद्य यंत्र सिखाना शुरू किया, और इन वाद्य यंत्रों में तो कई ऐसे थे जो उन्होंने खुद ही बनाए थे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय

0: मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है, और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
5: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
6: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें।

0: रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
2: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों से दुनिया की क़यादत करने के काबिल आलमी कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात से खिताब किया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की खुसूसी अदालत ने साल 2013 के छत्तीसगढ़ की झीराम वादी कतलेआम केस में 10 माओनवाजों को कसूरवार करार दिया है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को IBRICS समिट मुनाकिद होगा। इस 2 रोजा समिट में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वुजराए खजाना और कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप के दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों पर जोर दिया है कि वो पिछली नस्लों से भी बड़े ख्वाब देखें और आलमी मियार की ऐसी मुशावरती, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करें जो दुनिया की क़यादत करने की सलाहियत रखती हों। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारतीय अफराद दुनिया की सरकर्दा कंपनियों की क़यादत कर रहे हैं तो फिर भारतीयों के कायम करदा कंपनियां दुनिया की क़यादत क्यों नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म कल शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC की 7 साला तकरीबात से खिताब कर रहे थे।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: जनाब मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान भारत की 7.8% की सैमाही शरह तरक्की इसकी इक्तसादी मजबूती की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि भारत ने पॉलिसी मफलूज होने की सूरत हाल से तेज और फाल पॉलिसी तक एक तवील सफर तय किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बनते हुए देख रही है। जनाब मोदी ने इत्तला दी कि स्मार्टफोन की बरामदात अब 2.5 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि घरेलू दिफाई साजो सामान की पैदावार तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की अब तक की आला तरीन सतह तक पहुंच चुकी है।
1: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान तलबा की कई नस्ल को सीखने, तरक्की करने और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के मौके फराहम किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कॉलेज ने गुज़िश्ता बरसों में तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना नुमाया मकाम बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साबिक वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली भी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फारिग तहसील थे। उन्होंने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फारिग तहसील तलबा ने फन और सकाफत से लेकर सियासत तक हर शोबे में अपनी मुनफरद शनाख्त कायम की है। जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा।

0: भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: वजीर आजम मोदी ने कॉलेज और मुल्क के तालीमी शोबे दोनों के 100 साल मुकम्मल होने के संग मील की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कॉलेज के बानी श्रीराम को खिराज अकीदत पेश किया और उनके देरपा विजन के सामने सर तस्लीम खम किया। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने अपनी तकरीर में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गुज़िश्ता बरसों के दौरान अपने आला मेयार को बरकरार रखने के लिए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज भारत वजीर आजम मोदी की क़यादत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में हुनरमंद इंसानी वसाइल की ज़रूरत है। वजीर तालीम ने इसे मुल्क की नौजवान आबादी के लिए एक मौका करार दिया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा का अंडमान और निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर तकरर किया गया है। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल डी के जोशी की जगह लेंगे, जो 8 अक्टूबर 2017 से अंडमान और निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे थे। 62 साल डॉक्टर शर्मा इससे पहले उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला भी रह चुके हैं। उनकी राज्यसभा की मुदत कार इस साल 25 नवंबर को खत्म होनी थी। राष्ट्रपति भवन की जानिब से कल जारी बयान में कहा गया कि डॉक्टर शर्मा के तकरर का इतलाक उनके जरिए ओहदा संभालने की तारीख से होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कौमी जांच एजेंसी एनआईए की खसूसी अदालत ने जीरामवादी नक्सली हमले में सभी 10 मुलजिमीन को मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार करार दिया है। इस मामले में कुल 11 मुलजिमीन के खिलाफ केस चलाया गया था, जिसमें से एक मुलजिम की दौरान समात मौत हो गई। अदालत ने दो खवातीन समेत सभी 10 मुलजिमीन को 29 लोगों को कत्ल करने और दीगर 15 अफराद को कत्ल करने की कोशिश का कसूरवार करार दिया। अदालत ने सजा की मुद्दत का फैसला 16 सितंबर के लिए महफूज कर लिया है। मई 2013 में माओवादियों ने झीराम वादी में कांग्रेस रहनुमाओं के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही गोलीबारी में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले की तफ्तीश की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को हो रहे ब्रिक्स समिट के तनाजुर में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वुजराए खजाना और कारोबारी रहनुमा आई ब्रिक्स समिट के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। ये दो रोजा समिट 21 ब्रिक्स रुकन रियासतों और साझेदार मुल्कों के खुद मुख्तार सरमाए को काबिल एतबार बुनियादी ढांचे, तवानाई और डिजिटल सलाहियत प्रोजेक्टों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। खुद मुख्तार फंड्स, पेंशनर फंड्स और आई ब्रिक्स समिट में शिरकत कर रही प्राइवेट कंपनियां मिलकर 1 खरब अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी रखती हैं। इस दौरान ब्रिक्स मईशतों में सरहद पार सरमायाकारी, डॉलर के अलावा दीगर करेंसियों में तस्फीये और अदायगी निज़ाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये समिट ऐसे अहम वक्त पर मुनक़िद हो रहा है जब ब्रिक्स मईशतें तिजारत के तरीक़े कार को बदलने, अमरीकी महसूलात के दबाव और डॉलर में अदायगी की ज़्यादा लागत से मुताबिकत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भारत साल 2026 की ब्रिक्स सदारत के तहत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वीं ब्रिक्स समिट की मेज़बानी करेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल रात 3 रोज़ा दौरे पर गोवा पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो मगरबी इलाकाई काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। आज वो वजारत दाखिला की एक मीटिंग की सदारत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और बीजेपी के नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: जनाब अमित शाह आज अपनी मसरूफियत का आगाज गोवा से मुतालिक अहम उमूर का जायजा लेने की मीटिंग के साथ करेंगे। वो बीजेपी के नए तामीर करदा रियासती दफ्तर अटल भवन के इफ्तिताह से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब शाह आज पार्टी की रियासती कोर कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। उनकी कल की मसरूफियात में मगरबी इलाकाई काउंसिल की मीटिंग और गोवा पुलिस को सदर का पुलिस कलर पेश किया जाना शामिल है। पंजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मुनशिया से मुतालिक इंजबाती इदारों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने नई दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर तैयार की जाने वाली और गलत लेबल वाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम के खिलाफ मरबूत कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गलत लेबल वाली और जाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम से मुतालिक मुजरिमाना सरगर्मियों की निशानदेही के लिए मुसलसल निगरानी कर रही है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जब भी किसी मुजरमाना हरकत या सरगर्मी से मुतालिक कोई इत्तला सामने आती है तो दवाओं के मेयारात को कंट्रोल करने की मरकजी तंजीम

0: CDSCO, दिल्ली पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करती है। इस मुसलसल निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रवां साल अप्रैल में दिल्ली में बगैर लाइसेंस के एक अहाते से गलत लेबल वाली गैर मियारी रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक मकतूब के जरिए भारत के दवाओं के कंट्रोलर जनरल DCGI ने तमाम रियासती ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वो अपने मुआयना करने वाले अमले को अलर्ट करें और मस्कूरा दवा की गलत लेबल वाली वैक्सीन की खेप की नकलो हरकत तकसीम और दस्तियाबी पर सख्त नजर रखें। DCGI ने यह भी तस्दीक की है कि मुतल्लिका खेप का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे मुल्क को बरामद नहीं किया गया था। अस्पतालों क्लिनिक्स और सरकारी तिब्बी मराकज में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों के जरिए फराहम की जाती है। इस मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने मजमूई तौर पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली से निकिता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: हुकूमत ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गर्दिश कर रहे वीडियो में किए गए उस दावे को मुस्तरद किया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी करार देते हुए कहा कि ये वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दिल्ली हवाई अड्डे पर शदीद बारिश हुई थी और हवाई जहाज़ों को मुश्किल का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व में कैद में परवरिश पाने वाले गिद्धों को दोबारा जंगल में छोड़ने के लिए भारत के सबसे कामयाब मकामात के तौर पर सामने आए हैं, जहां इन गिद्धों की बका की हौसला अफजा शरह रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के मुताबिक दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान दोनों टाइगर रिजर्व में मजमूई तौर पर 29 गिद्ध छोड़े गए, जिनमें से 78% तक के जिंदा रहने की शरह रिकॉर्ड की गई। BNHS ने कहा कि कामयाबी इस बात को साबित करती है कि परिंदों को छोड़ने के लिए बनाए गए मखसूस अहातों को शिकार और इंसानी मुदाखलत से महफूज टाइगर के मस्कन में मुंतकिल करना मुअस्सर साबित हो सकता है। ये नतायज भारत में गिद्धों की कम होती हुई आबादी के तहफ्फुज़ की जारी कोशिशों के लिए हौसला अफजा हैं। मुंबई से माधुरी पांगे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जजायर, बिहार, अंदरूनी कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल और सिक्किम में दिन भर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। खवातीन क्रिकेट के एशिया कप T20 मैच में कल दुबई में भारतीय टीम ने एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर्स और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई, जो कि बैनुल अक्वामी T20 मैचों का अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत की जानिब से नौजवान स्पिन गेंदबाजों श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने सिर्फ 8 ओवर्स और 4 गेंदों में जीत का निशाना हासिल कर लिया। इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर 18 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। इससे पहले पाकिस्तान ने मजबूत शुरुआत की और बिना विकेट खोए 27 रन बनाए। ताहम महज अगले 9 रन के दौरान 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट हो गए और भारतीय स्पिन गेंदबाजों की मैच पर पकड़ मजबूत हो गई। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
0: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने योम असातज़ा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोज़नामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, असातज़ा बच्चों को निसाबी तालीम के साथ साथ जिंदगी के अकदार भी सिखाएं और उनको सिर्फ निसाबी मालूमात तक महदूद न रखें, बल्कि उनमें मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और दीगर मुस्बत अकदार को भी फ़रोग दें। रोजनामा प्रताप ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने योम असातज़ा के मौके पर दिल्ली में मुनाकिदा तकरीब में मुल्क भर के बेहतरीन असातज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजा। सदर ने कहा कि स्कूल की तालीम पूरे तालीमी निजाम की बुनियाद है। रोजनामा इनकलाब ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, अक़वामे मुत्तहिदा में नए आलमी नक्शे की क़रारदाद मंजूर।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों से दुनिया की क़यादत करने के काबिल आलमी कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी फर्म्स कायम करने की अपील की। वज़ीर आज़म ने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के

श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब किया। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार जजायर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए की खसूसी अदालत ने साल 2013 के छत्तीसगढ़ की जीराम वादी कतलेआम केस में 10 माओनवाजों को कसूरवार करार दिया है। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स समिट मुनाकिद होगा। इस दो रोजा समिट में 500 से ज्यादा इदारा जाती सरमायाकार, वज़राए खजाना और कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप के दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

ठंडी हवा का धीमा झोंका, कहता छोड़ो ये आलस धोखा, खिल उठी है मन की क्यारी, लगती आज ये सृष्टि प्यारी, पत्ते नाचे पंछी गाएं, आओ सब मिलकर हर्षाएं, बीनी बीनी सी ये महक, दिशा दिशा में बिखरी चहक, ठहर गया है कुछ पल जीवन, झूम उठा है आज ये मन, और मन झूम रहा है बारिश के साथ, खूबसूरत से मौसम के साथ। आप हैं हमारे साथ और हम हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ये है गोल्ड पर आपका पसंदीदा सफर का साथी म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी में आज आपके साथ हूँ मैं शीतल। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस प्यारे से मौसम में प्यारे प्यारे गीतों का होना तो लाजमी है, बनता है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम इस ज़िंदगी के सफ़र को संगीतमय बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है जो भी हमारी ज़िंदगी में है उसे स्वीकार करते हुए, मुस्कुराते हुए, गले लगाते हुए आगे बढ़ते चलें।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
3: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
5: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
6: आठ बजकर 53 मिनट और 1 सेकंड. आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर म्यूजिकल दिल लगी में और म्यूजिकल दिल लगी में आज आपका साथ दे रही हूं मैं शीतल. दोस्तों, जिंदगी में हमारे पास बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी जिंदगी में एक सही रास्ता चुन सकते हैं, पर न चाहते हुए भी कभी कभी हमारी जिंदगी हमें एक गलत मंजिल की तरफ ले जाती है. तो कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में आने वाले लम्हे हमें बार बार इंतजार करने के लिए कह रहे हैं तो हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, सोचना चाहिए. और जिंदगी को बिताने के लिए सबसे अहम है कि हम इस जीवन का प्रबंधन सीखें. अपने आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, बेशक से हम उनसे मोहब्बत करें ना करें, पर इंसानियत न भूलें. इंसानियत एक ऐसी भावना है, एक ऐसा भाव है, एक ऐसा जज्बा है जो कम से कम हमें दयालुता से जोड़े रखता है. आज हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें देख करके लगता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम अपने आप को इंसानियत से ऊपर ले जा रहे हैं.

लेकिन हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना है। जब हम जिंदगी में इस इंसानियत को ऊपर रखेंगे तो हम हर किसी के साथ मोहब्बत कर पाएंगे और फिर ये हमारा एक स्वभाव बन जाएगा कि हम हर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमारा इतिहास तो इस बात का गवाह है कि हम हमेशा ही दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आए हैं। अतिथि देवो भव हमारा एक बहुत खूबसूरत हमारा मूल्य है जिसे हम अपने घर परिवारों में, स्कूलों में, अपने देश में, विदेश में, हर कहीं अपनाते हैं। तो यही भाव हमें रखना है ताकि हमारे आसपास मोहब्बत ही मोहब्बत बरसे और ये दयालुता, ये प्यार हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी दे पाएं।

इश्क इतनी खूबसूरत एक कह सकते हैं नेमत है उस खुदा की कि हमें इस पर रोक लगानी भी नहीं चाहिए। हम जितना चाहें उतने लोगों से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, बस उसे किसी सीमा किसी दायरे से नहीं बांधना चाहिए। और जब हम मोहब्बत की प्यार की बात करते हैं तो उन सबसे खास सबसे बड़ा जो एक भाव है वो होता है मानवता का भाव। तो अपने देश के साथ यूं ही हम जुड़े रहें इस मानवता के भाव के साथ, और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, सुनते रहें FM गोल्ड। अभी वक्त है कि मैं यानी शीतल आपसे लूं इजाजत म्यूजिकल दिल लगी के इस पड़ाव से, क्योंकि ठीक 9:10 पर म्यूजिकल दिल लगी में ढेर सारे गीतों के साथ नाज रहेंगी आपके साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए खूब ख्याल, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को परास्त कर दिया गया है, आत्मविश्वास से भरे सशस्त्र बल दुश्मनों के घरों तक प्रहार कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक शांति बहाल हो गई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
2: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे थे। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 23 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज।

लेकर हाजिर हूँ आपका और मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ दिलचस्प बातों के साथ हर रोज की तरह आज भी हम मिलकर एंजॉय करेंगे कुछ सदा बहार ट्रैक्स, जो आज के संडे यानी हॉलिडे को बना देंगे फन डे। तो चाय क्या कॉफी, जो भी आप पसंद करते हैं, एक कप मेरे लिए भी तैयार कर लीजिए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ मस्ती में खो जाइए इस ट्रैक की।

तो जनाब, बात बस इतनी सी है कि हमारी जिंदगी भी ना बिल्कुल एक रेडियो की तरह ही है। कभी तो सिग्नल एकदम क्लियर आते हैं, पर कभी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं ना कि आप हमें सुनना ही छोड़ दें। अरे भाई, और भी तो तरीके हैं ना हमसे जुड़ने के। फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो रही तो ऑनलाइन सुनिए। न्यूज ऑन AIR ऐप भी तो होगी आपके फोन में, जहां से आप हमें लाइव किसी भी समय बिना किसी दिक्कत के सुन सकते हैं। बस ठीक इसी तरह, अगर आज का दिन आपके लिए कोई नई चुनौती लेकर आया है, या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट अभी तक आपको नहीं मिला, तो याद रखिएगा कि जो लोग लगातार चलते रहते हैं, मंजिलें खुद उन तक चल कर आती हैं। यही बात कुछ यूं भी समझिएगा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग भी जलता है, और सफर में मुश्किलें आए तो हौसला रखना मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं से तो मुकद्दर का रंग बदलता है।

तो नजरिया बदलिए, कीजिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश और बनाए रखिए खुद पर भरोसा। और मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये अगला ट्रैक, जिसमें किशोर दा भी हमसे कुछ यही कह रहे।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

म्यूजिकल दिल्लगी सुन रहे हैं आप विद मी यानी नाज, जहां अब फोकस करने वाले हैं हम आज के दिन यानी 6 सितंबर पर, जो सिर्फ कैलेंडर पर मार्क्ड एक तारीख ही नहीं है जनाब, बल्कि भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बेहद गौरवशाली दिन भी है। बात है साल 1965 की, जब भारतीय सेना ने आज ही के दिन अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। और ऐसा करके हमारे वीर जवानों ने यह साबित कर दिया था कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा बॉलीवुड से भी है आज सेलिब्रेशन की खबर। क्योंकि आज ही के दिन 1949 में जन्म हुआ था मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राकेश रोशन जी का, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक म्यूजिकल और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। एक्टिंग हो या डायरेक्शन, राकेश जी ने हर जगह खुद को साबित किया। तो आइए हम भी भंगड़ा पाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे ढेर सारी गुड विशेस के साथ, और सुनते हैं राकेश रोशन जी के ही डायरेक्शन में बनी फिल्म करण अर्जुन से ये खूबसूरत और जबरदस्त सॉन्ग।

और इसी के साथ अब आ गई है बारी कि मैं आपको याद दिलाऊं कि पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी है जारी। बीती 1 सितंबर से आने वाले कल यानी 7 सितंबर तक ये खास सप्ताह मनाया जा रहा है। और ये खास सप्ताह हमसे कहता क्या है, ये समझिए बुजुर्गों की कही इस बात से। थाली में सजे हों अगर सतरंगी आहार, तभी तो जीवन में रहेंगी खुशियों की बहार। और सेहत का खजाना छुपा है सही पोषण में, ये बात उतार लेनी चाहिए हम सभी को अपने आचरण में। बिल्कुल, और इसी सोच को सच में बदलने के लिए भारत सरकार का एक बेहद शानदार और महत्वपूर्ण अभियान भी जोर शोर से काम कर रहा है, जिसका नाम है मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। दोस्तों, किसी भी मजबूत देश की नींव उसकी आने वाली पीढ़ी होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश भर की आंगनबाड़ियों को अब सक्षम आंगनबाड़ी में बदला जा रहा है, ताकि वो आधुनिक सुविधाओं से लैस हो सके। पोषण 2.0 का

सीधा लक्ष्य है गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और हमारे छोटे छोटे बच्चों में कुपोषण को जड़ से खत्म करना। उन्हें सही डाइट, आयरन, विटामिन और साफ सफाई के प्रति जागरूक भी करना।

और इसी के साथ दोस्तों, म्यूजिकल दिल्लगी के आज के इस सुहाने सफर को मुझे थामना होगा यहीं। लेकिन आप फिक्र करिएगा नहीं, क्योंकि मैं मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 यानी 10:30 पर। दिल का मेल बॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर। इस ट्रैक के उस पार सुनिएगा FM गोल्ड की खास पेशकश वतन का राग, और फिर सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी।

0: तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है वीर गुलाब सिंह लोधी। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से अरुण सिरोही और छपरा बिहार से प्रीतम चंद्र श्रीवास्तव। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

समय के निरंतर प्रवाह में तारीखें बीत जाती हैं, पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन बीते समय के गलियारों में उन कदमों की आहट सुनाई देती रहती है जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिनका हर कदम देश के लिए बढ़ा। भारतीय स्वाधीनता इतिहास के गलियारों में ऐसे अनगिनत कदमों की गूंज सुनाई देती है। ये आहट उन नौजवानों की है जिन्होंने गुलामी के अंधेरों के बीच भी आजादी के सूरज का स्वप्न देखा, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के भाग्य में स्वाधीनता का सौभाग्य लिखा और अपनी सांसें देश के नाम कर दी। ऐसे ही एक अमर बलिदानी है।

शहीद बूटा सिंह। अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए देश के भीतर और बाहर कई आंदोलन चलाए गए, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुए गदर आंदोलन का स्थान इन सबसे अलग और अनूठा है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य विदेशी धरती से भारत में क्रांति की अलख जगाना और ब्रिटिश भारतीय सेना की बैरकों के भीतर तैनात भारतीय सैनिकों के माध्यम से एक व्यापक सैन्य संघर्ष आयोजित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1915 में गदर पार्टी द्वारा बुना गया सैन्य संघर्ष का तानाबाना इतना व्यापक था कि इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इस योजना में ब्रिटिश भारतीय सेना की 23वीं कैवलरी के सैनिक भी शामिल थे। इसी रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिक थे बूटा सिंह। बूटा सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के कसैल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंचल सिंह था। कसैल और उसके आसपास का क्षेत्र शुरू से ही अपनी देशभक्ति और धर्म निष्ठा के लिए जाना जाता था। खेती किसानी के बीच ऐसे ही वातावरण में उनकी परवरिश हुई। इस तरह बूटा सिंह को बचपन से ही धार्मिक संस्कार, ईमानदारी और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा अपने परिवार से विरासत में

बूटा सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उस समय पंजाब में ग्रामीण युवा आजीविका के लिए अक्सर सेना में भर्ती हुआ करते थे। बूटा सिंह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अनुशासित और अत्यंत साहसी थे, इसलिए युवावस्था में प्रवेश करते ही वो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर बूटा सिंह 23वीं कैवलरी में एक सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। 23वीं कैवलरी ब्रिटिश भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी, जिसे एक प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंट के रूप में जाना जाता था। इस रेजिमेंट में पंजाब के वीर जवानों की बड़ी संख्या थी। एक सैनिक के रूप में बूटा सिंह अत्यंत अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और अपने साथी सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, लेकिन वर्दी पहनने के बावजूद उनके सीने में भारत माता की गुलामी की टीस हमेशा बनी रहती थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय और एशियाई मोर्चों पर अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी समय पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के शोषण और उनकी दमनकारी नीतियों के कारण असंतोष अपने चरम पर था। इन परिस्थितियों ने बूटा सिंह जैसे संवेदनशील सैनिकों के मन को झकझोर कर रख दिया था। विदेशों में रह रहे प्रवासी क्रांतिकारी भी उद्वेलित थे। परिणाम स्वरूप बाबा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी गदर पार्टी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दे रहे थे। गदर पार्टी का स्पष्ट मानना था कि जब तक ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक अंग्रेजों का साथ देना बंद नहीं करेंगे और जब तक अपनी बंदूकें अंग्रेजों की तरफ नहीं मोड़ देंगे, तब तक भारत की आजादी संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारियों ने विभिन्न सैनिक छावनियों जैसे लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ और नौगांव में तैनात भारतीय सैनिकों से गुप्त रूप से संपर्क साधना शुरू किया। क्रांतिकारी प्रेम सिंह गदर पार्टी के संगठनकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात 23वीं कैवलरी के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया। प्रेम सिंह ने सैनिकों को गदर पार्टी के उद्देश्यों और अंग्रेजों की नीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराया। बूटा सिंह और उनके साथी सैनिकों के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था। प्रेम सिंह के विचारों ने बूटा सिंह के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को और अधिक प्रचंड कर दिया। उन्होंने अपनी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और जीवन की परवाह न करते हुए गदर आंदोलन से जुड़ने का संकल्प लिया। बूटा सिंह ने न केवल खुद को इस महायज्ञ से जोड़ा, बल्कि 23वीं कैवलरी के अपने अन्य साथी सैनिकों को भी इस गुप्त सैन्य संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह 23वीं कैवलरी की नौगांव में तैनात टुकड़ी यूं तो बाहरी तौर पर अंग्रेजों की सेना नजर आ रही थी, लेकिन बूटा सिंह और उनके अनेक साथी जवान अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का शंखनाद करने को तैयार हो चुके थे।

बूटा सिंह गदर आंदोलन से जुड़ चुके थे। अपने साथी सैनिकों के साथ वो गुप्त क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से सक्रिय थे। इसी बीच गदर पार्टी ने 21 फरवरी सन 1915 को पूरे देश में सैन्य संघर्ष की योजना बनाई। योजना ये थी कि देश भर की विभिन्न छावनियों में भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों को बंदी बना लेंगे या मार गिराएंगे तथा शस्त्रागारों पर कब्जा कर लेंगे और गदर पार्टी का झंडा लहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। इस व्यापक योजना हेतु सभी सैन्य छावनियों से संपर्क किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की नौगांव छावनी भी शामिल थी, जिसमें बूटा सिंह तैनात थे। इस विद्रोह को लेकर सैनिकों में बड़ा उत्साह था और तैयारी भी मजबूत थी, लेकिन किरपाल सिंह नामक एक गद्दार ने अंग्रेजों तक ये सूचना पहले ही पहुंचा दी और समय से पहले ही इस योजना का खुलासा हो गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। विद्रोह की योजना के उजागर हो जाने के बाद भी 23वीं कैवलरी के सैनिकों, विशेष रूप से बूटा सिंह का हौसला टूटा नहीं था। वो छावनी के भीतर रहकर सही समय का इंतजार करने लगे और गुप्त रूप से अपने पास विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करते रहे। इस योजना की विफलता के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को लगने लगा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा था नहीं। मई सन 1915 में 23वीं कैवलरी की टुकड़ी को, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात थी, उसे यहां से हटाकर युद्ध के मोर्चे पर भेजने का फैसला किया गया। सैनिकों को रेलगाड़ी से रवाना किया गया। 13 मई सन 1915 की तारीख थी। सैनिकों को ले जा रही ट्रेन हरपालपुर स्टेशन पर रुकी। सैनिक अपना सामान ट्रेन के डिब्बे में व्यवस्थित कर रहे थे कि अचानक एक बक्सा नीचे गिर पड़ा। इस बक्से में गुप्त रूप से रखी गई विस्फोटक सामग्री, बम और हथियार रखे हुए थे। बक्सा गिरते ही रेलवे स्टेशन में प्रचंड विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब पूरे सामान की तलाशी ली गई तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। बक्से के भीतर से बम बनाने की सामग्री और हथियार तो मिले ही, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य, पर्चे और गुप्त योजना के दस्तावेज भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्टेशन का ये विस्फोट ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इस घटना से अंग्रेज ये समझ गए थे कि ये सैनिक सामान्य सैनिक नहीं है, बल्कि ये गदर पार्टी के उस गुप्त संगठन का हिस्सा है जो ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए सेना के भीतर काम कर रहा था। अंग्रेजों ने हरपालपुर स्टेशन और नौगांव छावनी को घेर लिया। गहन जांच शुरू हुई और संदेह तथा साक्ष्यों के आधार पर 18 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में बूटा सिंह मुख्य रूप से शामिल थे, क्योंकि वो छावनी में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। इन 18 सैनिकों के विरुद्ध शिमला के पास स्थित डगशाई सैन्य छावनी में कोर्ट मार्शल किया गया और एक तरफा फैसला सुना दिया गया। 12 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई और शेष सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। मृत्यु दंड पाने वाले 12 सैनिकों में बूटा सिंह का नाम प्रमुखता से शामिल था। बूटा सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को अंबाला सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 3 सितंबर सन 1915 को बूटा सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सबसे मार्मिक तथ्य ये है कि उनके परिवार के सदस्यों को उनकी फांसी की सूचना तक नहीं दी गई। इस तरह भारत माता के एक सच्चे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेस

0: Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026, under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Namaskar, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही मला ऐकता आहात आकाशवाणी मुंबईच्या FM गोल्ड वाहिनीवर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Lalema Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, at the Delhi University yesterday evening.
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनी

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आपका फेवरेट प्रोग्राम एक ही फिल्म से हम लेकर आएंगे इस संदेश के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर

0: दोस्तों कभी कभी ना कोई फिल्म सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आती, वो अपने साथ एक मौसम लेकर आती है। एक ऐसा मौसम जिसमें मिट्टी की खुशबू भी होती है और प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की पहली पहली आहट भी, और साथ होती है दूर कहीं बजती हुई बांसुरी। आज का सफर है 1979 की उस फिल्म का जिसने बिना बड़े सितारों की चमक के सिर्फ अपनी सादगी, संगीत और मासूम प्रेम से दर्शकों के दिल में जगह बना ली। सावन को आने दो। राशि की इस फिल्म का निर्देशन कनक मिश्रा ने किया था और निर्माण तारा चंद बड़जात्या का था। कहानी के केंद्र में है हमारा हीरो बिरजू, एक साधारण से गांव का लड़का जिसकी आवाज में हुनर है और दिल में बहुत सारी मोहब्बत। उसके सामने है चंद्रिका, जमींदार की बेटी। मोहब्बत मौजूद है लेकिन दोनों के बीच में है हैसियत की दीवार। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात, इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है बिरजू के पास दौलत नहीं, लेकिन उसके पास सुर है, संगीत है, लय है, ताल है। तो आइए यादों की पोटली खोलते हैं और सुनते हैं उस आवाज को जिसे KJ येसुदास ने अपनी खास मिठास दी।
1: तिथियन का चंद्रमा।
0: बिरजू का किरदार पर्दे पर उतारा अरुण गोविल साहब ने, और चंद्रिका बनी हमारी जरीना बहाओ।

दोस्तों, सावन को आने दो की खासियत सिर्फ इसकी प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि इसकी खासियत एक कास्टिंग भी थी। अरुण गोविल ने बिरजू के रूप में कैसे नौजवान को निभाया, जिसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका हुनर है। कुछ साल बाद यही चेहरा टेलीविजन पर भगवान राम के रूप में घर घर पहचाना जाने लगा था। एंड आई एम श्योर कि आपको याद जरूर आ गया होगा, जरीना वहाओ ने चंद्रिका के किरदार में उस दौर की सादगी और सहजता को सामने रखा। रीता भादुड़ी भी फिल्म के किरदार में उस दौर की काफी अहम हिस्सा रही, जबकि मुकरी, लीला मिश्रा और यूनुस परवेज जैसे अनुभवी कलाकारों ने सपोर्टिंग कास्ट को और मजबूत किया। और अमरीश पुरी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। अमरीश पुरी तब तक उस विशाल पहचान का हिस्सा नहीं बने थे जिसके लिए बाद की पीढ़ियां उन्हें जानती हैं। यानी इस फिल्म को आज देखने पर एक दिलचस्प चीज दिखाई देगी, कई जाने पहचाने चेहरों का करियर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा था। फिल्म में बिरजू का सफर गांव से शहर और फिर सफलता की तरफ जाता है, और इसी सफर के साथ उसके संगीत को भी नया विस्तार मिलता है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की इक्तसादी कुव्वत और वलवला अंगेज पॉलिसी की बदौलत मुल्क विकसित भारत की समत गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो दुनिया की क़यादत के लिए आगे आएं। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इख्तदारे आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबा नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ईरान ने अबनाए हुरमुज में 3 अमरीकी टैंकरों और बहरी जहाजों पर हमला किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। मौसमियात महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के फाइनल में चीन की जोड़ी के साथ खेल रही है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों पर जोर दिया है कि वो बड़े ख्वाब देखें और आगे आकर कमान संभालें। जनाब मोदी ने कहा कि अगर भारत के बासलाहियत अफराद दुनिया की सरकर्दा कंपनियों की क़यादत कर सकते हैं तो फिर

0: भारतीय अदारे भी दुनिया की क्यादत कर सकते हैं। वजीर आजम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से SRCC की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। 21वीं सदी के नौजवानों के उमंगों से भरपूर जज्बे की हौसला अफजाई करते हुए वजीर आजम ने यूनिकॉर्न्स बनाने, ड्रोन तकनीक में इख्तरा और जदीद तर्ज के AI हल निकालने में नौजवानों के अहम रोल को सराहा। जनाब मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सबका नस्लों से भी कहीं ज्यादा बड़े ख्वाबों की तकमील के लिए काम करें। उन्होंने उनसे ऐसी आलमी मुशावरती, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी उमूर की फर्म से बनाने के लिए कहा जो दुनिया की क्यादत करने की सलाहियत रखती हूँ।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: वजीर आजम ने इस बात को भी उजागर किया कि दुनिया अब भारत की वलवला अंगेज और मुतहर्रिक पॉलिसी नीज सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के उस रुतबे की सताइश कर रही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि मगरबी एशिया के खित्ते में लड़ाई और आलमी सतह पर तजारती रुकावटों के तनाजुर में 7.8% की सहमाही शरह तरक्की से भारत की मजबूत सलाहियत की अक्कासी होती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: वजीर आजम ने मुल्क को बड़े पैमाने पर सामान दरामद करने वाले मुल्क के बजाय एक सरकर्दा बरामदकार मुल्क बनने में मेक इन इंडिया पहल की कामयाबी का भी तذکرہ किया। अपने खिताब में जनाब मोदी ने बताया कि स्मार्टफोन की बरामदात 2.5 लाख करोड़ रुपए से तजावज कर गई है, जबकि अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इक्तदारे आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की मुतालिका करारदाद पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ये वजाहत की है कि नक्शे में किसी इलाके को गलत या गुमराहकुन तरीके से दिखाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत के इक्तदारे आला और इलाकाई सालमियत के बारे में सरकार का मौकफ बिल्कुल वाज़ह और पायदार है और इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबह नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 10 से ज्यादा अफराद जेरे इलाज हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: रियासत में सागर जिले की बांदा तहसील में मुश्तबा नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत होने की खबर है। सागर जिले के चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर देवेश परतारिया ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि मरने वाले बराज गांव के रहने वाले थे। पुलिस और इंतजामिया की टीमें इस वाकये के बाद वहां पहुंच गई हैं। सागर के SP समेत आला एहलकारों ने उस मकाम का मुआयना किया। पुलिस इस पूरे मामले और इस बात की छानबीन कर रही है कि यह शराब कहां से आई थी। तहकीकात और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आने के बाद ही मौत की असल वजूहात वाजे हो सकेंगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शमीम इरफान।
0: उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 24 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ सैलाब की सूरत हाल और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जिले में मौजूद हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रियासत के कई दरिया अब भी तोगियानी पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि फर्रुखाबाद में ये खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपुर में घाघरा

0: में भी पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। चित्रकूट में दरिया यमुना में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के सैलाब से मुतासर इलाकों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। उन्होंने एक राहत कैंप का दौरा करके मुतासरीन से उनका हाल जाना और राहत सामान तकसीम किया। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने अगले चार दिन के दौरान रियासत के शुमाली हिस्से और अगले दो दिन के दौरान मगरबी जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आज दूसरे दिन भी औसत से लेकर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने और ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर असर पड़ने की इत्तला मिली है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी भारत के बाज हिस्सों में कल तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ईरान के मगरबी हिस्से में एक ईंधन टैंकर में धमाका होने से 11 अफराद की मौत हो गई जबकि 7 जख्मी हो गए। ईरान में कुर्द शहर सनंदज के नज़दीक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब कई कारों से टकराने के बाद ये टैंकर आग के शोलों में घिर गया। सनंदज राजधानी तेहरान के कोई 400 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। इत्तलात के मुताबिक ब्रेक निज़ाम में खराबी की वजह से ये वाक़ा पेश आया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ईरान की सिपाह पासदारा ने इनकलाब IRGC की बहरी फोर्स ने दावा किया है कि उसने आबनाए हुरमुज में गैर मजाज करार दिए गए रास्ते से गुजरने वाले 3 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। इसके अलावा उसने 3 ऐसे बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है जो मुबैना तौर पर अमरीका से वाबस्ता थे। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी तीसरी मरतबा चाइना मास्टर्स के डबल्स के फाइनल में खेल रही है। आलमी नंबर 5 जोड़ी का मुकाबला हे जी तिंग और रेन शियांग यू की चीन की जोड़ी से हो रहा है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की इकतसादी कुवत और वलवला अंगेज पॉलिसी की बदौलत मुल्क विकसित भारत की समत गामजन है। वजीर आजम ने भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो दुनिया की क्यादत के लिए आगे आएं। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अकवाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए क्योंकि इकतदार आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबह नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ईरान ने आबनाए हुरमुज में 3 अमरीकी टैंकरों और बहरी जहाजों पर हमला किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के फाइनल में चीन की जोड़ी के साथ खेल रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's economic strength and policy dynamism is driving nation towards Vikasit Bharat, calls upon Indian companies to aspire to lead the world. India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. 10 people dead, several hospitalized after consuming suspected spurious liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Iran strikes 3 US tankers and vessels in Strait of Hormuz. Flood situation worsens in Bihar and Uttar Pradesh after heavy rainfall. IMD forecasts heavy rain over Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. In China, Masters Badminton, Indian pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Chinese pair in title clash this afternoon. Prime Minister Narendra Modi has called upon Indians to dream big and lead from the front, saying that if Indian talent can lead the world's top companies, Indian enterprises can also lead the world. Mr. Modi made these remarks while addressing the gathering at the centenary celebrations of Shriram College of Commerce, SRCC, in New Delhi. Encouraging the ambitious spirit of the 21st century youth, the Prime Minister celebrated their drive to build unicorns, innovate in drone technology and create cutting-edge AI solutions.
3: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
2: The Prime Minister also highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability.
3: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
2: The Prime Minister also celebrated the success of the Make in India initiative in transforming the nation from a massive importer to a leading exporter. During his address, he shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Mr. Modi also noted that the defense exports, which were just 600 to 700 crore rupees in 2013-14, has reached 40,000 crore rupees now. Mr. Modi also highlighted India's unprecedented speed in infrastructure development and policy execution, with projects that earlier took decades now being completed in just a few years. He said rapid electrification of the railway network and a growing number of free trade agreements are opening up new opportunities for the youth of the country.
3: भारत की नीति निर्णयों में आई ये गति दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया आसमान बन रहा है।
2: The External Affairs Ministry responded to the UN General Assembly resolution on Equal Area World Map. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said that India has voted in favor of the United Nations General Assembly resolution on Equal Area Cartographic Representation. Mr. Jaiswal further added that India's sovereign territory, including the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, must be depicted in accordance with India's official map. He also clarified that any inaccurate or misleading depiction is unacceptable. He said the government's position on India's sovereignty and territorial integrity is clear, consistent and non-negotiable. Mr. Jaiswal said that the UN General Assembly adopted a resolution titled Correct the Map, Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, particularly Africa, on the 4th of this month. He said the purpose of this is to encourage the use of equal area map projections that preserve the relative sizes of continental land masses. The spokesperson said India voted in favor of the resolution and also made an explanation of vote, stressing on the underlying principle of promoting equal area cartographic representation. He highlighted that the resolution does not constitute endorsement of any specific map, projection or depiction of national boundaries. Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and 13th of this month. As part of the security preparations, Delhi Police has conducted motor carcade rehearsals and reviewed security arrangements in the national capital this morning. In view of these rehearsals, traffic diversions and regulated movement were in place at 22 locations in the city. Here's a report.
4: Security arrangements have also been strengthened in the NDMC area. According to the Delhi police, security measures along the Yamuna River have also been reviewed. Police said a vigilant watch will be maintained from the Purana Qila as part of the security arrangements. Meanwhile, ahead of the summit, the New Delhi Municipal Council is undertaking beautification and streetscape improvement works across major areas of New Delhi. The works include road repairs, refreshed curbs, clearly marked zebra crossing, upgraded footpaths, thematic paintings, and improvements to public spaces. The civic measures are aimed at improving the overall appearance and infrastructure of the national capital ahead of the international summit. The 18th BRICS summit will bring together leaders of BRICS member and partner countries, outreach countries, and heads of international organizations. With Samarth Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
2: 10 people have been confirmed dead after allegedly drinking suspected spurious and illegal liquor in Sagar district of Madhya Pradesh. Sagar collector Pratibha Pal confirmed the deaths. Around 35 people were brought to hospitals. Some of them are still in serious condition. Serious patients have been shifted to Bundelkhand Medical College and Sagar District Hospital. The case is reported from Nauroja and Ghughra Khud villages under Banda police station area. According to the collector, the first information was received at around 4:30 a.m. yesterday. Screening has now started in the affected villages. People who consume the liquor are also being checked. The collector said that initial findings from 2 to 3 post-mortem suggests possible consumption of methyl alcohol. Some people have been taken into custody for questioning. The administration has ordered some liquor shops in the area to be sealed as a precaution and their liquor samples to be collected. Chief Minister Dr. Mohan Yadav said he has directed the minister in charge and officials to immediately investigate into the matter. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October the 8th, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. This is Akashwani giving you the news.
5: Stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
2: Union Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh, has called for stronger collaboration between government research institutions, industry and startups. He said collaborations are required to accelerate innovation and ensure that scientific research reaches the market and benefits citizens. Addressing the inaugural session of the two-day RISE conclave in Kolkata today, Dr. Singh said the government has opened up several strategic scientific sectors, including space and atomic energy, for greater private sector participation. Union Home Minister Amit Shah is in Goa on a three-day visit. He arrived in the state last night. More details from our correspondent.
6: Mr. Amit Shah today chaired a review meeting on issues related to Goa, along with Chief Minister Dr. Pramod Sawant. He is scheduled to interact with the media shortly, followed by the inauguration of BJP's newly constructed state office Atal Bhavan. Mr. Shah will also meet the party's state core committee during the day. Tomorrow, September 7th, he will attend the 28th Western Zonal Council meeting and present the President's police colour to Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwadi News, Padji.
2: The U.S.-Iran conflict has seen a fresh escalation around the Strait of Hormuz this week, with both sides carrying out attacks on vessels in and around the Strait of Hormuz. In the latest developments yesterday, U.S. CENTCOM said that they disabled 3 Iranian oil tankers. IRGC also claimed that its naval forces attacked a remotely operated U.S. boat attempting to enter the protected area of Strait of Hormuz. Here's more from our correspondent.
7: Iranian naval forces have claimed that they carried out strikes against oil tankers affiliated with the USA traveling through the Strait of Hormuz. This follows US CENTCOM saying that they disabled three Iranian oil tankers around the Iranian waters on Saturday. The latest exchange follows a significant flare-up earlier this week when US and Iran had attacked each other after a relative calm of about 1 month, with no clear signs

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल

0: में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पन बिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
5: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आइए सुनते हैं नाटक आकाशदीप। मूल कहानी जयशंकर प्रसाद, रेडियो नाट्य रूपांतरकार डॉक्टर प्रतिभा जैन, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: बरस बीत गए जया।
1: किस बात को श्यामा?
0: याद कर, जब इस सागर द्वीप में महानाविक उतरे थे
1: तब से अब तक कितना कुछ बदल गया है। और ना होती ममता मई स्वामिनी तो कैसे एक जंगली लड़की रानी की सेविका बनती?
0: क्या रानी?
1: हाँ, रानी कहो उन्हें, महानाविक का यही आदेश है।
0: जया जया देख उधर, वो उच्च सौंध पर बैठी रानी अभ्रक मंजूषा में दीप रखकर कैसे दीप आधार की डोरी खींच रही है धीरे धीरे अपनी कोमल उंगलियों से।
1: ऊपर चढ़ते दीप को निहारती रानी किसी तपोरत अप्सरा से कम नहीं लग रही।
0: हाँ जया, समुद्र साक्षी है और साक्षी है यह नक्षत्र। प्रतिदिन यही क्रम वर्षों से देखती आ रही हूं मैं।
1: पर स्वामी ने कभी थकी नहीं, रुकी नहीं। वे अपना आकाश दीप ऊंचे नक्षत्रों में मिला देना चाहती हैं।
0: हाँ, लेकिन ये तो असंभव है।
1: मैं भी जानती हूं, किंतु उनकी आशा कभी टूटती ही नहीं।
2: जया, ओ जया,
1: आई स्वामिनी। आज्ञा दे स्वामिनी।
2: महानाविक कब तक आएंगे? तनिक बाहर जाकर पूछो तो सही।
1: अधीर न हो रानी, शरद ऋतु का ये चंचल पवन संदेश लेकर आया है स्वामी का, तभी तो ढीठ बनकर आपके आंचल को छेड़ रहा है।
2: ओ जया, कम से कम आज मत छेड़ मुझे, अकेला छोड़ दे मुझे। आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, स्मृतियां नैनों में नैया सी डोल रही हैं। वो काली अंधियारी तूफानी रात, वो जलदस्यु का भयानक युद्ध, और उसके बाद

0: मुख्य पोत से बंधी छोटी नाव का नायक हूं मैं। मैं तक्षक सेन और ये जल युद्ध में जीते गए बंदी। अरे ये तो है जल दस्यु राज बुधगुप्त महायोद्धा, जिसके आतंक से समुद्री लहरें कांप उठती हैं, जिसकी वक्र दृष्टि हुंकार से आदमी का रक्त ही सूख जाता है। आज यही बुधगुप्त समुद्री जीव सा निरी अधमरा ओंधा पड़ा है। इसे पोताध्यक्ष मणिभद्र को सौंप दूं तो पुरस्कार अवश्य मिलेगा और पदोन्नति भी है। मरवा।
1: हाँ सरकार।
0: इस बंदी पर विशेष ध्यान रखना।
1: बिल्कुल, आप चिंता ना करें सरकार।
0: ध्यान रखना पूरा।
1: जी सरकार।
2: बंदी, ओ बंदी। बंदी
3: क्या है, सोने दो।
2: मुक्त होना चाहते हो?
3: अभी नहीं, नींद खुलने पर।
4: जाते रहो।
2: सुनो।
3: हाँ।
2: फिर अवसर नहीं मिलेगा, आंधी की संभावना है और तारे भी छिप गए हैं।
3: तो क्या तुम भी बंदी हो?
2: धीरे बोलो, आज ही मेरे बंधन ढीले हैं।
3: अच्छा, कौन हो तुम?
2: देखो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं।
3: शस्त्र मिलेगा?
2: हाँ, मिल जाएगा। मुख्य पोत से बंधी रस्सी काट सकोगी तुम?

0: हेलो, मेरे ढीले बंधन तो खुल गए। लाओ तुम्हारे बंधन भी खोल दूं।
1: हाँ।
0: दो इधर लाओ ना।
1: ये यहाँ से ध्यान से। मैं मुक्त हो गया।
2: शस्त्र कहाँ है?
0: वो नायक के पास है और वो वहाँ सोया है, इसलिए कह रही हूँ धीरे बोलो। ठहरो, मैं निकाल कर लाती हूँ उसके कृपाण।

0: लो बंदी, मैंने मैंने नायक के कृपाण निकाल ली है, ये लो।
1: अत्यंत साहसी हो तुम।
0: वो तो हूँ।
2: लगता है तूफान आ रहा है रे मरवा।
3: सरकार सरकार सरकार, तूफान
4: तूफान। सावधान सावधान, आपत्ति सूचक संकेत दो।
0: बंदी देर ना करो, जल्दी से रस्सी काटो।
4: हाँ तुम ठीक कहते हो।
0: ये रही पोत से बंदी रस्सी।
4: ये
0: हाँ, मैं इधर से पकड़ती हूँ, जल्दी करो।
4: काट दिया इसे। हम मुक्त हुए, हमारी नौका मुख्य पोत से अलग हो गई। जाओ जाओ, अरे जाओ, डूब जाओ।

0: उठो बंदी, भोर होने को है।
1: हाँ, अरे हाँ।
0: देखो उधर, इस उजाले में लहरें कितनी शांत और सुंदर लग रही है ना।
2: अच्छा हुआ तूफान शीघ्र ही चला गया, वरना। अरे मरवा।
3: जी सरकार।
2: मैं क्या देख रहा हूँ?
3: क्या सरकार,
2: ये बंदी मुक्त कैसे हो गए?
3: अरे हाँ, मुक्त कैसे हो गए? अरे
2: तुम्हें किसने मुक्त किया?
4: मुझे मुक्त किया है इस कृपाण ने।
2: कृपाण? तुम्हारे पास कैसे है? मैं तुझे फिर से बंदी बनाऊंगा दुष्ट।
4: किसके लिए तक्षक? पोताध्यक्ष मणिभद्र के लिए। वो तो इस अतल जल में अब तक डूब चुका होगा तक्षक।
2: क्या?
4: अब इस नौका का मैं ही स्वामी हूँ।
2: एक जलदस्यु और इस नौका का स्वामी? ठहर, मैं अभी बताता हूँ तुझे।
4: क्या टटोल रहे हो तक्षक? मेरे हाथ में ये तुम्हारी ही कृपाण है, इस स्त्री ने लाकर मुझे दी। क्या सोच रहा है तक्षक? अरे पुरुष है तो आ, मुझसे द्वंद कर।
2: तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे चुनौती दे, अभी तुझे इसका फल चखाता हूँ। अहंकारी, लड़ मुझसे, देखूं तेरी भुजाओं में कितना दम है।
3: शर्मा,
0: इतना भीषण घात प्रतिघात, ये कोई तो रोको से।
3: जरवा
5: बोल नरवा।
3: सरकार की स्थिति ठीक नहीं लग रही है।
5: हाँ, दस्यु राज के आगे तो वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो फिर देर मत कर, जयकारा बोल। दस्यु राज की जय हो। दस्यु राज की जय हो।
3: दस्यु राज, अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए।
4: बोल तक्षक, अभी और युद्ध करेगा।
2: क्षमा करो दस्युराज, प्राण दान दो मुझे।
4: ठीक है, जा, मैं तुझे अभय देता हूँ।
6: स्वामी बुधगुप्त की जय हो। स्वामी बुधगुप्त की जय हो।
4: तक्षक।
2: जी स्वामी।
4: अभी हम लोग कहाँ होंगे
2: स्वामी? इस समय हम

0: काली द्वीप से बहुत दूर आ चुके हैं, एक अनजाने द्वीप के पास हैं।
1: कितने दिन में पहुंचेंगे वहां?
0: अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में स्वामी। आप चिंता ना करें, खाने पीने की कमी नहीं होगी। अरे अरे नाविको
2: जी स्वामी,
0: जल्दी डांड लगाओ, इधर लाओ
2: जी,
0: लाओ पतवार मुझे दो, लाओ
2: ये।
1: अरे क्या हुआ तक्षक?
0: यहाँ जल में डूबी एक चट्टान है स्वामी, सावधान ना रहने पर नाव टूटने का भय है।
1: ओ
0: नाविको
2: जी सर,
0: दाहिनी ओर पतवार चलाओ, दाहिनी ओर। हाँ हाँ, इधर बस ठीक है। अब कोई संकट नहीं है स्वामी।
1: चंपा, तुम्हारा घर कहाँ है?
3: गंगा तट पर चंपा नगरी की क्षेत्रीय बालिका चंपा हूँ मैं। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। माँ के स्वर्गवासी होने पर पिता के साथ 8 वर्षों से समुद्र ही मेरा घर है।
1: पिता अब कहाँ है चंपा?
3: 1 माह पहले भयंकर आक्रमण हुआ तुम्हारा, और उस युद्ध में पिता ने 7 दस्युओं को मारकर खुद जल समाधि ले ली। उसी समय से इस आकाश तले नीले समुद्र के ऊपर अकेली अनाथ हूँ मैं। एक दिन मणिभद्र ने मुझे घृणित प्रस्ताव दिया। मैं जल उठी, असह्य हो गया था उस नरपिशाच का वार्तालाप मेरे लिए। मैंने उसे कोसा तो उसी दिन से जकड़ दी गई इन श्रृंखलाओं में।
1: ओह, अब तुम क्या करोगी?
3: जहां भाग्य ले जाए।
1: ओह चंपा, तुम्हारी आंखों में बालकों से दृढ़ता है। मैं दुर्दांत दस्युराज, तथापि मेरा हृदय क्यों कांप रहा है? ये कैसी हिलोर उठ रही है? ओह, इस तेज के सामने मेरा बल, मेरी चेतना क्यों लुप्त हो रही है? मैं किसके अधीन हो रहा हूं? ये क्या उग रहा है मेरे भीतर? कोमलता
0: स्वामी, वहां देखिए, हम नए द्वीप पर पहुंच रहे हैं।
3: कितने दिनों बाद ये धरती दिखी मुझे।
1: हाँ।
3: कितनी प्यारी है ना ये धरती। और नाविक, ये कौन सा हरियाला द्वीप है?
0: इसका कोई नाम नहीं है स्वामिनी,
1: किंतु अब हम इसे चंपा द्वीप कहेंगे। आओ चंपा, इस पर पहला चरण तुम रखो।
3: अरे, ये किसने मेरी आंखें बंद कर दी? मैं समझ गई। छोड़िए ना मेरी आंखों से हाथ हटाइए बुधगुप्त।
1: अरे कैसे पहचाना?
3: हृदय से।
1: यहाँ बैठी दीप जला रही हो।
3: मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो महानाविक।
1: बंदी गृह?
3: हाँ।
1: किसने तुम्हें बंदी बनाया? नहीं चंपा, तुम कोई बंदी नहीं हो, इस द्वीप की अधीश्वरी हो, हमारी चंपा रानी।
3: महानाविक, मुझे तो वो दिन अच्छे लगते थे जब आपके पास एक ही नाव थी। चंपा तट का सामान लाद कर हम सुखी जीवन जीते थे ना।
1: चंपा, अब तो हम उससे भी अच्छे ढंग से घूम सकते हैं। चंपा, तुम मेरी प्राणदायी, मेरी सर्वस्व हो।
3: नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति भले ही छोड़ दी हो, किंतु तुम्हारा हृदय वैसा ही कठोर तृष्णा से भरा हुआ है। याद करो महानाविक, उस प्रचंड आंधी और दिशाहीन काले समुद्र में प्रकाश की एक किरण के लिए हम उस वक्त कितने व्याकुल थे, याद है तुम्हें?
1: चंपा।
3: हाँ हाँ नाविक, आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में जीवित है। जब मेरे पिता समुद्र में जाते तो मेरी माता बांस के पिटारी में दीप रखकर बांस के साथ ऊंचे टांग देती और फिर प्रार्थना करती। नाविक, वो आकाश दीप उसकी पुण्य स्मृति है, वो आस्था की साक्षात मूर्ति। और तुम मेरे वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण। जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से।
1: ये क्या चंपा?

0: ऐसे तो तुम अस्वस्थ हो जाओगी। जाओ जाकर विश्राम करो। जाओ जाया।
1: स्वामिनी, इस संध्या में टकटकी लगाए आप क्या देख रही हैं?
2: कुछ नहीं,
1: मन उदास है। अच्छा उठिए, जल विहार से संभव है रानी का मन तरंगित हो जाए।
2: आश्चर्य है, तू मेरी मन की बात कैसे समझ लेती है जया।
1: उठिए स्वामिनी, आज नौका मैं ही खेऊंगी।
2: तेरा ये सखी भाव ही तो मुझे भाता है जया।
1: तो मन की बात कहिए ना, संभवतः है मैं आपके कुछ काम आ जाऊं।
2: सखी, देखना कितना जल, कितनी शीतलता है ना यहाँ, किंतु फिर भी मेरे हृदय की प्यास नहीं बुझी। क्या कभी पी पाऊंगी मैं इसे? नहीं ना, बोल बोल तो फिर क्या करूं मैं? रुदन करूं, तट से चोट खाकर जैसे सागर चिल्लाता है वैसे चिल्लाऊं, या फिर जलते हुए सूर्य के समान इस अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं?
1: नहीं रानी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सूर्य सदा जलता हुआ अंगार भी नहीं। देखिए ना उधर देखिए, कैसे लाल सूर्य अनुरागमय होकर धीरे धीरे चौथाई, फिर आधा, और अब पूरा ही डूब गया अपनी प्रिया के अंक में।
2: नहीं नहीं, नहीं देख सकती मैं ये सब कुछ।
1: स्वामिनी इधर तो देख सकती है ना, देखिए महानाविक का बज्रा हौले हौले कितने निकट आ गया है।
2: महानाविक तुम
0: आओ चंपा, मेरे हाथ का सहारा लेकर इस बज्रे पर चढ़ जाओ। आओ आओ, यहां मेरे पास बैठो रानी। चंपा, इतनी छोटी नौका पर यहां घूमना ठीक नहीं, कहीं डूबी चट्टान से टकरा जाती
2: तो क्या अच्छा ही होता, या बंदी होने से तो अच्छा ही होता ना।
0: चंपा तुम कितनी निर्दयी हो, एक बार बुद्धगुप्त को आदेश देकर तो देखो। जो तुम्हारे लिए नया द्वीप, नई प्रजा, नया राज्य बना सकता है, उसकी उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो तो चंपा, इस कृपाण से अपना हृदय निकालकर अपने ही हाथों से इस अतल जल में विसर्जित कर दो।
2: नहीं, जिसके नाम से पवन थर्राती हो उसका यूं घुटनों के बल छल छलाई आंखों से बैठ जाना शोभा नहीं देता। उठो महानाविक, उठो।
0: ओ, चारों ओर फैली हरियाली शैलमाला, क्षितिज में आकाश सिंधु का मिलन।
2: ये प्रकृति भी कैसे स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। चारों ओर फैलती नीलिमा का रहस्यपूर्ण इंद्रजाल, ये नील कमलों की सुगंध। ओ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। महानाविक मुझे सहारा तो दो।
0: चंपा, चंपा, ये मदर स्पर्श, ये आलिंगन तुम्हारा, कृपाण तुम्हारे आंचल में।
2: ये प्रतिशोध का कृपाण है। मैं आज ही इसे अतल जल में डुबो देना चाहती हूँ। जा, अब तू जाकर सागर में ही विश्राम कर। जा, चला जा यहां से।
0: तो आज से विश्वास करूं कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया?
2: कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने ही हृदय पर विश्वास न कर सकी तो फिर तुमसे कुछ कैसे कहूं। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ मैं। ओ, ओ बुद्धगुप्त, मैं,
0: सपनों की इस रंगीन संध्या में तुम्हारे इन शब्दों में मैंने सब कुछ पा लिया। जीवन की इस पुण्यतम घड़ी की स्मृति में चंपा मैं एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा। वहां उस पहाड़ी पर संभव है मेरी धुंधली जीवन संध्या प्रकाशमय हो जाए।
1: चुप रहो दस्युराज, क्या मुझे अनाथ और कंगाल जानकर इस तरह से प्रतिशोध लेना चाह रहे हो तुम?
0: चंपा, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। वो किसी दूसरे दस्यु के हाथों मारे गए थे।
1: काश दस्युराज की मैं इस बात पर यकीन कर सकती तो वो दिन कितना सुखद होता मेरे लिए, और तुम इस क्रूरता में भी कितने महान होते मेरे लिए।
0: मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ चंपा, मुझे क्षमा कर दो। हम लोग अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर, इन भोले भाले वनवासियों में इंद्र इंद्राणी की तरह पूजित हैं, पर न जाने किस शाप से हम अभी तक अलग हैं। चंपा, उसे प्रतिदिन याद आता है दार्शनिकों का वो देश, याद आती है वो महिमामयी भारत माता, किंतु मैं जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सब कुछ पाकर भी मैं कंगाल हूं। माना कि मैं पशु बल और धन का उपासक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, पाप और परलोक में विश्वास नहीं करता, फिर भी मुझे मेरे हृदय के एक कोमल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक भटकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य आकाश में उदित हो गई। तुम्हारी हंसी की खनक से मेरा एकांत कटने लगा। चंपा, तुम चलोगी ना? राजरानी सी जन्मभूमि की गोद में। चंपा, तुम बोलती क्यों नहीं? चंपा, चंपा, आज ही हमारा परिणय हो और कल ही असंख्य धन लाद कर भारत की ओर प्रस्थान करें। बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें भी मानती हैं। चलोगी ना चंपा?
1: बुद्धगुप्त,
0: मेरी चंपा,
1: महानाविक,
0: अधीश्वरी चंपा रानी, मेरी हथेली में तुम्हारा ये अरक्त मुख, ये अर्ध निमिलित नयन, परितृप्त हुआ मैं।
1: बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में नहीं, मात्र शून्य का विस्तार है मेरे चारों ओर। तो इसलिए प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, ऐश्वर्य सुख भोगो, और मुझे अकेला छोड़ दो इन निरीह भोले भाले वनवासियों की सेवा सहानुभूति के लिए। जाओ, चले जाओ।
0: अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहां रहकर अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं इसमें संदेह है मुझे। इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। चंपा, तुम यहां अकेली क्या करोगी?
1: पहले तो विचार था कि इस स्तंभ से दीप जलाकर वीर पिता की समाधि की खोज करूंगी, किंतु आप लगता है कि मुझे अकेले जलना होगा इस आकाश दीप की तरह। हाँ,
3: दक्षिण पवन अनुकूल है, पाल बंद गया
4: जी।
3: क्या रस्सियां ठीक से कसली?
4: जी हाँ सरकार।

0: अरे जरवा, खाने का पूरा सामान रख लिया?
1: हाँ सरकार, रख लिया पूरा सामान।
2: पीने का पानी भी लाद लिया है।
0: तो फिर लंगर खोल दो, बोलो महाबली वरुण देव की
3: जय।
0: महाबली वरुण देव की
3: जय।
4: स्वामिनी,
5: हाँ,
4: इस दीप स्तंभ से देखिए तो प्रभात बेला में महासर्प की भांति नावों की श्रृंखला, वो देखिए।
5: हाँ, तो महानाविक सदा के लिए अपने इस चंपा द्वीप को छोड़कर भारत की ओर जा रहे हैं। हृदय,
4: स्वयं को संभालिए रानी।
5: नहीं जया, जिसका राजकुमारी नहीं वो रानी भला कैसे हुई?
4: स्वामिनी, आप तो पहले ही वनवासियों की देवी हैं, उनको सभ्यता संस्कार की शक्ति देने वाली, संसार की पहचान कराने वाली देवी।
5: और उस वन देवी की आंखों में आंसू नहीं हो सकते। अभय होता है, अभय।
6: अभी आप सुन रहे थे नाटक आकाशदीप, मूल कहानी जयशंकर प्रसाद, रेडियो नाट्य रूपांतरकार डॉक्टर प्रतिभा जैन, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे मंगत राम, अनुराग अरोड़ा, मेधा शुक्ल, ममता मलकानी, विशाल कुमार और राज शर्मा।

0: FM Gold, खरा सोना।
1: सुस्वागतम श्रोता मित्रों, 100.1 FM Gold, खरा सोना अने न्यूज़ ऑन AIR एप पर आपनी साथी अने संगी नीता हाजर थई गई छे एकदम खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी लईने। दोस्तों, आजे छे रविवार अने कार्यक्रमनी शुरुआत करिए नवलकथा पठनथी। नवलकथा पठन, मळेला जीव। लेखक छे पन्नालाल पटेल अने आजे आपणे सांभळशुं तेनो 37મો मणको। पठन स्वर अने प्रस्तुति वैशाली त्रिवेदीनी छे, निर्माण सहाय श्वेता कोल्हे। तो शुरुआत करिए कार्यक्रम नवलकथा पठन, मणको 37મો।
2: नवलकथा पठन, मळेला जीव।

लाल फेटा वाला वो सोमा भाई ना थाला वो करसन काका थाला वो भूरी बंडी वाला ओहो लाल फेटा वाला वो सोमा भाई ना थाला वो करसन काका थाला वो भूरी बंडी वाला माधु चक्कर दो।

पाछी वालू मारी भोम का लागे ने अलामा तेरे ईमान ए आग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। श्री शाह ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज 4 मंजिला इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत

0: की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल सऊदी अरब की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर रियाद पहुंचे। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में सऊदी अरब की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉक्टर तारिक अल हमद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंगलवार तक चलने वाली अपनी यात्रा के दौरान श्री सिंह मानव संसाधन, कौशल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से जारी है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की है। सेमीफाइनल मुकाबले में कल उन्होंने मलेशिया की नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्यों को हराया था। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah has said that a drug-free youth will play a crucial role in achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a developed India by 2047. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said, the government has prepared a three-year roadmap to make India drug-free by 2029, based on a four-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. The Union Home Minister also praised the Goa police for the effective implementation of the Bharatiya Nyay Samhita. He said the new criminal laws have strengthened the justice delivery system and contributed to an improvement in the conviction rate in the state. Mr. Shah also highlighted the government's development efforts in Jammu and Kashmir. He said the Union Territory is now on the path of progress and development, while nationalism is becoming a thing of the past under the Modi-led government. Mr. Shah said the government has successfully eradicated nationalism from the country and is determined to deal with the menace of narcotics with the same resolve. Mr. Shah reached Panaji last night on a three-day visit to Goa. Tomorrow, Mr. Shah will chair the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that the world now praises India's policy dynamism and its status as the fastest growing major economy. He asserted that achieving a 7.8% quarterly growth recently amid the West Asia war and global trade hurdles demonstrates India's intrinsic capability. Mr. Modi made these remarks while addressing a gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi.
2: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
1: Vice President C.P. Radhakrishnan today urged students to stay away from drugs and restrict social media usage. The Vice President was addressing the Golden Jubilee celebrations of Geeta Nagar College at Guwahati in Assam today. He stressed that educational institutions must go beyond preparing students for careers and focus on creating responsible citizens for democracy and society. He said quality education, research and character building are essential for the nation's progress. The Vice President is on a two-day visit to Assam beginning today. A five-story building housing a boys' PG collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon, leaving several people trapped. Rescue operations are underway. The Delhi Fire Service informed that three people have been rescued so far and sent to a nearby hospital. They were stated to be in a critical condition. Delhi Chief Minister Rekha Gupta in a social media post said an adjacent building has also been vacated as a precautionary measure and every possible effort is being made to safely rescue those trapped and provide immediate assistance to the affected families. The Chief

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं फिल्म दो दिलों की दास्तां से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले जी ने और संगीत बनाया ओपी नैयर जी ने।

0: November 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: ओपी नैयर जी के संगीत निर्देशन में बनाए गए रफी आशा ड्यूएट्स की बात ही कुछ और है। ऐसा ही एक और रोमांटिक ड्यूएट आए सुनते हैं, फिल्म है बहारें फिर भी आएंगी।

0: daughter, Carda clearance, vigilance clearance, and 5 years attested R powers. Should reach the concerned authority within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions and the prescribed application format is available on the website. Do refer to www.istm.gov.in. I repeat, it is www.istm.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। रिसर्च एसोसिएट तथा जूनियर रिसर्च फेलो, योग्यता, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र 29 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में मनोचिकित्सा के सहायक प्रोफेसर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर और नैदानिक मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। शैक्षिक अर्हता, अनुभव, आयु आदि जैसी आवश्यकताओं का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इसके लिए वेबसाइट www.igbrimh.gov.in। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तकनीकी केंद्र बेंगलुरु में अनुभाग अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन इस पते पर भेजे जा सकते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार कॉम्प्लेक्स, NTI लेआउट, टाटा नगर, कोडीगेहल्ली टेक्नोलॉजी सेंटर, बेंगलुरु। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौरपुर राजस्थान आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। मास्टर राजपत्रित PGT, सहायक मास्टर TGT, मास्टर PGT के 2 पद रिक्त हैं जबकि सहायक मास्टर का 1 पद रिक्त है। आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हताओं, योग्यता, अनुभव, वेतन, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं रोजगार समाचार पत्र 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का। केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली भारत सरकार के कार्यालय में स्टोर कीपर समूह सी के एक पद को प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर भरने हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्ति सूचना के साथ आवेदन के लिए प्रारूप और अन्य विवरण केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट का पता है cwc.gov.in/recruitment। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अधीक्षण अभियंता, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ विश्लेषक, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अस्पताल वास्तुकार, वरिष्ठ क्रय सह भंडार अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता विद्युत, मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी, CSSD अधिकारी, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, लेखा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अभिलेख अधिकारी तथा पर्यवेक्षी चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी। आवेदन का प्रारूप और पदों से संबंधित आयु, अर्हता, अनुभव और अन्य जानकारी का विवरण एम्स पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का पता है www.aimspatna.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या लाए हैं आज आपके लिए वो खास। दोस्तों, इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रोज की तरह रहेगी हमारी बराबर नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संक में आज हूं मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
2: नमस्कार मुनीश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स आल्सो हु हैव जॉइंड अस इन दिस संडे एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुनीश हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। हसवे दस्तूर लाते हैं हम आपके लिए ताजा तरीन खबरें। एंड सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश की परिक्रमा पे निकलेंगे, देखेंगे क्या कुछ खास है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास इन दैट सेगमेंट। एंड ऑफकोर्स द लास्ट सेगमेंट इन विच वी रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हू ईदर हैव देयर बर्थ और डेथ anniversaries or maybe birthdays today as well. But first, let's start with the headlines, Munish.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र बनने की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया।
2: India backs UN resolution on equal area world map, reiterates Jammu and Kashmir and Ladakh must be depicted as per Indian official map as sovereignty and territorial integrity are non-negotiable.
1: Madhya Pradesh ke Sagar zile mein zehreeli sharab se 10 logon ki maut, kai aspatal mein hue bharti.
2: Iran strikes 3 US tankers and vessels in the Strait of Hormuz.
1: तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान।
2: एंड इन चाइना मास्टर्स बैडमिंटन, इंडियन पेयर ऑफ सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी टू टेक ऑन चाइनीज पेयर इन टाइटल क्लैश दिस आफ्टरनून। And now, of course, we throw open the show with our segment, Dateline India. And Monish, the most important thing to, you know, that Indians are discussing is, of course, the successful launch of ISRO's EOS-05 satellite. Well, the Indian Space Research Organization successfully launched the GSLV-F-17 rocket from Sriharikota early on 4th September, placing the much-awaited EOS-05 Earth Observation Satellite into sub-geosynchronous orbit. ISRO said that the state-of-the-art Earth Observation Spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit around about 18 minutes after it lifted off from the spaceport, and India Space Agency returned to the launch pad after a bruising phase marked by back-to-back failures of its trusted PSLV rocket. In such circumstances, the burden shifted to the GSLV Mark II, affectionately and sometimes nervously called ISRO's naughty boy.
1: Very cute and befitting indeed, naughty boy. तो सायरा, दरअसल इस बार राहत, तालियों की गड़गड़ाहट और नया विश्वास भी देखने को मिला, क्योंकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-F-17 ने EOS-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ये मिशन सिर्फ एक और लॉन्च से कहीं ज्यादा था। इस बात का सबूत था ये कि इसरो में अभी भी मुश्किलों से उबरने, फिर से संगठित होने और वापसी करने की क्षमता है।
2: Indeed, Monish, you said it so right that of course ISRO has come back, and this time of course with a bang, and the success assumes even greater significance because it came at a time when questions were being asked about India's launch capability. The Polar Satellite Launch Vehicle or PSLV, long considered

0: as ISRO's workhorse, suffered consecutive failures in 2025 and even in January 2026. Those setbacks forced ISRO into a painstaking investigation process.
1: जी हाँ सायरा, दरअसल PSLV बेड़े को भी उड़ान के लिए मंजूरी नहीं दी गई है. इंजीनियर अभी भी इसकी टेस्टिंग और जरूरी सुधार कर रहे हैं. इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि पिछली नाकामियों में कोई साजिश तो शामिल नहीं थी. रॉकेट का मिजाज समझना जरा मुश्किल होता है और इसीलिए तो इसे रॉकेट साइंस कहा जाता है. और यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम देश ही नियमित रूप से रॉकेट लॉन्च करते हैं. श्रीहरिकोटा से किसी बड़े रॉकेट का ये 107वां लॉन्च था.
0: And this time, Munish, the rocket performed as planned. The satellite began its journey towards geosynchronous orbit, nearly 36,000 kilometers above Earth. From that remarkable vantage point, EOS-05 is expected to provide something that India has long lacked, that is, continuous surveillance of a fixed region. The satellite is India's first ever imaging satellite designed to operate from a geosynchronous orbit. Unlike other low Earth orbit satellites that pass over a set location periodically, EOS-05 satellite is designed to maintain a continuous monitoring of Indian territory and surrounding regions. It would ensure a closer and consistent observation of the Indian territory and will go a long way in providing critical information about weather systems, disasters, infrastructure monitoring and general surveillance of the region.
1: GSLV-F-17 rocket ne EOS-05 ko yojana se zyada ऑर्बिटल एनर्जी दी. पृथ्वी से इसकी सबसे ऊंची जगह उम्मीद से लगभग 2092 किलोमीटर ज्यादा है. यह सैटेलाइट के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब स्पेसक्राफ्ट को अपनी आखिरी जियोसिंक्रोनस ऑपरेटिंग ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए अपने प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा. भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की अपनी आखिरी जियोसिंक्रोनस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए EOS-05 अपने ऑर्बिट को सब GTO से ऊपर उठाने और उस ऊंचाई पर उसे गोलाकार बनाने के लिए अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेगा. EOS-05 का लॉन्च खास तौर पर अहम था. दरअसल इसने लगभग 8 महीने के अंतराल के बाद इसरो की वापसी को भी चिन्हित किया है. दिलचस्प बात यह है कि यह सैटेलाइट स्पेस एजेंसी का 2026 का पहला सफल लॉन्च भी था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से भारत के पहले इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 को ले जाने वाले GSLV-F-17 के सफल लॉन्च की प्रशंसा की है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सफल लॉन्च को भारत के स्पेस सेक्टर की पहचान बनने वाली उत्कृष्टता, इनोवेशन और बढ़ती क्षमताओं का प्रतिबिंब बताया है. प्रधानमंत्री ने इसे इसरो की एक शानदार उपलब्धि और देश के लिए गर्व का क्षण भी बताया.
0: Defense Minister Rajnath Singh has also commended the successful launch of GSLV-F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite. In a social media post, Mr. Singh said that EOS-05 strengthens India's Earth observation capabilities and reflects the growing sophistication of its space program. He added that the expanding partnership between ISRO and Indian industry is giving greater scale to innovation, strengthening indigenous capabilities and opening new frontiers for its space ambitions. The Defence Minister further said that under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is steadily building a progressive, self-reliant and globally competitive space ecosystem.
1: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या है खास आज उनके पास.
0: Well, we are going to start our Parikrama journey, Monish, with probably our favorite regions and also favorite subject. हम लोग बात करेंगे कश्मीर की और ऑफ कोर्स कश्मीर की वादियों में अगर फिल्मों की बात हो, एक फिल्म फेस्टिवल हो तो क्या कहना. Well, Jammu and Kashmir is all set to host its inaugural international film festival that's going to start from tomorrow, marking a significant milestone in the Union Territory's cultural and cinematic journey. So, Monish, अपने correspondent से और खबर लेते हैं.
1: बिल्कुल लेनी चाहिए.
2: The much anticipated film festival is expected to bring together filmmakers, actors, producers, film enthusiasts, artists and cinema professionals from across the country and abroad, providing a vibrant platform for the exchange of ideas, stories and creative expressions. The four-day festival will be held simultaneously in Srinagar, Gulmarg and Jammu and will screen 135 films from over 40 countries under the theme

0: Mrangi Cinema. More than 300 delegates, a global jury and a prize purse of 96 lakh rupees are lined up for the festival. Organized by Department of Information and Public Relations, the festival aims to revive Jammu and Kashmir's cinematic legacy, promote local talent and create opportunities for cultural exchange, collaboration and the growth of a sustainable film economy. The screenings will cover categories including international competition, cinema of the world, Bharat Panorama, Jammu and Kashmir Select, Best Debut Film, Documentary and Short Films, Masterclass. Classes, panel discussions, in-conversation sessions, roundtables and workshops will also bring together filmmakers, actors, critics, scholars, students and industry professionals. The festival will also showcase Jammu and Kashmir's rich heritage, cuisines, handicrafts, traditional art forms and iconic tourist destinations. Besides providing filmmakers and emerging talent with opportunities to interact with established personalities and gain exposure to international cinema. For Parikrama, this is Ishfaq Shah from Srinagar.
1: माय भारत ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पहल विकसित भारत यंग लीड्स डायलॉग 2027 में युवाओं से भाग लेने की अपील की है। विकसित भारत क्विज के माध्यम से युवाओं को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की पहल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का एक मंच प्रदान करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के लिए भी यह पहल विशेष महत्व रखती है, क्योंकि वे अपने द्वीपों के विकास, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में योगदान दे सकते हैं। द्वीप समूह में विकसित भारत के निदेशक श्री सुखरंजन विश्वास ने बताया कि अब तक 439 युवाओं ने विकसित भारत यंग डायलॉग में भागीदारी की है, जबकि कुल 5,500 प्रतिभागियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों और युवाओं को इस पहल से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि द्वीप समूह के 15 से 29 वर्ष के युवा नीति निर्माता, विशेष केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से मैं तरन्नुम मोहम्मद।
3: And now let's talk about theatre, Monish. Well, theatre reflects life, emotions and society. And Tripura has a rich tradition of this art. Carrying this legacy forward, young theatre practitioner Rupantar Majumdar of Agartala has been honoured with a national scholarship. His achievement also highlights the guidance of his guru, theatre teacher Sanjay Kaur. We have a report.

सबसे बड़े घरानों में से एक मेहर घराने की भी नींव रखी थी। अलाउद्दीन खान साहब को सन 1958 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। उस्ताद अली अकबर खां भारत में शास्त्रीय संगीत परंपरा के पिता मह कहे जाने वाले बाबा अलाउद्दीन खां साहब के बेटे हैं और उन्हीं के संरक्षण में मेहर घराने की विरासत उन्होंने संभाली। अलाउद्दीन खां ने पंडित रविशंकर और अल्लाह रखा खां को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया। इन्होंने संगीत को देश के बाहर पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने का काम किया। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक दरबारी संगीत होने के बावजूद आम जनों में संगीत को लोकप्रिय बनाने का जतन बराबर करते रहे और इन्होंने कुछ लोगों को विविध वाद्य यंत्र बजाने सिखाने शुरू किए और इन वाद्य यंत्रों में से कई तो उन्होंने ही बनाए थे।

आज ही पुण्यतिथि है शहीद मेजर धन सिंह थापा की, परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मूल के भारतीय जिन्हें यह सम्मान मिला था 1962 में। 1962 के भारत चीन युद्ध में जिन चार भारतीय बहादुरों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया उनमें से केवल एक वीर उस युद्ध को झेलकर जीवित रहा और उसी वीर का नाम था धन सिंह थापा, जो 1-8 गोरखा राइफल से बतौर मेजर इस लड़ाई में शामिल हुए। धन सिंह थापा इस युद्ध में पांगोंग त्सो के तट पर सिरी जाप मोर्चे पर तैनात थे, जहां उनके पराक्रम ने उन्हें परमवीर चक्र के सम्मान का अधिकारी बनाया।

दोस्ताना जो बनाई थी यश जौहर साहब ने। और आज ही दोस्तों जन्मदिन है फिल्मी सितारे राकेश रोशन का। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने पर्दे पर अलग अलग भूमिकाएं निभाकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन वो ऐसे नामों में से हैं जो कैमरे के पीछे खड़े होकर भी उतना ही चमके जितना कैमरे के सामने। तो आइए याद करते हैं उन्हीं के ऊपर फिल्माए गए कुछ गीतों की एक झलक के साथ उन्हें।

0: और दोस्तों अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुनीश शर्मा और सायरा मुश्तबा को ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप दोबारा सुनना चाहें हमारा कार्यक्रम तो लॉग ऑन कीजिए वेबसाइट newsonair.gov.in। दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
3: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना ही सच्चा सशक्तिकरण है। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1.19 करोड़ किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। कोयला मंत्रालय ने पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन का कारण केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब के बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया गया है। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज 4 मंजिला इमारत ढह गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की गई हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान

में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। कहते हैं हर इंसान के दिल में एक ऐसी प्लेलिस्ट होती है जिसे कोई म्यूजिक ऐप नहीं बना सकती। उस प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे गीत होते हैं जिनमें किसी से तो कोई चेहरे जुड़े होते हैं, कुछ किसी सफर से गीत जुड़े होते हैं और कुछ गीत बस एक खूबसूरत दौर की दास्तां बयां करते हुए होते हैं। तो आज गाते गुनगुनाते में हम खोल रहे हैं वही मेमोरी प्लेलिस्ट 90s के सुपर डुपर हिट्स। तो अपने दिन भर की भाग दौड़ को थोड़ा पॉज कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और दिल को रिवाइंड कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ अच्छे संगीत और अच्छी यादों के नाम हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गाते गुनगुनाते लिए साथ हूं मैं नूपुर। पहुंच रहा है ये गीत फिल्म दुश्मनी से, गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति जी ने। 1996 की फिल्म दुश्मनी और इसका ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: सच है ना, हम और आप भी ऐसे ही दीवाने हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे को, तभी कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। तो इस दीवानगी को बरकरार रखिएगा और सुनते रहिएगा FM गोल्ड।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से

0: HIV हो सकता है?
1: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क?
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
3: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम गाते गुनगुनाते साथ मैं नूपुर और साथ हमारे 90s के कुछ प्यारे प्यारे सॉन्ग्स। तो अगर 90s की बात करूँ ना, 90s में प्लेलिस्ट एल्गोरिथम नहीं बनाता था, दोस्त बनाया करते थे। किसी ने नई कैसेट खरीदी, अगले दिन पूरी क्लास वही सुनती थी। किसी ने नया वॉकमैन लिया, सारे दोस्त उसी के एयरफोन शेयर करते थे। म्यूजिक तब भी कनेक्ट करता था, आज भी कनेक्ट करता है। 90s ने हमें सिर्फ सॉन्ग्स नहीं दिए बल्कि म्यूजिक सुनने का हमें पेशेंस भी दिया। एक एक शब्द सुनना, लिरिक्स समझना और फिर उसे गुनगुनाना, कुछ इस गीत की तरह रॉकी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर दा के स्वरों में। ये प्यारा सा रोमांटिक 90s का ट्रैक नहीं।

कुल यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, हमारा पे दिल आपके बिना कहीं लगता नहीं और वक्त ऐसा लगता है कि गुजरता नहीं, लेकिन ये वक्त जो है ये गुजरता है, बहुत तेजी से चलता है और इस वक्त भी चल ही रहा है। तो फिलहाल आप तक पहुंचा रही हूँ एक और प्यारा सा तराना, 80s और 90s के प्यारे प्यारे गीत गाते गुनगुनाते लेकर आता है आपके लिए। फिलहाल गुलाम फिल्म से गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में आप तक पहुंच रहा है और इसके बाद 5:30 पर सुनिएगा पूर्वोत्तर डायरी। फिलहाल के लिए गाते गुनगुनाते में बस इतना ही, नूपुर चाहेगी इजाजत। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ अपने अपनों का भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको ले चलते हैं नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। और बीते दिनों ताल कटोरा स्टेडियम पूर्वोत्तर भारत के युवाओं की प्रतिभा से सराबोर हुआ। पूर्वोत्तर भारत के युवाओं ने यहां पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और अपनी रचनात्मकता का बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं के साथ संवाद किया। तो आइए एक खास रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें हम इस खास आयोजन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
1: संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने महोत्सव के 9वें संस्करण में भाग लिया और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: The capability to take India forward, from coders to creators to entrepreneurs to musicians like Lily, who enthrall us with her capability, to athletes, Lolina Borugen, Mirabai Chanu. What does not my Northeast have? And this is the power we need to unleash. And this is the power that Prime Minister Narendra Modi aims to unleash by calling the Northeast our Ashtalakshmi, our eight forms of Lakshmi, my young friend.
1: उन्होंने खेल, संगीत, शिक्षा, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में क्षेत्र के युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही अवसर और मंच उपलब्ध कराने की। कार्यक्रम में माई होम इंडिया की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। सिंधिया ने कहा कि 21 साल पहले पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को दूसरे शहरों में अपनेपन का एहसास कराने के उद्देश्य से शुरू हुई यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को जोड़ने वाला मंच बन चुकी है। महोत्सव में विद्यार्थियों ने अपनी कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक पेश की। नृत्य प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों और विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी दी गई। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट ने पूर्वोत्तर की संस्कृति के साथ वहां के युवाओं की प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर सामने लाने का काम किया। यह महोत्सव विविधता में एकता और युवा शक्ति के संदेश के साथ सम्पन्न हुआ। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार।
0: श्रोताओं, आर्थिक सहायता किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। मेघालय सरकार ने भी मेघालय के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान करके उनके आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया और करीब 87,000 ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप्स दी गई। तो किस तरह से मेघालय सरकार की इस पहल से विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिल रही है और वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं।
3: मेघालय सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 87,691 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी की है। इसके लिए करीब 91 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्रवृत्ति का भुगतान तय समय से पहले पूरा हुआ। सरकार के अनुसार 27 अगस्त को राशि जारी किए जाने के बाद विद्यार्थियों के खातों में पैसा 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर पहुंच गया। पहले इसके लिए
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years

0: of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मेघालय की यह पहल बताती है कि समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता विद्यार्थियों की शिक्षा के सफर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।
2: मिजोरम न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि हमारे भारत का एक खूबसूरत राज्य है और राज्य की इसी खूबसूरती को देश दुनिया में सबके सामने लाने के लिए लगातार मिजोरम सरकार ने प्रयास भी किए हैं। विंटर फेस्टिवल एक ऐसा ही अवसर होता है जब पर्यटक मिजोरम आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं, यहाँ की कला संस्कृति से अवगत होते हैं और खासतौर पर जो वहाँ का आतिथ्य है उसका भी लाभ लेते हैं। तो मिजोरम सरकार ने अब विंटर फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं और किस तरह से पर्यटन आकर यहाँ के आकर्षण का लाभ ले सकते हैं इस मामले में इंतजाम किए जा रहे हैं। तो विंटर फेस्टिवल की तैयारियों पर मिजोरम सरकार की जो परियोजनाएं हैं इस संबंध में आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
3: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा की अध्यक्षता में विंटर फेस्टिवल 2026 की आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों और विभिन्न गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को भारत की विंटर कैपिटल के रूप में पहचान दिलाने के लिए विंटर फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय कारोबार और उद्यमिता को भी सामने लाया जाएगा। महोत्सव में कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। मत्स्य विभाग की ओर से एंगलिंग यानी मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से बांस से जुड़े नए उत्पादों की प्रदर्शनी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर सड़कों की सजावट, क्रिसमस परेड और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मिजोरम में पर्यटन को भी इस पहल से नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य में इस साल जनवरी से जून के बीच 5,37,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार बैराबी रांग रेल लाइन शुरू होने के बाद राज्य में पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। विंटर फेस्टिवल के जरिए मिजोरम अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती को देश दुनिया के सामने रखने के साथ स्थानीय उत्पादों और उद्यमियों के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार।
2: श्रोताओं, आज हम त्रिपुरा का जो आधुनिक स्वरूप देख रहे हैं उसमें कई ऐसे व्यक्तित्वों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनसे आज आधुनिक त्रिपुरा की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ऐसे ही एक शख्सियत थी महाराजा वीर विक्रम। उन्होंने त्रिपुरा का एक अच्छा आधुनिक स्वरूप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया और त्रिपुरा के बुनियादी ढांचे, यहाँ के विकास को लेकर एक नई तस्वीर हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो आइए महाराजा वीर विक्रम की त्रिपुरा के विकास में योगदान की इस कहानी को सुनते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
4: त्रिपुरा के इतिहास में कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिनकी दूरदर्शी सोच का असर आज भी राज्य के विकास में दिखाई देता है। इनमें महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता माना जाता है। 19 अगस्त 1908 को जन्मे महाराजा वीर विक्रम ने कम उम्र में त्रिपुरा की राजगद्दी संभाली। उनका शासनकाल भले ही लंबा नहीं रहा लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिन्होंने त्रिपुरा के आधुनिक विकास की नींव रखी। त्रिपुरा के शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर देववर्मन ने बताया कि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य और महारानी कंचन प्रभा देवी के प्रयासों से ही त्रिपुरा को भारतीय संघ का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसी वजह से आज हम गर्व से खुद को भारत का नागरिक कहते हैं।
5: वो सिर्फ महाराजा नहीं थे, सिर्फ जनजाति के लिए या बंगालीज के लिए या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए वो एक देश प्रेमी थे। आज हम लोग हिंदुस्तान में है, क्योंकि कंचन प्रभा देवी जानते थे कि महाराजा का सपना है कि हम

0: एक हिंदुस्तान में रहे, ना कि पाकिस्तान में। और उस सपने को पूरा महाराजा तो जिंदा नहीं रहे, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर राजमाता कंचन प्रभा देवी, जब महाराजा का देहांत हुआ, कंचन प्रभा देवी वॉज ओनली 35 ईयर्स ओल्ड। उस समय उनके ऊपर कितना दबाव था, कितना प्रेशर था, तभी भी 3 बच्चे उनके पास, मेरा पिताजी सिर्फ 14 साल, तभी भी उनका एक डिसीजन आज हमें हिंदुस्तानी बोलने का अवसर देता है।
1: महाराजा बीर विक्रम ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में महाराजा बीर विक्रम कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज भी त्रिपुरा के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। उन्होंने राज्य में स्कूलों के विस्तार और आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उनका योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, उन्होंने प्रशासन में सुधार किए, शहरों के सुनियोजित विकास पर जोर दिया, सड़कों और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाया और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया। उनके प्रयासों से अगर तला को एक व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ। अगरतला एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी उनके प्रमुख योगदानों में शामिल था। आज महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। शाही परिवार की एक अन्य सदस्य राजकुमारी प्रज्ञा देव बर्मन ने भी महाराजा बीर विक्रम के योगदान को याद करते हुए उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता बताया।
2: तो उन्होंने जो भी कुछ किया, अभी हम लोग पूरा अपना त्रिपुरा में हम देख सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, MBB कॉलेज हो या आपके धर्मनगर में कॉलेज है, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना त्रिपुरा में, वोटिंग राइट्स, उसको छोड़ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना, अगरतला टाउन प्लानिंग, और सबसे जो बड़ा उनका जो विजन था वो था आपका लैंड रिजर्वेशन, जो आज का जो TTADC है, इट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ जो महाराजा ने इन्विजन किया था, ताकि हमारे लोगों को बचाकर अपना लैंड राइट्स दे सके। तो ये सबका जो भी महाराज ने हमारे सबके लिए किया, धर्म जाति ये सब नहीं देखा महाराजा ने कभी भी। और आजकल के जमाने में लोग वोट्स लेने के लिए, पावर में आने के लिए, ये सब छोटे छोटे चीजों को लेकर हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में बहुत कुछ पैदा किए हैं। महाराजा के अंदर में जितना प्यार था अपने लोगों के लिए, ये हमको दोबारा कल्टीवेट करना चाहिए।
1: भारत की आजादी से पहले ही महाराजा बीर विक्रम ने एक आधुनिक और प्रगतिशील त्रिपुरा का सपना देखा था। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, शहरों के विकास और प्रशासन के क्षेत्र में उनके फैसले अपने समय से काफी आगे थे। त्रिपुरा के विकास में उनके योगदान की छाप आज भी दिखाई देती है। उनकी दूरदर्शी सोच और विकास की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।

0: श्रोताओं, सिक्किम की खेल प्रतिभाओं के बारे में हम तो पहले ही आपके साथ बातें करते रहे हैं इस कार्यक्रम में, और आज फिर आपके साथ हाल ही में आयोजित हुई एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ के बारे में बात करते हैं, जहां सिक्किम के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। तो स्पीति अल्ट्रा मैराथन में किस तरह से सिक्किम की खेल प्रतिभाओं ने अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत किया, आइए इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries.

0: as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: हासिल किया। सनमाया सुब्बा ने 77 और 42 किलोमीटर दोनों स्पर्धाओं में अपने आयु वर्ग में पांचवा स्थान प्राप्त किया। विनीता कामी ने 42 किलोमीटर में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। वहीं शोभा राय ने 21 किलोमीटर की सूर्यास्पीति चैलेंज में अपने आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में गंगा हॉन्ग सुब्बा ने 77 किलोमीटर की ओपन श्रेणी में दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 42 किलोमीटर की स्पर्धा में अपने आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। सिक्किम के इन खिलाड़ियों की उपलब्धि ने राज्य का गौरव बढ़ाया है और कठिन परिस्थितियों में उनकी मेहनत और जज्बे को भी सामने रखा है। मोइनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी।
2: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग और आसपास के गांवों के लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC में तैनात भारतीय सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू किया। मोटर योग्य सड़क संपर्क उपलब्ध न होने तथा कठिन और दुर्गम पहाड़ी इलाकों की चुनौतियों का सामना करते हुए ग्रामीण अपने सिर पर सामान ढोकर आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रहे हैं। दुर्गम भूभाग और सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण आवश्यक सामान पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सैनिकों के समर्थन में अपने स्वैच्छिक प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। ये पहल स्थानीय लोगों की देश और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सशस्त्र बलों के प्रति मजबूत राष्ट्रभक्ति और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भारतीय सेना को अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि कठिन सीमावर्ती क्षेत्र में सेवा दे रहे सेना के जवानों के प्रति सहयोग करना उनका दायित्व होने के साथ ही उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का भी एक माध्यम है। ताक्सिंग के इन स्वैच्छिक प्रयासों से स्थानीय आबादी और भारतीय सेना के बीच मजबूत संबंध उजागर होते हैं। ये संबंध विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण इस सीमावर्ती क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। ऊंचे और कठिन पहाड़ी रास्तों से आवश्यक सामग्री पहुंचाने में आने वाली परेशानियों के बावजूद ग्रामीणों ने सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े रहने और अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र की सेवा में योगदान देने की तत्परता दिखाई है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
2: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में हमने इस कार्यक्रम में बार बार चर्चा की भी है। पूर्वोत्तर राज्यों के एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। इस रोमांचक सफर में आपको निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सैर का एक अनुभव मिलेगा। तो आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो हमेशा हमें खींचते हैं अपनी ओर। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
4: आज हम भारत के उस हिस्से की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। उत्तर पूर्वी भारत, ये क्षेत्र अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, रहस्यमय गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ का तवांग मठ न केवल भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मठ बौद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मानो मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और खास जगह है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये देश के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बाघ, तेंदुआ और हिमालयी भालू एक ही जंगल में देखे जा सकते हैं। जंगल प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जिसे इसकी चाय बागानों की सुगंध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए

0: मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर अम्बुबाचे मेले के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ सफारी के दौरान हाथी, जंगली भैंसे, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी अनूठी संस्कृति और सत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैलियाँ और सरल जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं, जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की लोकटक झील उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसकी खासियत इसके तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इस झील के बीचों बीच स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। इम्फाल का इमा किथेल या महिला बाजार भी बेहद अनोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। करीब 500 साल पुराना ये बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता के मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं बादलों के घर मेघालय की ओर, जहाँ की हरियाली, झरने और गुफाएं प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। यहाँ का नोह कलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई करीब 1115 फीट है। मॉनसून के दौरान जब ये झरना पूरे वेग से बहता है तो इसका नजारा अविस्मरणीय होता है। चेरापूंजी और मासिनराम क्षेत्र में स्थित लिविंग रोड ब्रिज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किए हैं और ये सैकड़ों वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। प्रकृति और मानवीय कौशल का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब हम मिजोरम पहुंचते हैं, जिसे पहाड़ों के लोगों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाला दृश्य मन मोह लेता है। अब चलते हैं नागालैंड, जो अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति का उत्सव माना जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला ये महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और खानपान को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का कोहिमा युद्ध स्मारक और संग्रहालय स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर, जो भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो लेकिन इसके सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders

0: innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत और हर त्योहार एक कहानी कहता है। चाहे वो अरुणाचल की आध्यात्मिकता हो, असम के चाय बागानों की महक हो, मणिपुर की झीलों का सौंदर्य हो, मेघालय की गुफाओं का रहस्य हो, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियाँ हो, नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता हो या त्रिपुरा के महलों का शाही वैभव, ये क्षेत्र प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अगर आपने अभी तक उत्तर पूर्व की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर जाइए और इस अद्भुत भूमि की सुंदरता को अपनी आँखों से देखिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं कनकलता।

श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन, और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्यनिकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest PG accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS in New Delhi, four persons were brought to the trauma center for treatment. Of them, one person was brought dead, two persons are in critical condition and one was discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that six persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are feared trapped. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. The area where the incident occurred is close to the heart of Delhi University's South Campus and has several buildings, mostly housing student PGs, hostels and eateries. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has directed all concerned agencies to work in coordination to ensure swift rescue efforts on the ground. Delhi Chief Minister Rekha Gupta in a social media post said an adjacent building has also been vacated as a precautionary measure and every possible effort is being made to safely rescue those trapped and provide immediate assistance to the affected families. Union Home Minister Amit Shah has said that a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said the government has prepared a three-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a four-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah also highlighted the government's development efforts in Jammu and Kashmir. He said the Union Territory is now on the path of progress and development while Naxalism is becoming a thing of the past under the Narendra Modi-led government. Meanwhile, the Union Home Minister has cut short his visit and left for Delhi following the collapse of a multi-story building in the national capital. Mr. Shah, who reached Panaji last night on a three-day visit to Goa, his scheduled program to inaugurate newly constructed BJP state office building in Goa this evening was cancelled in the wake of the Delhi mishap. Vice President C.P. Radhakrishnan today urged students to stay away from drugs and restrict social media usage. The Vice President was addressing the Golden Jubilee celebrations of Geetanagar College at Guwahati in Assam today.
4: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
3: Preparations are underway in New Delhi for the upcoming BRICS Summit 2026 to be held at Bharat Mandapam on the 12th and 13th of this month. The 18th BRICS Summit will bring together leaders of BRICS members and partner countries, outreach countries and heads of international organizations. The External Affairs Ministry responded to the UN General Assembly resolution on Equal Area World Map. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that India has voted in favor of the United Nations General Assembly resolution on Equal Area Cartographic Representation. Mr. Jaiswal further added that India's sovereign territory, including the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, must be depicted in accordance with India's official map. The Ministry of Coal has rejected the media reports attributing reduced power generation at Punjab's thermal plants to inadequate coal supply from the centre. The Ministry clarified that adequate coal has been made available to Punjab's power plants. In badminton, Indian pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Ji-Thing and Reng Chiang-Tu in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. The victory marks the duo's 10th career title on the BWF World Tour. And that is the end of this news bulletin. We'll be right back.
5: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम

0: विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय मजबूत विकास दर के साथ आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही है। इस विकास प्रक्रिया में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई क्षेत्र देश में उत्पादन, रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की विकास गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एमएसएमई को अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता मिलती रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 मई 2026 को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS 5.0 को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, कारोबार और खासकर एमएसएमई के लिए समय पर मिलने वाले ऋण सहायता क्यों महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ वर्षों में ECLGS किस तरह विकसित हुई है और ECLGS 5.0 के तहत पात्र कारोबारियों को किस तरह अतिरिक्त ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्रोताओं, ECLGS का मूल उद्देश्य ऐसे समय में कारोबारों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है जब अचानक पैदा हुई परिस्थितियों के कारण उनके सामने नकदी का दबाव बढ़ जाता है। खास तौर पर MSMEs के लिए ये सहायता बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ऋण देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी देती है। इससे बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों का ऋण जोखिम कम होता है और वे पात्र कारोबारों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में अधिक सक्षम होते हैं। आइए अब समझते हैं कि ECLGS की शुरुआत क्यों हुई और पिछले कुछ वर्षों में ये योजना किस तरह बदली है।
1: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS की शुरुआत वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई थी। उस समय कोविड-19 महामारी के कारण कारोबार और आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। कारोबारों, खासकर एमएसएमई को अपनी परिचालन जरूरतें पूरी करने और कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता थी। ऐसे समय में सरकार ने मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को ECLGS के तहत दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर सरकारी गारंटी उपलब्ध कराई। इसका मतलब यह था कि अगर पात्र कर्जदार की ओर से ECLGS के तहत लिए गए ऋण का भुगतान नहीं हो पाता है तो निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण देने वाली संस्था को सरकार की गारंटी के माध्यम से जोखिम की सुरक्षा मिलती है। ECLGS की इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के लिए अतिरिक्त ऋण देना आसान हो और जरूरतमंद कारोबारों तक संस्थागत ऋण पहुंच सके। समय के साथ आर्थिक परिस्थितियां और अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतें बदलती गईं और उसी अनुसार ECLGS के दायरे का विस्तार किया गया। ECLGS 1.0 में MSME, कारोबारी प्रतिष्ठान, मुद्रा ऋण लेने वाले और व्यावसायिक उद्देश्य वाले व्यक्तिगत ऋण शामिल थे। इसमें ऐसे कर्जदार पात्र थे जिनका 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण 50 करोड़ रुपए तक था और ऋण भुगतान में देरी 60 दिनों तक थी। इसके बाद ECLGS 2.0 में 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र को शामिल किया गया। इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक के बकाया ऋण वाले पात्र कर्जदारों को सहायता दी गई। ECLGS 3.0 के तहत आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन, अवकाश एवं खेल तथा नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों को सहायता के दायरे में लाया गया। वहीं ECLGS 4.0 का मुख्य जोर कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर था। इसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी इकाइयां शामिल थीं।
0: श्रोताओं, ECLGS की प्रत्येक अगली कड़ी ने उस समय की आर्थिक और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार योजना के दायरे को आगे बढ़ाया। ECLGS 1.0 से 4.0 के बीच कुल 1.19 करोड़ गारंटियां जारी की गई, जिनके अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपए की राशि की गारंटी दी गई। अब 2026 में बाहरी आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा होने वाली चुनौतियों के बीच ECLGS 5.0 को एक नए उद्देश्य के साथ सामने लाया गया है। अब सवाल है कि ECLGS 5.0 में ऐसा क्या है जो इसे कारोबारों के लिए अधिक उपयोगी बनाता है? योजना के अंतर्गत मिलने वाली अतिरिक्त ऋण सहायता की सीमा क्या है? कौन से कारोबारी इसके लिए पात्र हैं और ऋण की शर्तें क्या है? आइए इन पहलुओं को समझते हैं।
1: ECLGS 5.0 को मई 2026 को मंजूरी दी गई थी और यह योजना 31 मार्च 2027 तक या 2,55,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक लागू रहेगी। इस योजना को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी

0: चीनी और एथेनॉल, सूचना प्रौद्योगिकी, कागज एवं कागज उत्पाद, शैक्षणिक संस्थान तथा चाय और कॉफी को छोड़कर अन्य पेय पदार्थ और तंबाकू क्षेत्र शामिल हैं। अगर कोई कारोबारी पात्र और गैर पात्र दोनों क्षेत्रों में काम करता है तो उसकी पात्रता वित्त वर्ष 2025-26 में पात्र क्षेत्रों से होने वाले कारोबारों के अनुपात के आधार पर तय की जाएगी। ECLGS 5.0 के तहत पात्र MSME को दिए गए अतिरिक्त ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है, जबकि पात्र गैर MSME के लिए यह गारंटी 90% है। इसके अलावा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से योजना के तहत कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाता। MSME और गैर MSME के लिए अतिरिक्त ऋण की सीमा वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कारोबार की अधिकतम फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल आउटस्टैंडिंग के 20% तक है। एक कर्जदार के लिए इसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए तक तय की गई है। ऋण की ब्याज दर भी निर्धारित व्यवस्था के तहत रखी गई है। MSME के लिए ब्याज दर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR से और पात्र गैर MSME के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR से जुड़ी है। दोनों मामलों में ऋण देने वाली संस्था बेंचमार्क से अधिकतम 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज ले सकती है, लेकिन कुल ब्याज दर 9% सालाना से अधिक नहीं हो सकती है। पात्र NBFC के मामले में ब्याज दर 13% सालाना से अधिक नहीं हो सकती है। इस ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल है, यानी कर्जदार को शुरुआती अवधि में ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। अनुसूचित यात्री विमानन कंपनियों के लिए व्यवस्था अलग है। उन्हें 31 मार्च 2026 तक मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास मौजूदा फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज होनी चाहिए और उनकी स्थिति स्टैंडर्ड होनी चाहिए। हालांकि SMA2 खाते में शामिल नहीं है। इन विमानन कंपनियों के लिए अतिरिक्त ऋण सहायता 100% तक हो सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 1500 करोड़ रुपए प्रति कर्जदार है। हालांकि 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 1500 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि के लिए प्रमोटर या मालिकों की ओर से समान अनुपात में इक्विटी योगदान की शर्त है। विमानन कंपनियों के लिए ऋण पर ब्याज दर संबंधित ऋणदाता संस्था की बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार तय होगी। ऋण की अवधि 7 वर्ष की होगी, जिसमें 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, ECLGS 5.0 के प्रभाव को इसके शुरुआती कार्यान्वयन से भी समझा जा सकता है। 20 अगस्त 2026 तक योजना के अंतर्गत 673,989 गारंटियां जारी की गई थी और इनकी गारंटीकृत राशि 2,50,024 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इनमें 97.3% गारंटियां संख्या के आधार पर MSME को मिली, जबकि कुल गारंटीकृत राशि में MSME की हिस्सेदारी 80.79% रही। ये दिखाता है कि योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी छोटा और मध्यम कारोबारी क्षेत्र बना हुआ है। योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से देश भर में जागरूकता और आउटरीच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। 20 मई से 6 जून 2026 के बीच 9 स्थानों पर पहला चरण आयोजित किया गया। इसमें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटीज, NCGTC बैंकों, PSB अलायंस, उद्योग संगठनों और कारोबारियों ने भाग लिया। इसके बाद 10 और स्थानों पर दूसरा चरण शुरू किया गया, जिनमें से 4 स्थानों पर अभियान पूरा हो चुका है। पात्र कारोबारी जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से भी योजना से जुड़ी जानकारी और ऋण सुविधा तक पहुंच बना सकते हैं। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अक्षत ममगाई।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ऊनत्रिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। आगामी त्रिवर्षेषु शत अन्ताराष्ट्रिय तथा अन्ताराज्यीय मादक सञ्जालानि खण्डयितुं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन निर्धारितं लक्ष्यम्। भारतस्य आर्थिकशक्तिः, नीति, गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। भारतीय प्रतिष्ठानानि जागतिक स्तरे नेतृत्वं कुर्युः इति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः ओजस्वयुतम् आह्वानम्।

0: संयुक्त राष्ट्र संसदी समान क्षेत्र फल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। संप्रभुता प्रादेशिक अखण्डतयोः अक्षुण्णतां रेखांकयत् भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलं आधिकारिक मानचित्रानुगुणं एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षीदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेंझेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने 39,000 वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादक पदार्थ विरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन 100 मादक संजालानि खण्डयितुं, 100 अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा 100 अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्चलक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य 100 वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुं उच्चलक्ष्य धारणस्य मंत्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़ताम प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत् यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व समृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आन्तरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम् अभूतपूर्वम् परिवर्तनम् साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत्। अनेनाभियानेन भारतम् अद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम् अभवत्। असौ न्यगादीत् यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.25 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातम् सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च 2 लाख कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानम् स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रीय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनम् असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपितु केवलं समान क्षेत्रफल प्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we will be taking calls from you, our listeners, on your mutual fund related queries. But do remember, listeners, that we do not address fund specific queries. You can call us on these numbers 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Karjor Abhinandan, Namaskar, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Shrotaon, aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke tamam sawalon ke jawab dene ki koshish karenge. Sawal poochne ke liye aap in numbers par hame phone kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106. इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, आपके सवाल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से दुनिया का नेतृत्व करने वाली वैश्विक स्तर की कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, वित्तीय और कानूनी कंपनियां बनाने का आह्वान किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Over to you, Prachi.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। और इसी बीच अनुभव दिल्ली से हमारे साथ भुवन जुड़ रहे हैं। भुवन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, मार्केट मंत्र की टीम को और एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न ये है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन होता है, तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन खराब नहीं जाए?
2: जी, इस चीज़ की जानकारी मेरे को अभी नहीं होगी। आप अगले सप्ताह कॉल करिएगा, इसकी जानकारी आपको मैं तब दे पाऊंगा।
0: सो लाइक कार एक्सपर्ट इज सेइंग, प्लीज डू कॉल अस विद द सेम क्वेरी नेक्स्ट वीक एंड वी विल बी hopefully we'll have the answer for you. Our expert will have that answer for you. Let's move on to the next story. Foreign portfolio investors, FPIs, were net sellers of Indian equities in the first 4 days of September. According to the latest depository data, FPIs have pulled out 7,443 crore rupees from the domestic stock market till now in September. Of the total net outflow, 8,403 crore rupees were withdrawn through selling on stock exchanges, while 960 crore rupees was invested through the primary market. Despite robust domestic GDP data, healthy GST collections, record high forex reserves, and a stable currency, FPIs persisted as net sellers in domestic equities. However, in August, FPIs infused 29,631 crore rupees into Indian equities. Meanwhile, the debt market has witnessed mixed trends in foreign portfolio investors' flows. So far in September, FPIs have infused 217 crore rupees in debt securities through the general limit route.

0: In contrast, the voluntary retention route VRR has recorded outflows of 231 crore rupees, while the fully accessible route or the FAR experienced net divestments of 377 crore rupees during the period under review. And before we go on to the next story, Akar, I have a question for you. You know, many a times when one starts investing into mutual funds, there's always this confusion as to which type of funds one should be, you know, investing it to begin with. Mm-hmm. So how can an investor decide between the various types of mutual funds, equity, debt, hybrid, or other categories? So how to go about it?
1: So as you just mentioned that there are several types of mutual funds, even within the asset classes like equities, there are multiple categories. We have a large cap fund, we have a mid cap fund, we have a small cap fund, and if we move to hybrid, there are seven different types of hybrid funds. One is the aggressive hybrid, one is a balanced advantage, and then we also have arbitrage equity savings funds, and even in the debt funds there are several types of categories. So to answer your question, the first requirement should be to ask yourself before investing that, when would you need this money? What's the horizon that you want to invest it for? And then the second thing would be, what's the purpose? Is the goal negotiable or not? When I say negotiable, it basically means that, are you comfortable and are you flexible with the horizon? For example, if you plan to invest it for 5 years, so would you mind that, if that shifts to 6 years? Once you have these questions, it will help you decide on the asset allocation straight away. So for newcomers, if you have a horizon of more than 5 years, that is the time only when you should be investing in equities. And if your horizon is like 1 or 2 years, you should not be going towards equities or even a hybrid fund for such a short period. You should stick with debt funds. So once you have the answer of the asset class, then you should go deeper into the different kind of funds. For example, if we are talking about equities, then all the categories, they have different risk and reward ratios. So large cap is something which carries the least risk among the equity categories, and is the least volatile, because large cap funds invest at least 80% of the portfolio in the top 100 companies, the stocks of the top 100 companies. At the same time, if we look at the small cap funds, they are comparatively much more riskier. They do return, they do give you higher returns, but they are more volatile. So here comes that part, even once you've decided the asset class, you are into equities, then what's your horizon? So if it is like just 5 years, four, 5 years, it's better you stick with, less risky equity funds like large cap funds, or maybe a diversified fund if your horizon is like 6-7 years, a flexi cap fund, which invests the money across large cap stocks, mid cap stocks, and small cap stocks. And if you have a higher horizon, maybe 10-15 years, at least 8-10 years, and you have that risk appetite as well, then you can look at mid cap and small cap funds. So just to conclude, one is that you should be sure of when would you need this money, what's the investment horizon, and then the purpose, whether it is negotiable, the flexibility of timing. So all these questions, along with your risk appetite, they help you decide the asset class first and then the exact fund category.
2: यानी कि हम जब निवेश करें तो उससे पहले ये सोचें, समझें कि हमें किस वक्त तक चाहिए हमारा पैसा और कितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं और क्या और कितना रिस्क हम बियर कर सकते हैं इस दौरान में.
1: जी,
2: श्रोताओं, अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो बेधड़क पूछिए. इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. आपके सवालों के जवाब लेकर आकार रस्तोगी हमारे साथ हमारे समक्ष बैठे हैं. आकार, अगर कोई जो फंड है वो अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कुछ समय से, तो हाई एक्सपेंस रेशियो के जस्टिफाई होता है?
1: देखिए, जो आपके रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो आपके एक्सपेंस रेशियोज को कंसिडर करने के बाद ही आते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका एनएवी में एडजस्ट होता है, एंड रिटर्न्स आपका यूजली वो एनएवी के बेसिस पे ही होता है. एक्सपेंस रेशियोज के लिए रेगुलेटर ने, सेबी ने कुछ मैक्सिमम सीलिंग्स लगा रखी है, एंड एज फार एज अगर वो फंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है प्लस बाकी पोर्टफोलियो ठीक है एंड ऑल थिंग्स गोज तो देयर इज नो हार्म इन इट. बट साथ ही में मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ समय से बहुत दफ़े ऐसा होता है कि जो रीसेंट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. कोई सा फंड ऐसा होता है अगर आप देखेंगे कि अच्छा अभी पिछले 6 महीने में ये एकदम नंबर 1 पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए या पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए. और यहीं पे बहुत ज़्यादा निवेशक गलती करते हैं. हम लोग क्या करते हैं एकदम हम लोग आसपास के पिछले 6 महीने के पिछले 3 महीने के 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं और जो टॉप पे होते हैं हम लोग सीधा उसमें निवेश कर देते हैं. बट वो चीज सही नहीं है.
2: लोभ आ जाता है मन में तुरंत.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और उसके अलावा देखिए ये पास रिटर्न्स पे बेसिस पे होता है. एक आपको एक खाली इंडिकेशन दे रहा है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस एक लंबे समय में देखें रोलिंग रिटर्न्स पे या फिर एक लॉन्ग होराइजन में 3 साल 4 साल 5 साल और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में. कि जैसे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो उस फंड ने अपने कैटेगरी के बाकी फंड्स के तरह कैसे काम किया है. केवल अभी ठीक पिछले कुछ 1-2 महीने की परफॉर्मेंस या 6-7 महीने की परफॉर्मेंस एक अकेला कारण नहीं होना चाहिए कि आप उस फंड में निवेश करें.
0: आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग आकार यू नो होल्ड्स स्पेशली ट्रू नाउडेज बिकॉज वी हैव बीन सीइंग मार्केट्स हैव बीन वोलेटाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस. सो लाइक यू आर सेइंग दैट व्हेन यू आर असेसिंग अ फंड व्हेन यू आर यू नो असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट गो बाय अ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस. वी हैव टू लुक एंड लाइक आई सेड द मार्केट इज वोलेटाइल राइट नाउ. सो इट्स बेटर इफ अ फंड इज डूइंग वेल और हैज डन वेल यू नो इन दिस पीरियड इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी गो बैक अ फ्यू इयर्स एंड सी how it was performing, you know, or if a fund, you know, does well, or say let's a few months down the line when the market is stable, it'll be very pertinent to see how that fund was performing right now when the markets were volatile.
1: Right.
2: भोपाल से इस बीच हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: आकार जी को मार्केट मंत्री टीम को भी नमस्कार. मेरा सवाल माय क्वेश्चन इज अबाउट लार्ज कैप. लार्ज कैप फंड हैज गॉन डाउन और नॉट परफॉर्म वेल बेसिकली ड्यू टू एफआईआई पुलिंग आउट लॉट ऑफ मनी. सो इफ एनीवन हैज अ सरप्लस फंड बिसाइड्स हिज रनिंग एसआईपीज व्हाट वुड बी द राइट स्ट्रेटजी. शुड इट बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप बिकॉज दे आर डाउन और वी गो फॉर कॉन्ट्रा फंड. विच स्ट्रेटजी वुड वर्क बेटर इन फॉर पीपल हु हैव सम एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट. थैंक यू.
1: शंकर जी specifically, you know, first of all, I would like to say that it somehow seemed like that you're trying to, you know, capture a market opportunity or trying to time the market because, you know, as you were saying that, you know, they are down and I have a bit of surplus. So here I would like to caution you because, you know, it's never a good idea to time the market because you really don't know in which direction the market would move. So firstly, as we were talking, I mean, first of all, don't, you know, invest with the intention of making quick money or, you know, getting good returns over the short term or, you know, being opportunistic. So the whole idea of investing in mutual funds is that, you know, you diversify your risk. And also here comes the concept of SIP, wherein, you know, you stagger your investment over a period of time. You just said that you already have an ongoing SIP. And if you have a surplus, what I would rather recommend is that, you know, even with that surplus amount, you start another SIP to, you know, spread it over a period of time, maybe 6-7 months or a year, depending on how large the sum is, what you know value does it hold in your portfolio. And if you fear to you know consume that amount, it's better you know put that amount in a liquid fund and set up an STP from there. And whether to invest in large cap specifically or not, I would say it again depends on you know your whole portfolio and the time horizon in the risk appetite. You also mentioned about the contra fund. So definitely, you know, when you are investing in equities, value funds and contra funds are a good add-on to your diversified portfolio, but they may not be necessarily completely invested into just large cap stocks. They might carry a slightly more risk. So it would be better to, you know, look at your overall portfolio, and the value contra funds should be like 20% 20-30% of your diversified portfolio.
0: We have the next caller with us online. Pradeep is calling us from Delhi. Pradeep, I will request you to just be a little more patient because I want to ask Akar here. We're talking of contra funds. For those of our listeners who do not know, what exactly is a contra fund?
1: So, contra funds usually invest in the strategies or you know, the stocks of the companies which are currently not in favor or you know, in
0: against
1: which,
0: the tide.
1: Right.
0: Okay, now let's take the call. Pradeep has been very patient. Pradeep, welcome to Market Mantra and ask your question, please.
4: Namaskar, Market Mantra team. Pradeep bol raha hu Delhi se.
0: Ji, sawal puche.
4: Sir, mera na ek mid cap mein chal raha hai SIP. बीच में मैं उसमें लमसम भी करता रहता हूँ. तो सर उसमें ना मैं राउंड में 5 लाख के राउंड में अभी जमा करा चुका हूँ उसमें पैसा. लेकिन वो मिड कैप ऐसा है कि उसका पोर्टफोलियो बड़ा कंसंट्रेटेड है काफी
1: जी.
4: तो मैं सोच रहा था कि मेरे को अभी उसमें जैसे 5 लाख रुपए मेरा जमा हो चुका, क्या मेरे को कोई दूसरा मिड कैप ले लेना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि मैं बीच बीच में ना लमसम करता हूँ. तो जैसे मेरा एक चल रहा है फार्मा में कर देता हूँ, मैं डिफेंस में चलता हूँ, SIP मेरी चल रही है, तो बीच बीच में जैसे करेक्शन आती है तो मैं वहां लमसम कर देता हूँ. तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है क्या सर? प्लीज आप बताइए.
1: देखिए, पहले जैसे आपने बताया कि आप एक मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रहा था, आप एक ही मिड कैप फंड में आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा रखा है. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए, डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है. सारा का सारा आपका जो पोर्टफोलियो केवल और केवल एक फंड पर निर्भर नहीं होना चाहिए. तो अगर ऐसा है कि केवल वो एक फंड में, तो आपको एक दूसरा पोर्टफोलियो, एक दूसरा मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं.
0: वो ये भी जानना, यही जानना चाह रहे कि वो क्या करें ऐसा.
1: हाँ जी, तो उस केस में आप एक और मिड कैप फंड ऐड करिए. बट केवल खाली एक यही कारण नहीं होना चाहिए कि उसमें अभी इतना अमाउंट हो गया कि 5 लाख का उसमें पूंजी इकट्ठी हो गई, इसलिए मैं दूसरे एक और फंड में लगा देता हूँ, अब इसमें हो गया. अगर वो फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और जो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनी हुई है और फंड्स में निवेश है, आपने ठीक ठाक करा हुआ है, इसके अलावा आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी करा हुआ है, तो उस सिनेरियो में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप किसी एक और फंड को ऐड करें, क्योंकि वहाँ पर वरना फिर आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे और बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे.
2: जी, आकर कई बार ऐसा होता है, और अभी हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी वही बात बताई जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, कि हम SIP कर रहे होते हैं और साथ के साथ हमारे पास लमसम भी अमाउंट होता है. आपने कहा, हम शिवशंकर जुड़े हुए थे भोपाल से, तो आपने कहा कि जो लमसम अमाउंट है, अगर वो अमाउंट अलाउ करता है तो आप उसको SIP के तौर पर इन्वेस्ट करें, ना कि आप लमसम लगाएं पैसा. इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं?
1: देखिए, जब भी आप एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बेसिकली जो आपकी परचेज कॉस्ट है आप उसको एवरेज आउट कर देते हैं. जैसे कि इसको एक, अगर मैं एक उदाहरण में समझाऊं, मान लीजिए आज किसी के पास एक 1 लाख रुपए लमसम है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है और उसने पूरा का पूरा आज मार्केट में डाल दिया, और एकदम ही डालने के बाद एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो जो उसका पूरा का पूरा पैसा है वो आज के एक मार्केट पॉइंट पे घुस गया है और वो एक रिस्क बन गया, एक एंट्री पॉइंट का रिस्क बन गया. वहीं पे अगर उन्होंने ये पॉइंट, ये जो अमाउंट है, कुछ 3 महीने या 6 महीने में स्प्रेड करा होता, तो वो सारा का सारा पैसा आज इन्वेस्ट नहीं होता,
2: तुरंत लाल में नहीं जाता.
1: बिल्कुल, तुरंत लाल में नहीं जाता, और वो आगे आने वाले समय में जब मार्केट नीचे गिरा होता वो ज्यादा खरीद पाते, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट सस्ता हो गया, हमने ज्यादा चीजें खरीद ली. बिल्कुल, तो एक आपके जो परचेज कॉस्ट है उसको एवरेज आउट कर देता है, और आपका जो रिस्क है वो उससे कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो जाता है मार्केट में गलत एंट्री पॉइंट में घुसने का.
2: बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, इनका नाम है सुभाष. सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: नमस्कार सर जी,
0: सवाल पूछे सुभाष जी.
1: नमस्कार सुभाष जी.
5: सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि निफ्टी इंडेक्स फंड को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो होनी चाहिए मेन, या कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए?
1: नहीं, मेन उसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा। देखिए जितने भी सारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये फंड्स ऐसे नहीं होते कि इनमें एक फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये फंड्स केवल आपका जो मार्केट है, जैसे निफ्टी आपने खुद बोला, उसको ट्रैक करेंगे। जिस रेशियो में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के इंडेक्स में, ये फंड्स आपका सारा पैसा उसी प्रपोर्शन में उन्हीं स्टॉक्स में, उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो आमतौर पर जितने भी निफ्टी के या कोई से भी इंडेक्स फंड्स है जो एक सेम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे, उनके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। उनके रिटर्न्स में जो अंतर के कारण होते हैं वो दो होते हैं केवल। एक होता है आपका एक्सपेंस रेशियो,

0: और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर को अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये हो गया कि वो जो उस इंडेक्स को ट्रैक करने का काम कर रहा है उसको डुप्लीकेट करने का, रिप्लीकेट करने का कितने अच्छे से कर पा रहा है। अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा तो फिर ज़्यादा डिफरेंस होएगा, अदरवाइज डिफरेंस कम होएगा। तो आप केवल एक्सपेंस रेशियो पे सॉर्ट करिए शुरुआती तौर पे, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा, और आप उस इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं।
1: We do have a next caller from Delhi. Sujan Negi is calling us from there. But before we take your call, Sujan, Prachi, why don't you give us how the gold silver prices were during the week?
2: बिल्कुल श्रोताओं, अन्य खबरों में सोने और चांदी के भाव समझ लेते हैं। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमरीकी डॉलर, अमरीकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और निवेशकों की धारणा इस उम्मीद से भी प्रभावित हुई कि अमरीकी फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में भी आक्रामक मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 2.2% गिरकर 152,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 2% की गिरावट के साथ 231,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 1.2% की गिरावट के साथ $4,441.90 प्रति ट्राई आउंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 1.4% फिसल कर $66.04 प्रति ट्राई आउंस पर आ गया। और सुजान नेगी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते,
2: बहुत अभिनंदन।
3: हाँ जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में मनी, मतलब मैंने लगा रखे है उसमें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है मेरे पैसे, तो वो माइनस में दिखा रहा है, तो क्या मेरे को स्विच ओवर कर देना चाहिए किसी दूसरे फंड में? और करना चाहिए तो कौन से फंड, मुझे को अब कौन सा फंड लेना चाहिए, और स्विच करने का मतलब चार्ज लगता है क्या? तो यही कुछ क्वेश्चन है मैम मेरे।
0: देखिए सुजन जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय में मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा है, और जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो केवल उस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के वजह से आप एकदम से ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपको उस फंड से जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा उसमें रहकर कुछ उस फंड को थोड़ा और समय दीजिए और देखिए उसका जो रिटर्न्स है। यहीं पे दूसरी चीज़ आती है, जो एक आपने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा कि अगर आप स्विच करते हैं तो क्या उस स्विच करने के चार्जेस लगेंगे। देखिए, जब भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में जाते हैं या निकालते हैं तो केवल दो तरीके के चार्जेस होते हैं, या जो एक कॉस्ट होती है उनको चार्जेस नहीं बोलना चाहिए, जो आपको इम्पैक्ट करेगी। पहला है कि उस पर जो भी टैक्स है, टैक्स हमारा म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन्स के तौर पे लगता है, और जो इक्विटी फंड्स है यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपका जो टैक्स है वो 12.5% रहता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूएंस है कि हर फाइनेंशियल ईयर में इक्विटीज़ के और इक्विटी फंड्स के जो भी आपकी गेन्स होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के होते हैं, वो पहले 1.25 लाख पर टैक्स की छूट होती है, उसके बाद 12.5% लगता है। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपका जो टैक्स उस गेन्स पे वो 20% लगता है। दूसरा एक कॉस्ट रहता है एग्जिट लोड का। अगर आप एक फंड के एक डिफाइंड पीरियड से बहुत जल्दी निकालते हैं तो वहां पे आपके एनएवी का कुछ परसेंटेज काट लेते हैं।
2: दिल्ली से हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
2: नमस्कार
4: रस्तोगी जी को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 साल के लिए, तो दो अच्छे मल्टी कैप फंड बता सकते हैं?
2: फंड स्पेसिफिक तो हम यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी अन्य सवाल हो तो जरूर अगले सप्ताह आप संडे को हमें कॉल करें, हमें संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। द 7 कोर ओपेक प्लस कंट्रीज सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवैत, Kazakhstan, Algeria and Oman met virtually today to review global market conditions and outlook. They decided to keep the grouping's oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision comes after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting comes against the backdrop of continuing continuing disruptions to the oil exports, including those linked to the conflict involving Iran and disruption around the Strait of Hormuz. These disruptions have limited the impact of OPEC Plus production decisions on oil, global oil supplies and prices. And let's take the next call. Kunj Bihari is calling us from Mathura. Welcome to the program. Please ask your question.
5: धन्यवाद
1: जी.
5: मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताते हैं कि आपका जो पैसा है एक मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, वो मैनेजर किसके द्वारा बिठाए जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट है जो हमारा पैसा कंपनियों में इधर लगाते हैं, क्या वो हमारे फायदे के लिए ही ठीक है, क्या कभी वो हमारे को लॉस भी करा सकते हैं?
0: से जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ये उस फंड म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा नौकरी पे रखे जाते हैं, उनको एक काम असाइन किया जाता है और वो लोग एकदम प्रोफेशनल्स होते हैं. सो फंड मैनेजर्स का रोल ही होता है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे लोग, अगर हम लोग शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं चेक कर सकते कि कब कौन से स्टॉक में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग पढ़ाई करके प्रोफेशनल तरीके से और एक काम करते हैं. सो उनका फ़ायदा बेसिकली है कि उनका जॉब है, दे आर बीइंग पेड फॉर दिस.
2: अन्य खबरों में, घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह पश्चिम एशिया में होने वाले घटनाक्रम, कमोडिटी कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और मुद्रा बाजार में होने वाले बदलावों पर रहेगा. प्राथमिक बाजार में मुख्य बोर्ड के 12 आईपीओ अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं. अमरीका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े समेत प्रमुख आर्थिक संकेतक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. इस बीच जापान, ब्रिटेन और यूरोजोन के जीडीपी के अनुमान भी जारी किए जाएंगे. चीन में पीपीआई और व्यापार से जुड़े आंकड़े प्रमुख आर्थिक संकेतकों में शामिल होंगे जिन पर निवेशकों की नजर होगी.
1: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. Discussions are also expected on linking national fast payment systems such as India's Unified Payments Interface or UPI and Brazil's PIX, along with interoperability between central bank digital currencies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, US tariff pressures and high dollar क्लियरिंग कॉस्ट्स.
2: आकार कार्यक्रम में आने के लिए मेरे और अनुभा के और हमारे तमाम श्रोताओं के और कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
1: And before we close, a look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar. Namaskar.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि 4 लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने

0: के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान भी किया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है। समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमरीका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसके एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया है कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया है। अमरीकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Union Home Minister Amit Shah has said that a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks.
3: Between 2014 and 2026, the quantity of drugs seized has increased significantly to more than 1 crore 19 lakh kilograms. The value of these drugs stand at approximately 1.89 lakh crore rupees. Between 2014 and 2026, the government led by Narendra Modi has destroyed approximately 48 lakh 66,000 kilograms of drugs.
1: विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है.
2: Mr. Shah also highlighted the government's development efforts in Jammu and Kashmir. He said the Union Territory is now on the path of progress and development, while Naxalism is becoming a thing of the past under the Narendra Modi-led government. Meanwhile, the Union Home Minister has cut short his visit and left for Delhi following the collapse of a multi-story building in the national capital. Mr. Shah reached Panaji last night on a three-day visit to Goa. A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest or PG accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, four persons were brought to the trauma center for treatment. Of them, one person was brought dead, two are in critical condition, and one has been discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that six persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are still fear trapped. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. The area where the incident occurred is close to the heart of Delhi University's South Campus and has several buildings, mostly housing student PGs, hostels and eateries. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has directed all concerned agencies to work in coordination to ensure swift rescue efforts on the ground. Delhi Chief Minister Rekha Gupta in a social media post said an adjacent building has also been vacated as a precautionary measure and every possible effort is being made to safely rescue those trapped and provide immediate assistance to the affected families. The Ministry of Coal has rejected media reports attributing reduced power generation at Punjab's thermal plants to inadequate coal supply from the centre. The Ministry clarified that adequate coal has been made available to Punjab's power plants. It said that Coal India Limited remains fully committed to ensuring uninterrupted coal supply for power generation across the country, including in the state of Punjab. The External Affairs Ministry responded to the UN General Assembly resolution on Equal Area World Map. Spokesperson of Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said that India has voted in favour of the United Nations General Assembly resolution on Equal Area Cartographic Representation. Mr. Jaiswal further added that India's sovereign territory, including the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, must be depicted in accordance with India's official map. The seven core OPEC plus countries, that is Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman, met virtually today to review global market conditions and outlook. They decided to keep its oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Kyiv today on their first official visit to Ukraine as part of a renewed U.S. diplomatic push to revive peace efforts in the Russia-Ukraine conflict. Their visit follows yesterday's meeting with Russian President Vladimir Putin in Moscow. Following the meeting, Putin ordered a three-day pause in strikes on Kyiv. And floods have affected normal life in various parts of Bihar. Several major rivers, including the Ganga, Gandak and Kosi, are flowing above the danger mark. In view of the rising water levels of Ganga, special vigilance is being maintained in downstream areas. The water level of the river has crossed the highest flood level at different ghats in Patna. And that is the end of this news bulletin.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण में भागीदारी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर युगल किशोर जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: पानी सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जल की कमी, भूजल का लगातार गिरता स्तर, जलवायु परिवर्तन और पानी की दिनों दिन बढ़ती मांग जैसी चिंताओं ने जल संरक्षण को भारत समेत दुनिया भर की सरकारों के लिए बड़ी प्राथमिकता बना दिया है। जल संरक्षण में जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी यानी कि JSJB कार्यक्रम लॉन्च किया था, जो भारत में जल स्थिरता के लिए समुदाय आधारित एक पहल है।

0: आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस पहल के पिछले दो सालों के सफर, जल संरक्षण में जन भागीदारी की बढ़ती भूमिका, और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री युगल किशोर जोशी। जोशी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए।
0: मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि भारत के जल संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी अहम क्यों है?
1: पानी, जैसा हम सब जानते हैं, कि एक संसाधन ही नहीं है बल्कि जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और मानवीय गरिमा का आधार है। और हमारे जैसे विशाल देश में, 140 करोड़ से अधिक आबादी के देश में और इतनी विविधता भरे देश में जल संरक्षण का कार्य, खासकर जब हम अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, चातुर्मास की बात अब नहीं होती, अब 9 या 10 दिन में बारिश का पानी आ जाता है और पानी का पोल्यूशन के बारे में हर कोई चिंतित है, जानता है, तो ऐसे में यह जल संरक्षण का कार्य केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए जनभागीदारी नितांत आवश्यक है। जनभागीदारी मतलब समुदायों की भागीदारी हो, स्थानीय संस्थाओं की हो, पंचायतों की हो, नागरिक समाज की हो और हर नागरिक की सक्रिय सहभागिता हो। हमारी भारत की हाल की ही जो जल यात्रा रही है, खासकर 2014 के बाद, उसमें भी ये जल यात्रा सुनिश्चित करती है कि हम सिर्फ अब ढांचागत निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि जन आधारित जल सुरक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं।
0: जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से पिछले दो सालों में जल संचय, जन भागीदारी जो ये पहल, इसमें कितनी प्रगति हुई है? इसके अंतर्गत कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं जो जल संचय के लिए, जल संरक्षण के लिए बनाए गए हैं?
1: जैसा कि आप जानती हैं, 6 सितंबर 2024 से यह आरंभ हुआ था और पिछले साल 2025-26 में बहुत व्यापक रूप से यह पहल आगे बढ़ाई गई और इसके केंद्र में समुदाय के स्वामित्व की भावना है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बहुत कम लागत वाली जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात है, जिसको हिंदी में भूजल पुनर्भरण कहते हैं, या वाटर कंजर्वेशन की जो संरचनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और जो निष्क्रिय बोरवेल हैं, जो बोरवेल अभी सूख गए हैं, उनको दोबारा से रिवाइटलाइज करना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक समाधान अपनाना, इन पर जोर दिया गया था। तो जैसा कि मुझे अनुमान है, जो JSJB के अंतर्गत जो पहला राउंड अभी 2 साल का हुआ है, 27 लाख से अधिक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से मई 2026 तक करीब करीब 1.5 करोड़ से अधिक ये संरचनाएं, और अभी सितंबर के शुरुआत तक के जो आंकड़े आए थे वो था कि 1.58 करोड़ से अधिक जो कृत्रिम भूजल का रिचार्ज है, उस तरह की संरचनाएं रिपोर्ट की गई हैं। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ये जागरूकता का ही मुद्दा नहीं है बल्कि समाज इसको बहुत बड़े ढंग से अपना रहा है और ये एक जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
0: इस साल जून में जल संचय, जन भागीदारी को एक और पहल, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, इसके साथ जोड़ा गया और अब ये अभियान जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन कहलाता है। तो अभियान का दायरा बढ़ाने के पीछे क्या सोच थी?
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी शायद भारतवर्ष के इतिहास में अकेले और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जल को लेकर के एक चहुमुखी, एक होलिस्टिक कंजर्वेशन और डेवलपमेंट या वाटर मैनेजमेंट अगर मैं कहूँ, उसकी ओर ध्यान दिया। चाहे पिछले 25 वर्षों में उनका गुजरात का मुख्यमंत्रित्व का काल हो या पिछले 12 सालों से भारत के प्रधानमंत्री का, पानी और जल संरक्षण उनकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। तो जो जल संरक्षण के प्रयास हैं, यह 2014 से ही भारत भर में उनके विजन से आगे बढ़ते रहे हैं और इन वर्षों में हमने देखा है कि बहुत तरह की नई नई इनिशिएटिव्स उन्होंने आरंभ किए, चाहे अटल भूजल योजना हो, चाहे नमामि गंगे प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जल जीवन मिशन हो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक वर्ष 2019 में उन्हीं के नेतृत्व और प्रेरणा से जल शक्ति अभियान शुरू हुआ था, जो बहुत तरह की चीजों को, जिनमें कि जलागम विकास होता है, तालाबों का पुनरुद्धार होता है, जल स्रोतों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, वर्षा के पानी का संचयन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ट्री प्लांटेशन और जो पारंपरिक हमारे ट्रेडिशनल वाटर टेक्नोलॉजीज हैं, उनको कैसे पुनर्जीवन दिया जाए, इन सब चीजों पर यह कार्यक्रम जल शक्ति अभियान 2019 में आरंभ किया गया था। उसके बाद अगले साल ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन के रूप में और अधिक सशक्त हुआ। इसमें बेसिकली 5 मोटी मोटी चीजों पर ध्यान था कि कैसे पानी का कंजर्वेशन किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को दोबारा से रिवाइटलाइज करें, बोरवेल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना, ये सब चीजें लेकर के ये चीज हमने उस समय से करनी आरंभ की थी। अब ये जन भागीदारी से इसे जोड़ देने से ये और अधिक सशक्त बनकर सामने आता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है और लोगों का जुड़ाव भी है।
0: जल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें समुदाय की भागीदारी हमारे लिए, यानी कि भारतीय

0: अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हिसाब से इस तरह की टेक्नोलॉजी पुनर्जीवित की। अब अफसोस की यह बात है कि जब हमने पूरी तरह पाश्चात्य जो ये वाटर कंजर्वेशन की चीजों का
1: जी
0: खासकर यह भावना आ गई कि सरकार ही इन सब का प्रबंध करेगी, तो लोग इससे विमुख हो गए जो प्राचीन टेक्नोलॉजी थी। अब यह जो नया JSJB अभियान है, इसमें कोशिश यह है कि पारंपरिक टेक्नोलॉजी को भी ना भुलाया जाए, उनका भी जहां जहां हो समुचित उपयोग किया जाए और उनका सशक्तिकरण नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए। देखिए, एक बात बहुत साफ है इस देश में कि बिना जनभागीदारी के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। वो हमने स्वच्छ भारत अभियान में भी देखा, वो हम जल जीवन मिशन में भी देख रहे हैं, वो हमने आजादी के आंदोलन में भी देखा था। तो इस मिशन में हम दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, पारंपरिक टेक्नोलॉजीज को भी और नई टेक्नोलॉजी को।
1: इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत जल डेटा गवर्नेंस की जरूरत पर जोर दिया और डेटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग की भी सिफारिश की। इसके साथ ही इसी साल जून में जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देश में जल संसाधन प्रबंधन के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशन के इस्तेमाल को मजबूत करने के लिए एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए। तो पारंपरिक जो हमारी जानकारी है उसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी समुदायों को पानी बचाने और उसके प्रबंधन के प्रयासों के लिए कितनी जरूरी है और इसमें कैसे मदद कर सकती है?
0: देखिए, जैसे अपने घर का हम बजट बनाते हैं, घर में कितनी कमाई हो रही है और घर का खर्चा कितना है, इसी तरह भविष्य में अगर हमें क्लाइमेट चेंज और बाकी चीजें देखनी है तो हमें देर सबेर पंचायतों में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में या फिर राज्यों में या फिर पूरे देश का अंततः वाटर बजट बनाना पड़े। अब अगर हम जब वाटर बजट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक ब्लॉक या एक पंचायत के पास कितना पानी उपलब्ध है। पानी की उपलब्धता सतह पर भी हो सकती है, पानी की उपलब्धता ग्राउंड वाटर पे भी होगी और पानी की उपलब्धता वर्षा के जल से भी हो या जो भी और तरीकों से पानी आ सकता है। इसके लिए कि हमें सही सही क्वांटिटी पानी की अवेलेबिलिटी की पता हो, बिना टेक्नोलॉजी के प्रयास के नहीं हो सकती। आपने बहुत सुंदर बात करी इसरो और बाकी चीजों की, कई तरह तो भुवन आदि पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध भी हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या है। जल शक्ति मंत्रालय के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की सूचना को पब्लिकली मुहैया कराते हैं। दूसरा पहलू है कि कितने जल का कहां पर प्रयोग हो रहा है। मैं अपने घर में कितना इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे घर तक कितना पानी आ रहा है पीने का, मेरे लिए जो पशु हैं किसानों के लिए उनमें कितना यूज हो रहा है, कृषि में कितना यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है। जब तक इस सब का पुख्ता डेटा हमारे पास नहीं होगा, जो कि मेरा ख्याल है डेटा कन्वर्जेंस से नीचे से ऊपर तक सही डेटा आने से, टेक्नोलॉजी या IoT बेस्ड सेंसर सिस्टम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें करना पड़ेगा, उसके बिना हम वाटर सिक्योरिटी या वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा पानी के बारे में जो डेटा है वो न सिर्फ सही हो बल्कि समय पर भी हमें मिले ताकि उसके हिसाब से प्लानिंग की जा सके।
1: जोशी जी, हम चाहेंगे कि आप JSJB पहल से जो जुड़ी हुई कुछ सफलता की कहानियां है वो हमारे साथ साझा करें। इन दो सालों में जब से ये पहल शुरू हुई है, विभिन्न राज्यों में ये चल रही है, किस तरह की सफलता की कहानियां आगे आई है?
0: यहाँ पर दो चीजें तो मैं कहना चाहूंगा। पहली बात कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जमीनी स्तर पर लोग कैसे आत्मसात करते हैं। जहां तक जल संरक्षण अभियान की बात है, ये 2019 से ही जब मैं आरंभ में भी इससे जुड़ा था, मेरा ये देखने में आया है कि कई क्षेत्रों में, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की समस्या है, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं या इवन लद्दाख के भी कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर महिला सरपंचों ने खासकर इसमें बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव वालों को जागरूक किया है, छोटे छोटे चेक डैम्स बनते हैं, कई तो नए जो नवयुवक सरपंच हैं उनकी प्रेरणा से जानवरों के लिए अलग तालाब बन रहे हैं, मनुष्यों के पानी के इस्तेमाल के लिए अलग बन रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत अब लोग इस पर जागरूकता लेने लगे हैं कि कैसे जो यूज्ड वाटर है जो किचन से या आपके बाथरूम से आ रहा है उसका कैसे अलग प्रबंधन करें, सोकपुट की व्यवस्था करें ताकि आपका भूजल जो है वो प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो अगर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेटा दिया था कि लाखों चेक डैम्स बन रहे हैं, लाखों बावड़ियां बन रही हैं, एक तो बड़ा अच्छा मैं आपको नीति आयोग का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में हमने एक सरोवर समृद्धि करके एक कार्यक्रम आरंभ किया ब्लॉक के सहयोग के साथ
1: जी।
0: एक साल से कम समय में बहुत कम लागत में गांव वालों की ही मदद से हम लोगों ने करीब 800 के आसपास एक एकड़ से बड़े साइज की वाटर बॉडीज का पुनरीकरण किया। तो इस तरह की स्टोरीज अगर आप जाएंगी तो पूरे देश भर में आपको मिल जाएंगी।
1: जोशी जी, पानी बचाना महज सरकारी अभियानों से जुड़ी कोई चीज ना होकर

0: नागरिकों और समुदायों के लिए रोजमर्रा के व्यवहार का एक नियमित हिस्सा कैसे बन सकता है?
1: एक तो हम कहते हैं IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन।
0: जी,
1: जब तक हम अपने बच्चों को स्कूल में या घरों में ही पानी के मूल्य के बारे में जागरूक नहीं करेंगे कि पानी अनमोल है, जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसकी शुरुआत तो घर से ही हो जाती है कि हम बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें एक उदाहरण बनकर दिखाएं कि पानी का बेजा इस्तेमाल न करें या अपव्यय न करें। यही बात खेती में लागू होती है कि कैसे मैं कृषि में वाटर यूज एफिशिएंसी ला सकूं। सरकार इतने इंसेंटिव देती है, आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात है या स्प्रिंकलर से सिंचाई की है या ड्रिप इरिगेशन है, बहुत तरह की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो सरकारी जो इंसेंटिव है, सरकारी जो योजनाएं हैं, इनके साथ कैसे हम गाँव वालों को, कैसे एक एक जन को जोड़ सकें, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज होगी लोगों को प्रेरित करने की। और सबसे बड़ी बात तो पानी का मोल पहचानने की ही है।
0: जी, पिछले 2 साल में जल संचय जन भागीदारी जो एक अभियान है, काफी सफल हुआ है। हमने अभी आपसे बात की, इसने काफी बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन फिर भी देश में जन भागीदारी के अंतर्गत जल संचयन और प्रबंधन के प्रयासों को बड़े पैमाने पर फैलाने में क्या अब भी कुछ बाधाएं हैं और ये किस तरह से इन्हें पार किया जा सकता है?
1: सबसे बड़ी बाधा तो मुझे लगता है अब हमारा जो पंचायत स्तर पर है, वहाँ लोग कैसे, जो पंचायत स्तर पर जिनके हाथों में नेतृत्व है या जो जिले स्तर पर जो अधिकारी हैं, कैसे वह इसको आम जन से जोड़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2014 से पानी से लेकर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनसे एक बहुत बड़ा विकास का संदेश निकलता है। वो संदेश ये है कि जो जल संरक्षण है वो केवल पर्यावरण का ही सवाल नहीं होता, पास पानी का अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो ये आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है, ये सामाजिक न्याय देता है, ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करता है और महिला सशक्तिकरण का भी यहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। इसलिए ये सारे जो कार्यक्रम है, अगर आप मिला जुला कर देखें तो ये सिद्ध करते हैं कि जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तब परिणाम कहीं अधिक मजबूत और स्थायी होते हैं।
0: युगल किशोर जोशी जी, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण में भागीदारी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के वाटर एंड लैंड रिसोर्स डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर युगल किशोर जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: सुर्खियों में

ये गाना आपने सुना फिल्म आपकी कसम से। अगला गाना फिल्म दूर गगन की छांव से। आवाज किशोर कुमार की और संगीत भी किशोर कुमार का।

0: centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: एक बार फिर स्वागत है आपका सांझ ढली में. मैं हूं आशिमा, साथ आपकी. अगला गाना फिल्म साजन बिना सुहागन से, आवाज यशुदास जी की और संगीत

बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए फिल्म आराधना से, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत एस डी बर्मन का।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीपा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। नई दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत ढही, दो लोगों की मौत और सात घायल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति पर आयोजित गोलमेज बैठक में कहा, बैठक का उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत ढहने से दो लोगों की मौत हुई जबकि सात लोग घायल हो गए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज शाम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे तेजी से बचाव कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करें। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और सुरक्षित बचाव पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF के महानिदेशक से बात की और हालात का जायजा लिया। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और NDRF मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं और घायलों को हर जरूरी मेडिकल सहायता दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए NDRF के महानिरीक्षक NS बुंदेला ने बताया कि 70 कर्मियों वाली NDRF की दो टीमें अभी घटना स्थल पर काम कर रही हैं।
2: दो टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को NDRF की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि स्थानीय जांच में पता चला है कि इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी। पुलिस ने कहा कि घटना के समय इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर 18 दमकल गाड़ियां तैनात की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाम शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छ व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क संपर्क को और मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित BB ब्लॉक की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए AF ब्लॉक तथा शालीमार बाग के C और D ब्लॉक की मेन रोड पर खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्यों का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से रिंग रोड तक नई सड़क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने YP ब्लॉक के 3 और WP ब्लॉक के 10 पार्कों में होने वाले सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य विकास को केवल बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित न रखकर हर गली, हर कॉलोनी और हर नागरिक तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। आदित्य के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: राजधानी दिल्ली को देश की स्टार्टअप और इनोवेटिव राजधानी बनाने की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति पर आयोजित एक विशेष गोलमेज बैठक में सहभागिता की। नई दिल्ली में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा यूथ फॉर गवर्नेंस के सहयोग से आयोजित इस बैठक में देश के प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों और उद्यमिता क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को प्रभावी बनाने के लिए उद्योग जगत तथा स्टार्टअप समुदाय से प्रत्यक्ष सुझाव प्राप्त करना और राजधानी में एक मजबूत और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना रहा। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बड़े खुशी की बात है कि दिल्ली के युवाओं से सरकार ने जो वायदा किया था उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत दिल्ली के स्टार्टअप्स के लिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और स्कूलों में इनक्यूबेशन सेंटर खोलने का समाधान सोचा था।
5: हम दिल्ली के युवाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से हर उस स्टार्टअप को सरकार का बैकअप मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत कुछ करना चाहता है इनोवेशन में और अपना एक पूरा डोमेन डेवलप करने के लिए हम उसे सपोर्ट करेंगे। सरकार की ये पॉलिसी बहुत आगे जाएगी और सभी युवा इससे जुड़ेंगे।
1: वहीं दिल्ली के शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि इस नीति के माध्यम से दिल्ली सरकार का उद्देश्य 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और मदद करना और साथ ही 4,00,000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
6: देश के बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स जिन्होंने दिल्ली से अपने स्टार्टअप को शुरू किया, ऐसे लोगों के साथ इस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार की कल्पना है कि हमारे प्रयासों से सरकार के इस कार्यकाल में हमारी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को हम मदद कर पाए।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस महीने की 12 और 13 तारीख को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रिहर्सल के दौरान शहर के 22 स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन और वाहनों की आवाजाही को रोका गया। नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने आगामी ब्रिक्स समिट के मद्देनजर नई दिल्ली एनडीएमसी के निवासियों से यह अपील की है कि वे अपने मोहल्ले में स्वच्छता के लिए एक मुहिम चलाएं। इसके अलावा श्री द्विवेदी ने बाजार के सभी दुकानदारों, सभी होटलों और संपत्ति के मालिकों से भी आग्रह किया है कि वो इलाके में सफाई अभियान आयोजित करें और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के 40वें रविवार के अवसर पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री चहल ने कहा कि लगातार 40 रविवार से चल रहा यह अभियान इस बात का एक प्रमाण है कि पर्यावरण संरक्षण अब केवल सरकारी प्रयास नहीं है बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक सतत अभियान बन रहा है। श्री चहल ने कहा कि पौधा लगाना सिर्फ एक शुरुआत है, असल जिम्मेदारी उसे जीवित रखकर एक मजबूत पेड़ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और आवासीय कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नागरिक समस्याएं श्री चहल के समक्ष रखी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दिल्ली सरकार ने आज वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और नागरिकों तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित यह अभियान इस महीने से मार्च 2027 तक साथ निभाएं प्रदूषण घटाएं विषय के अंतर्गत चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: इस अभियान के माध्यम से राजधानी के विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, उद्योगों, समुदायों और नागरिकों को एकजुट करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ वायु के लिए एक निरंतर तथा सामूहिक जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। सरकार ने बताया कि आने वाले महीनों में दिल्ली भर में जागरूकता, संवेदनशीलता और हितधारक सहभागिता से जुड़े विभिन्न गतिविधियां की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों, उद्योगों, रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशनों, बाजारों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हितधारकों, किसानों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों को लक्षित गतिविधियों के माध्यम से अभियान से जोड़ा जाएगा। जनसंपर्क को और व्यापक बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन, काय तथा अन्य रचनात्मक संवादात्मक गतिविधियों का भी उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण से संबंधित जानकारी और उससे समाधान को प्रत्येक नागरिक के लिए सरल बनाना है। इस अवसर पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए निरंतरता के साथ कार्य कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
8: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं, आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में अवैध रूप से रह रहे युगांडा के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये विदेशी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा और पहचान दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि अवैध अप्रवासी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आज नजफगढ़ रोड स्थित राजौरी गार्डन मार्केट चौराहे में एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली आबकारी विभाग ने लंबे समय से विभिन्न पुलिस थानों और उनके आसपास पड़े 2000 से ज्यादा जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की है। इसके साथ ही विभाग ने आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला में लगभग 5000 से अधिक लंबित पुलिस मामलों से जुड़े रासायनिक विश्लेषण का पूरा बैकलॉग समाप्त कर सक्रिय लंबित मामलों की संख्या 0 कर दी है। राजधानी के कई क्षेत्रों में आज सवेरे हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत ढही, 2 लोगों की मौत और 7 घायल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
10: हाँ यार।
9: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
10: अरे वही अपना 60 रुपया।
9: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
10: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
9: और दूसरा?
10: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
9: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
10: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
11: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
12: हर लेन देन अब है आसान।
13: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि 8 लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा

0: पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जाँच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की ने एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। 1 इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, 2 प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, 3 डिमांड और हार्म रिडक्शन और 4 क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। अमरीकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अदिति लुम्बा। Union Home Minister Amit Shah today outlined a 3-year roadmap to make India drug-free by 2029, calling for a coordinated national campaign against narcotics. Mr. Shah was addressing a press conference in Goa during his 3-day visit to the state. He said the government has strengthened enforcement, intelligence sharing, financial investigations and rehabilitation measures since 2019. More than 1.19 crore kilograms of drugs, valued at about 1,89,000 crore rupees, were seized between 2014 and 2024, while over 48.66 lakh kilograms were destroyed. The government has set a target of dismantling 100 international and interstate drug networks, bringing 100 narcotics-related fugitives to India and destroying 100 clandestine drug laboratories over the next 3 years. A multi-story building collapsed in Satyaniketan area of New Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, 4 persons were brought to the trauma center for treatment. Of them, 1 person was brought dead, 2 persons are in critical condition and 1 was discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. Delhi Lieutenant Governor Tarun

राग भैरवी पर आधारित था ये गाना। राग भैरवी की चर्चा करें तो इसका स्वभाव शांत और सौम्य है। विभिन्न भावों को व्यक्त करने वाला राग है राग भैरवी। एक और बेहद खूबसूरत गाना इसी राग का।

भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय और मधुर राग है राग भैरवी। इसका थाट भैरवी, जाति संपूर्ण संपूर्ण और गायन समय प्रातःकाल। हालांकि इसे दिन या रात के किसी भी समय गाया या बजाया जा सकता है। एक और गीत राग भैरवी पर आधारित। साथ ही मैं आशिमा लेती हूँ विदा। आप रहे हैं FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ही नया रंग, जिसमें खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक चिराग ने पहली बार जीता चाइना मास्टर्स का खिताब, रोमांचक फाइनल में चीन की जोड़ी को हराया। श्री चरणी और प्रेमा रावत का बेहतरीन प्रदर्शन, भारत ने महिला क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। दलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत, ईशान किशन ने जड़ा नाबाद शतक। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव, एलिना रिबाकिना, नाओमी ओसाका, कोको गॉफ सहित अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 89वां संस्करण सूरत में आयोजित किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से स्वस्थ रहने की अपील की। और जम्मू कश्मीर में हुआ 29वां सब जूनियर नेशनल सेपक टैक्रो चैंपियनशिप का आगाज। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चाइना मास्टर्स में खिताब अपने नाम किया है। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने BWF सुपर 750 चाइना मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में सात्विक चिराग ने चीन के हे जी तिंग और रेन शियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: फाइनल में जीतिंग और रेन शियांग ने शानदार शुरुआत करते हुए 5-0 की बढ़त बना ली और भारतीय जोड़ी पर दबाव बनाए रखा था। सात्विक और चिराग ने बेहतरीन वापसी की कोशिश की, लेकिन चीन के खिलाड़ी ब्रेक के समय 11-5 से आगे रहे और खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और पहला गेम 18 मिनट में 21-11 से जीत लिया। दूसरे गेम में भी चीन के खिलाड़ियों ने 2-0 की शानदार बढ़त बना ली, लेकिन भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए स्कोर 3-3 और 6-6 से बराबर कर दिया। इसके बाद सात्विक और चिराग ने खेल पर नियंत्रण बना लिया और ब्रेक के समय 11-7 से आगे रहे। कुछ जबरदस्त स्मैश की मदद से भारतीय जोड़ी ने अपनी बढ़त 17-11 तक पहुंचा दी। भारतीय जोड़ी ने चीन के खिलाड़ियों की वापसी की कोशिश को नाकाम करते हुए 21-13 से जीत हासिल की और मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में चीन के खिलाड़ी मजबूती से उतरे और 4-0 की बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर 7-7 से बराबर किया और ब्रेक के समय एक बढ़त बना ली। इसके बाद वे 9-8 से आगे हुए और आखिरी ब्रेक तक 11-9 की बढ़त बनाए रखी। सात्विक और चिराग ने संयम बनाए रखा और लगातार 4 पॉइंट जीतकर 21-17 से जीत हासिल की। इस तरह 70 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में उन्होंने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और इस मुकाबले पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। आज तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही हमने देखा, पहला गेम 11-21 से पीछे होने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए भारतीय जोड़ी ने आज जीत दर्ज की, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में कैसा रहा उनका प्रदर्शन, स्पेशली प्लेऑफ मुकाबलों में?
2: प्रशांत, जब इंजरी के बाद सात्विक और चिराग वापसी कर रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए, तो सभी की निगाहें उन पर जमी हुई थी, और जब क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई तो उनसे उम्मीदें जो है और बढ़ गई। क्वार्टर फाइनल से सात्विक और चिराग की इस जोड़ी ने एक पैटर्न अपनाया कि पहला गेम जीतकर, दूसरा गेम हारकर और तीसरे गेम में शानदार वापसी करके जो है अगले दौर में उन्होंने जगह बनाई थी। अगर क्वार्टर फाइनल की बात करें तो पहला गेम उन्होंने 21-13, दूसरा गेम 16-21 से उन्होंने हार है, और तीसरे गेम में उन्होंने 21-18 से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं सेमीफाइनल की अगर बात करें तो सेमीफाइनल में 21-16 से पहला सेट जीता, दूसरे में 18-21 से हार का सामना करना पड़ा और तीसरे में 21-11 से जीत कर फाइनल में जगह बनाई। लेकिन अगर फाइनल की बात करें तो यह पैटर्न उन्होंने आज थोड़ा सा उलट दिया, जहां पहले ही गेम में उनको 11-21 से हार का सामना करना पड़ा और दूसरे और तीसरे गेम में 21-13, 21-17 से जीत दर्ज करके इतिहास रचा।
0: जी, इतिहास रचा है। और विशेष जो ये जो जोड़ी है भारत की, सात्विक चिराग की, कोई भी टूर्नामेंट हो, जो भी बैडमिंटन प्रशंसक है उनकी सबकी निगाहें होती हैं, उनसे उम्मीदें होती हैं कि कोई भी टूर्नामेंट हो वो जीतकर खिताब भारत को देंगे। तो आज जो जीत दर्ज की है इन खिलाड़ियों उन्होंने, क्या कुछ नया रिकॉर्ड अपने नाम बना किया है उन्होंने?
2: प्रशांत, सात्विक और चिराग जो है इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में फाइनल में पहुंचे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे, और वहीं 2024 में इन्होंने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कोई चूक ना करते हुए ये जीत लिया है। और BWF वर्ल्ड टूर पर इस जोड़ी का यह 10वां खिताब है, यह इस साल का उनका दूसरा 750 खिताब और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। हालांकि ये लोग एशियन गेम्स के जो है मौजूदा पुरुष डबल चैंपियन हैं, और इस टूर्नामेंट में मतलब 2005 से शुरुआत के बाद से इसे जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। यह सात्विक और चिराग का 2026 में तीसरा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल था। वे मई में थाईलैंड ओपन में उपविजेता रहे थे और उसी महीने में बाद में सिंगापुर ओपन उन्होंने जीत लिया था।
0: लगातार जीत दर्ज की है जोड़ी ने, और उम्मीद करेंगे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी ये लय बरकरार रखें। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। महिला एशिया क्रिकेट कप के 9वें मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से हराया। श्री चरणी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
3: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुनीबा अली और शफाल जुल्फिकार ने पहले विकेट के लिए 27 रन जोड़े। मुनीबा ने 13 और जुल्फिकार ने 14 रन की पारी खेली। गुल फिरोजा को श्री चरणी ने खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। सदाफ शमास को 3 रनों के स्कोर पर प्रेमा रावत ने क्लीन बोल्ड किया। कप्तान फातिमा सना भी खाता नहीं खोल सकी और दीप्ति शर्मा की गेंद पर विकेटों के सामने पाई गयी। पाकिस्तान की पूरी टीम 55 रन पर सिमट गई। मुकाबले में भारतीय स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं प्रेमा रावत ने 9 रन देकर 3 विकेट चटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने महज 5 रन देकर 2 विकेट और शिफाली वर्मा ने 1 विकेट चटकाया। 56 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने आसानी से 3 विकेट खोकर 9वें ओवर में ही हासिल कर लिया। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शिफाली वर्मा 12 रन और प्रतिका रावल 4 रन बनाकर पवेलियन लौटी। स्मृति मंधाना भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और 9 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भारतीय पारी को संभालते हुए टीम को जीत दिलाई।
4: केम डाउन द ट्रैक एंड हरमनप्रीत कौर द कैप्टन ऑफ इंडिया फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल दैट वेंट द मैक्सिमम।

0: 50th game. It was a brilliant way to finish off the game as India beat Pakistan by 7 wickets.
1: हरमनप्रीत ने नाबाद 18 रन जबकि दीप्ति 12 रन बनाकर नाबाद रही। पाकिस्तान की ओर से फातिमा सना ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। इस मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए तो कई ध्वस्त किए। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
2: ये कई रिकॉर्ड बने जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना और कई ध्वस्त भी हुए। और ये मुकाबला कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी बेहद अहम था। उन्होंने कल 150वां मुकाबला भारत के लिए खेला। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने।
3: I'm grateful. I never thought I'll come that far, but all the people behind me who's been supporting, I'm really grateful and hopefully keep getting the support because I think without support, I'm nothing. And I'm grateful. And the entire team, sports staff, they've been outstanding. So yeah, I mean, many more to come. Hopefully, keep continue the good work.
2: विशेष जैसा कि हरमनप्रीत कौर ने अपना 150वां मुकाबला खेला, इसके अलावा किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और क्या कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बनाए?
4: प्रशांत, कल शेफाली वर्मा एक बार फिर से सुर्खियां बटोरती नजर आईं, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रनों का आंकड़ा छू लिया है और वे सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली ने यह कारनामा 22 साल 220 दिन की उम्र में किया। इसी का के साथ शेफाली ने आयरलैंड की गैबी लुइस, जिन्होंने 24 साल 347 दिन में यह कारनामा किया था, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही साथ शेफाली 3000 रन बनाने वाली 16वीं खिलाड़ी बनी है। इस लिस्ट में वह स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बाद भारत की तीसरी खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुकाबले में निराशाजनक प्रदर्शन के साथ ही पाकिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। 55 रन पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक न्यूनतम स्कोर रहा है। इससे पहले साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 56 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी।
2: बिल्कुल, भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा। उधर दिलीप ट्रॉफी का भी फाइनल मुकाबला जारी है। दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज टॉस जीतकर ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विशेष, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक कैसा रहा उनका प्रदर्शन?
4: प्रशांत, आज ईस्ट जोन ने जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 79 ओवर का आज खेल हुआ है, जहां 385 रन बनाए हैं और 4 विकेट खोए हैं। शुरुआत जो है ईस्ट जोन को बहुत शानदार मिली थी, जहां 100 रन की पार्टनरशिप हुई वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन के बीच। अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 44 रन बनाए। उसके बाद शिखर मोहन 85 रन बनाए और ईशान किशन जो है उन्होंने शानदार शतक लगाकर, वो अभी भी क्रीज पर मौजूद है, कुमार कुशाग्र के साथ, जो 75 गेंदों पर 63 रन बनाकर डटे हुए।
2: विशेष, कप्तानी हो, जैसा कि आपने बात की ईशान किशन की, विकेट कीपिंग हो, बल्लेबाजी हो, ईशान किशन का लगातार तीनों ही डिपार्टमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर भारतीय टीम तक का कैसा रहा उनका सफर?
4: प्रशांत, अगर ईशान की बात करें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि 2026 में अपनी कप्तानी में झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताकर भारतीय टीम में उन्होंने वापसी करी थी। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान जैसे अहम मुकाबले में उन्होंने शानदार भूमिका निभाई और अब एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन को लीड करते हुए फाइनल में पहुंचाया, साथ ही साथ बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया है।
2: मोहम्मद शमी के लिए भी ये मुकाबला बेहद अहम है, कैसे? विशेष,
4: 2027 वर्ल्ड कप जो है आने वाला है और मोहम्मद शमी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन जो है अपना बेहतर ही कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 36 विकेट उन्होंने झटके थे, वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट और विजय हजारे ट्रॉफी के 7 मैचों में उन्होंने 15 विकेट झटके थे। तो इससे वह ये दर्शाना चाहते हैं कि अभी भी वो भारतीय टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। हालांकि शमी ने 2025 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था।
2: अब देखना दिलचस्प होगा कि दिन का दूसरा दिन किस टीम के लिए अच्छा साबित होता है। और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज अलेक्जेंडर ज्वेरेव, एलिना रिबाकिना, नाओमी ओसाका, कोको गॉफ सहित अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अलेक्जेंड्रो ताबिलो को 6-2, 7-6, 6-2 से हरा। वहीं महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना ने यूलिया को 7-6, 6-3 से, वहीं नाओमी ओसाका ने एलिस मर्टेंस को 6-3, 3-6, 7-5 से हराया। उधर कोको गॉफ ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक तरफा मुकाबले को 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 89वां संस्करण आज गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया। इस बार कार्यक्रम का थीम विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा था। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवाओं से स्वस्थ रहने की अपील की।
5: 89th संडे ऑन साइकिलिंग की एडिशन सूरत में आयोजित करी गई। देश के 25,000 से अधिक स्थानों पर आज युवाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग करके नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का

0: निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए हम सब लोग साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश करें। आज के युवा अपने स्क्रीन के टाइम से थोड़ा सा समय अपने स्वयं के फिटनेस के लिए निकालें।
1: इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि साइकिलिंग सर्वश्रेष्ठ व्यायाम भी है।
0: साइकिलिंग करने से हम फिट रहते हैं। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग ओबेसिटी के सामने लड़ने का सरल माध्यम है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है और साइकिलिंग फ्यूल की बचत भी करता है और अपने स्वयं को फिट भी रखता है। तो हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें।
1: और अब बात सेपक टैक्रो खेल की। 29वें सब जूनियर नेशनल सेपक टैक्रो चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से हो रहा है। इस चैंपियनशिप में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी और कोच शामिल हुए हैं। ये टूर्नामेंट 6 सितंबर से 10 सितंबर तक खेला जाएगा। और अब बात पैरा तीरंदाजी पर। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के महिला कंपाउंड वर्ग में शीतल देवी, लालपति, सरिता, पायलनग और पुरुष वर्ग में राकेश कुमार, तोमन कुमार, गुरविंदर सिंह और श्याम एस स्वामी ने क्वालिफिकेशन राउंड जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं रिकर्व पुरुष टीम वर्ग में भारत पहले स्थान पर है और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। वहीं महिला टीम की बात की जाए तो वहां भी भारत पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका के जैवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरंगे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। रुमेश चैंपियन बनने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। उधर चीन के मोकी में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज जूनियर एशिया कप के पूल ए के अपने दूसरे मुकाबले में शानदार जुझारूपन दिखाते हुए जापान के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ खेला। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
3: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी।

0: एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
1: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
2: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
6: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
9: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared. whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared. It was an old building and was undergoing construction and renovation. An excavation in the basement reportedly caused a pillar to shift, leading to the collapse. The building was being used as a paying guest accommodation with children inside. All agencies are working round the clock with saving lives a top priority. The rescue operation will continue with full resources and all officials are present at the site.

0: बच्चों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक, राखी गढ़ी, मिट्टी के नीचे सोया, महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा के हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
3: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी पुरास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहाँ से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
2: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखी गढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखी गढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
1: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
4: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सर्प देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन, वराह, जीव और राम राय, ये पवित्र तीर्थ स्थान स्थान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी गढ़ी बसा हुआ है और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको। और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन, वराह, जीन, राम राय, आप होते हुए हांसी, हिसार, सिसवाल, मातर श्याम, भादरा, रावस्तर, सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, तो सरस्वती से इस पर संबंध है।
2: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहा गया है।
4: सभी नदी के किनारे है, अब वो लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके तो जहाँ तक सरस्वती संगम होता था, सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास, इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदीहि। इसका मतलब है कि दृषद्वती, आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव स्वस्थ और देव वाक इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखीगढ़ी रहा।
2: राखीगढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
5: राखीगढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखीगढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखीगढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 और 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित हैं वो प्राप्त हुई है। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पगी ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखीगढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
0: राखीगढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
3: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं, जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिले।
0: राखीगढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
5: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, से 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभांड मिले हैं, जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
2: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखीगढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखीगढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
6: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखीगढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से, राखीगढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
7: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टीजियस

0: साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें उसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में उसमें राखी गले का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियंस बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स, लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया। और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है। अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोग हड़प्पन लोगों के ही वंशज है, इसका एक प्रमाण मिलता है। वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो ये कंटिन्यूटी हमको दिखाई देते है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ से मिला है।
1: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
2: खुराई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं। कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती हैं, जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और विविधता आई। पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरिस्ते और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
3: लगभग 4,000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
4: 8,000 से 5,000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8,000 से 3,000 ईसा। उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है, उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जिसे

0: जोड़ाड़ो सिंध के, हड़प्पा रावी के और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के और राखीगढ़ी और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान विश्वद्रथ के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल तब नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था हिंदू सभ्यता वालों ने तो, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई और उसी समय में ये सरस्वती जी, दशरथवती और ये इसकी सहायक नदियां सूखने लगी और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा, लोग शहरों से क्या करते भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया, तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध, वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था, जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल भी जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6 आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
2: ASI जहाँ भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है तो जरूर वहाँ के स्थानीय लोगों को एक तो ASI की काम करने की पद्धति का पता चलता है और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहाँ पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है, साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण है, जो इस चीज के जो है साधन है, उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहाँ तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई ट्यूनों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहाँ पर है, तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहाँ पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
3: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है, इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
4: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी, सहापुर और रोकी था दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है,

0: और क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखी गढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
1: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखी गढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
2: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखी गढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखी गढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
3: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया राखी गढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लग गई है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
1: राखी गढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा, राखी गढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा आलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा आलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
4: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखी गढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है और राखी गढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखी गढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियल अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियल्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरप्पन बैरियल्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
4: GPR, मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स है आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये

0: स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली बताएंगी, बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
1: राखी गढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
2: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध

0: बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इस हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। चीन के सेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हेजी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. Three persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Mr. Sandhu directed all concerned agencies to work in complete coordination to ensure swift rescue efforts. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela, said that two NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Union Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Health Minister J.P. Nadda also spoke with the Delhi Chief Minister and took stock of the situation. Mr. Nadda assured all possible support from the Ministry of Health. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a three-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a four-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है।
3: We have prepared a roadmap to make India drug free by 2029. We have identified the period from 2026 to 2029 as a mission mode period with clearly defined timelines and targets. Our vision document is based on four key pillars. First, intelligence and operations based enforcement. Second, effective control over precursors and synthetic drugs. Third, demand reduction and harm reduction. And fourth, capacity building and cooperation.
1: Mr. Shah stated that drugs worth around 1.89 lakh crore rupees were seized between 2014 and 2026. The Home Minister also highlighted the government's development efforts in Jammu and Kashmir. He said the Union Territory is now on the path of progress and development, while Naxalism is becoming a thing of the past under the Narendra Modi-led government. Vice President C.P. Radhakrishnan today urged students to stay away from drugs and restrict social media usage. He called upon the youth to lead healthy and disciplined lives and contribute towards building a drug-free India. He also advised students to use social media constructively and not allow it to consume excessive time. Mr. Radhakrishnan was addressing the convocation ceremony of Srimant Shankardev University of Health Sciences at Guwahati in Assam. The Vice President reached Guwahati today on a two-day visit to Assam. Union Science and Technology and Earth Sciences Minister Dr. Jitendra Singh has called for taking country's rapidly expanding startup ecosystem beyond the metropolitan centres. He also stressed on creating stronger linkages between science, startups and industry to accelerate the journey of indigenous technologies from laboratories to the marketplace. Dr. Singh was addressing the inaugural session of the two-day 6th RISE Conclave in Kolkata today. Floods have affected normal life in several parts of Bihar, with major rivers including the Ganga, Gandak and Kosi flowing above the danger mark. In view of the rising water level of the Ganga, authorities are maintaining heightened vigilance in downstream areas. The river has crossed the highest flood level at several ghats in Patna. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched their maiden title at the China Masters in Shenzhen today. The Indian duo defeated China's He Jiting and Rei Xiang Yu in the summit clash to secure country's first ever title at the tournament. And that is the end of this news bulletin.
0: Namaskar. Akashwadi se Vishw Darpan ke saath main Ashutosh Mishra. मुख्य समाचार। भारत ने विश्व मानचित्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संप्रभु क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा। बलूचिस्तान की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैन्य अभियान, गिरफ्तारियों और हवाई हमलों की खबरों के बीच कर्फ्यू जारी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से हवाई यात्रा बाधित, 1,00,000 से अधिक यात्री फंसे। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रों को बढ़ावा देने से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर अफ्रीका को मानचित्रों पर उनके वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात में दिखाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। उसने चेतावनी दी कि अगर अमरीका की आक्रामक कार्रवाई जारी रही तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं कड़ा जवाब देंगी। यह तनाव IRGC की नौसेना द्वारा रात में किए गए हमलों के बाद और बढ़ गया। IRGC ने कहा कि उसने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में 3 तेल टैंकरों और अन्य स्थानों पर अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। हॉर्मूज जलडमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया कि उसकी नौसेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही

0: रिमोट से संचालित अमरीका की एक नाव को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान के खुजदार जिले की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के सैन्य अभियान के कारण प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अभियान के दौरान लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ लोग लापता हुए तथा हवाई हमला भी किया। द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार कथित अभियान के दौरान सुन्नी इलाके से करीब 25 लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। बाद में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। जहरी के अन्य इलाकों में भी इसी तरीके के अभियान चलाए जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार सुन्नी इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कथित हमले में एक महिला की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सेकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। ज्वालामुखी की राख जावा के ऊपर 20,000 फीट और सुमात्रा की ओर 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को फांसी दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थ के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। एक रिपोर्ट।
1: आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की बात भी सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था और उन्होंने पहली बार तभी उन पदार्थों को देखा। मिस्र के कानून के मुताबिक मौत की सजा को अंतिम रूप देने से पहले ग्रैंड मुफ्ती से धार्मिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। यह मंजूरी मिलने के बाद सजा को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि दोषियों के पास अभी भी फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए। करीब 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा 750 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे रसायन भी जब्त किए गए। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले भी मिस्र में बड़ी संख्या में मौत की सजाओं को लेकर चिंता जताता रहा है। संगठन का कहना है कि मिस्र में ड्रग्स तस्करी जैसे अपराधों में भी अक्सर मौत की सजा दी जाती है, जबकि इनमें जानबूझकर हत्या शामिल नहीं होती। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: ओपेक प्लस के 7 प्रमुख देशों ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान के प्रतिनिधियों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की।
2: ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। ओपेक प्लस ने सितंबर में कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 1,88,000 बैरल की वृद्धि कर वर्ष 2023 की स्वैच्छिक कटौती को समाप्त कर दिया है। ये बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरुमध के आसपास व्यवधानों सहित तेल निर्यात में जारी रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष मई में राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए ओपेक प्लस से अलग हो गया था। उसका कहना था कि वह बाजार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में अधिक प्रभावी योगदान देना चाहता है। ओपेक प्लस की अगली बैठक अक्टूबर में होने की उम्मीद है, जिसमें बाजार की स्थिति और तेल उत्पादन स्तर की समीक्षा की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस महीने की 12 और 13 तारीख को भारत मंडपम में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चीन के चियांगशी प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं। तूफान सॉडल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण यह आपदा आई। बचाव कर्मियों ने आज एक ढहे हुए घर से लापता व्यक्ति का एक शव बरामद किया। 2 अन्य लोगों को बचाया गया है।

भारत ने विश्व मानचित्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संप्रभु क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान अमेरिका का तनाव बढ़ा। बलूचिस्तान की जहरी तहसील में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैन्य अभियान, गिरफ्तारियों और हवाई हमलों की खबरों के बीच कर्फ्यू जारी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से हवाई यात्रा बाधित, 1,00,000 से अधिक यात्री फंसे। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और 10 सेकेंड और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार। और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आप तमाम सुनने वालों का मैं शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। कहते हैं सावन सिर्फ मौसम का नाम नहीं है, ये तो दिल के किसी कोने में छुपी हुई मोहब्बत को आवाज देने का एक बहाना भी है। जब आसमान पर बादल छा जाए, हवाओं में मिट्टी की खुशबू घुल जाए और अचानक किसी अपने की याद दिल के दरवाजे पर दस्तक दे जाए, तो लगता है जैसे हर बूंद कोई पैगाम लेकर आई हो। और इस मौसम की सबसे खास बात यह है कि इसको इश्क का मौसम भी कहा जाता है। इन्हीं हसीन फिजाओं में कभी किसी के साथ चलने का ख्वाब, कभी दूर बैठे किसी अपने से मिलने की आरजू और कभी बस उसकी यादों में खो जाने का एहसास, यही तो है सच्चे इश्क की खूबसूरती। और ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हर सिंगार के इस महफिल में हम लेकर आए हैं आपके लिए। 1967 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म मिलन का ये बहुत ही प्यारा नगमा लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

मुकेश साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म मिलन से, और यह फिल्म आई थी 1967 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा रोमांटिक गीतों की हर सिंगार, और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर मोहब्बत का अपना कोई घर होता तो कैसा होता और उसकी छत कैसी होती? शायद उस छत पर चांदनी बिखरी होगी, आसमान में सितारे होंगे और पास बैठा होगा कोई अपना, जिसकी खामोशी भी दिल के लिए एक मीठी सी गुफ्तगू बन जाए। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यही तो है, वो आने वाले कल को भी आज जितना हसीन बना देती है। एक साथ चलने का ख्वाब, एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी गुजारने की आरजू, और दिल में बस एक ही यकीन कि अगर तुम साथ हो तो हर रात सितारों से सजी होगी। ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम हाजिर हैं हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में, और ये नगमा है 1970 में आई फिल्म जीवन मृत्यु से। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में आनंद बख्शी के खूबसूरत अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब के मधुर संगीत से सजा ये गीत मोहब्बत की कहानी को कुछ यूं बयान करते हैं कि बस सुनते ही रह जाए, और मोहब्बत के उसी हसीन ख्वाब को आवाज देता ये नगमा हमें उसी दौर में लेकर जा रहा है जब आपने कभी इश्क किया होगा। तो आज की सुहानी रात में अपने किसी खास शख्स को याद कीजिए और महसूस कीजिए उस इश्क को जो अपने आने वाले कल को रोशन करने का वादा करता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

बातें सुनी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में, जहां बातें प्यार मोहब्बत की, आपके दिलों की और गुजरे जमाने के उन खूबसूरत एहसासात की, जिसमें हम आपके लिए उन चुनिंदा नगमों को लेकर आते हैं जो सदाबहार हैं और हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले जब बात मोहब्बत की चली है और रोमांटिक गीतों के साथ हम हाजिर हैं, तो मोहब्बत हमेशा लफ्जों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी दो आंखें ही वो सब कुछ कह देती हैं जिसे कहने में पूरी उम्र कम पड़ जाए। किसी की आंखों में छुपी शर्म, किसी नजर में ठहरी हुई चाहत और उस खामोशी में छुपा हुआ एक अनका

इजहार। शायद यही तो इश्क की सबसे खूबसूरत दास्तान है। कभी आपने भी महसूस किया है मोहब्बत को, जब कोई सामने हो और दिल कुछ कहना चाहे लेकिन जबां खामोश रहे, तब नजरें ही दिल की गुफ्तगू बन जाती हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है 1978 में आई फिल्म घर से। लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में गुलजार के बेहद नर्म और दिल को छू लेने वाले अल्फाज और आरडी बर्मन साहब की दिलकश धुन से सजा ये गीत उसी अनकही मोहब्बत का एहसास दिलाता है। तो आज की इस बेहद खूबसूरत रविवार की रात को हरसिंगार की इस दिलकश महफिल में आपके लिए वही नगमा आपके उन पुराने दिनों में ले जाएगा जो आपके दिल के बेहद करीब था।

में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। घर फिल्म का यह नगमा था लता जी और किशोर कुमार साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस रोमांटिक महफिल में। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं, कामयाबी, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा, लेकिन जनाब इनमें से कोई भी चीज उस एहसास का मुकाबला नहीं कर सकती जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, प्यार कहते हैं, इश्क कहते हैं। मोहब्बत कभी चेहरे पर मुस्कान बनकर आती है, कभी दिल में एक मीठी सी बेकरारी जगाती है, और कभी किसी खास इंसान की एक नजर पूरे दिन को हसीन बना देती है। क्या आपने भी इसे महसूस किया है? कितनी अजीब बात है ना, जिस दिल को हम संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं वही दिल किसी की एक मुस्कान पर अपना सब कुछ हार बैठता है। शायद इसी का नाम इश्क है, थोड़ी शरारत, थोड़ी चाहत और ढेर सारी खुशियां। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है 1978 की फिल्म त्रिशूल से। लता मंगेशकर जी, यशुदास और किशोर कुमार साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में, साहिर लुधियानवी के खूबसूरत अल्फाज और खयाम की दिलकश धुन से सजा ये गीत मोहब्बत की इसी खूबसूरत अहमियत को बड़े ही दिलकश, दिलचस्प अंदाज में बयां करता है। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत रोमांटिक महफिल में।

रिश्यूल फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार के इस दिलकश महफिल से, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, रहिए हमारे साथ। ठीक 11:40 पर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में, जो सुनहरे दौर के नगमे होंगे और साथ ही उनसे जुड़ी हुई कहानियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we will be taking calls from you, our listeners, on your mutual fund related queries. But do remember, listeners, that we do not address fund specific queries. You can call us on these numbers 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Karjor Abhinandan, Namaskar, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Shrotaon, aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke tamam sawalon ke jawab dene ki koshish karenge. Sawal poochne ke liye aap in numbers par hame phone kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, आपके सवाल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne Bharat ke yuvaon se duniya ka netritv karne wali vaishvik star ki consulting, accounting, vittiya aur kanuni companiyan banane ka ahvan kiya. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Over to you, Prachi.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। और इसी बीच अनुभव दिल्ली से हमारे साथ भुवन जुड़ रहे हैं। भुवन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी,

0: हम निवेश कर रहे हैं और क्या और कितना रिस्क हम बियर कर सकते हैं इस दौरान में।
1: श्रोताओं,
0: अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो बेधड़क पूछिए। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर आकार रस्तोगी हमारे साथ हमारे समक्ष बैठे हैं। आकार, अगर कोई जो फंड है वो अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कुछ समय से तो हाई एक्सपेंस रेशियो के जस्टिफाई होता है?
1: देखिए, जो आपके रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो आपके एक्सपेंस रेशियोज को कंसिडर करने के बाद ही आते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारे एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपका एनएवी में एडजस्ट होता है एंड रिटर्न्स आपका यूजली वो एनएवी के बेसिस पे ही होता है। एक्सपेंस रेशियोज के लिए रेगुलेटर ने सेबी ने कुछ मैक्सिमम सीलिंग्स लगा रखी है एंड एज फार एज अगर वो फंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है प्लस बाकी पोर्टफोलियो ठीक है एंड ऑल थिंग्स गोस तो देयर इज नो हार्म इन इट। बट साथ ही में मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ समय से बहुत दफ़े ऐसा होता है कि जो रीसेंट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कोई सा फंड ऐसा होता है अगर आप देखेंगे कि अच्छा अभी पिछले 6 महीने में ये एकदम नंबर वन पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए या पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और यहीं पे बहुत ज़्यादा निवेशक गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एकदम हम लोग आसपास के पिछले 6 महीने के पिछले 3 महीने के 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं और जो टॉप पे होते हैं हम लोग सीधा उसमें निवेश कर देते हैं। बट वो चीज सही नहीं है,
0: लोभ आ जाता है मन में तुरंत।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए, ये पास रिटर्न्स पे बेसिस पे होता है, एक आपको एक खाली इंडिकेशन दे रहा है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस एक लंबे समय में देखें, रोलिंग रिटर्न्स पे या फिर एक लॉन्ग होराइजन में 3 साल 4 साल 5 साल और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में, कि जैसे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो उस फंड ने अपने कैटेगरी के बाकी फंड्स के तरह कैसे काम किया है। केवल अभी ठीक पिछले कुछ 1-2 महीने की परफॉर्मेंस या 6-7 महीने की परफॉर्मेंस एक अकेला कारण नहीं होना चाहिए कि आप उस फंड में निवेश करें।
2: आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग आकार, यू नो, होल्ड्स स्पेशली ट्रू नाउ इट इज बिकॉज वी हैव बीन सीइंग मार्केट्स हैव बीन वोलेटाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो लाइक यू आर सेइंग दैट व्हेन यू आर असेसिंग अ फंड, व्हेन यू नो असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट गो बाय अ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। वी हैव टू लुक, एंड लाइक आई सेड, द मार्केट इज वोलेटाइल राइट नाउ, सो इट्स बेटर इफ अ फंड इज डूइंग वेल और हैज डन वेल, यू नो, इन दिस पीरियड, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी गो बैक अ फ्यू इयर्स एंड सी how it was performing, you know, or if a fund, you know, does well, or say let's a few months down the line when the market is stable, it'll be very pertinent to see how that fund was performing right now when the markets were volatile.
1: Right.
0: भोपाल से इस बीच हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: आकार जी को, मार्केट मंत्र टीम को भी नमस्कार। मेरा सवाल, माय क्वेश्चन इज अबाउट लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड हैज गॉन डाउन और नॉट परफॉर्म वेल बेसिकली ड्यू टू एफआईआई पुलिंग आउट लॉट ऑफ मनी। सो इफ एनीवन हैज अ सरप्लस फंड बिसाइड्स हिज रनिंग एसआईपीज, व्हाट वुड बी द राइट स्ट्रेटजी? शुड इट बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप बिकॉज दे आर डाउन, और वी गो फॉर कॉन्ट्रा फंड? विच स्ट्रेटजी वुड वर्क बेटर इन फॉर पीपल हु हैव सम एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट? थैंक यू।
1: शंकर जी, स्पेसिफिकली, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट इट्स समहाउ सीम लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू, यू नो, कैप्चर अ मार्केट अपॉर्चुनिटी और ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, बिकॉज यू नो एज यू वर सेइंग दैट यू नो दे आर डाउन एंड आई हैव अ बिट ऑफ सरप्लस। सो हियर आई वुड लाइक टू कॉशन यू बिकॉज यू नो इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू टाइम द मार्केट बिकॉज यू रियली डोंट नो इन विच डायरेक्शन द मार्केट वुड मूव। सो फर्स्टली एज यू आर टॉकिंग, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल don't, you know, invest with the intention of making quick money or you know getting good returns over the short term or you know being opportunistic. So the whole idea of investing in mutual funds is that you know you diversify your risk, and also here comes the concept of SIP, wherein you know you stagger your investment over a period of time. You just said that you already have an ongoing SIP, and if you have a surplus, what I would rather recommend is that you know even with that surplus amount you start another SIP to you know spread it over a period of time, maybe 6-7 months or a year, depending on how large the sum is, what value does it hold in your portfolio. And if you fear to consume that amount,

0: better you put that amount in a liquid fund and set up an STP from there. And whether to invest in large cap specifically or not, I would say it again depends on your whole portfolio and the time horizon and the risk appetite. You also mentioned about the contra fund. So definitely, when you are investing in equities, value funds and contra funds are a good add-on to your diversified portfolio, but they may not be necessarily completely invested into just large cap stocks. They might carry a slightly more risk. So it would be better to, look at your overall portfolio, and the value contra funds should be like 20-30% of your diversified portfolio.
1: We have the next caller with us online. Pradeep is calling us from Delhi. Pradeep, I will request you to just be a little more patient, because I want to ask Akar here. We're talking of contra funds. For those of our listeners who do not know, what exactly is a contra fund?
0: So contra funds usually invest in the strategies or the stocks of the companies which are currently not in favor or
1: against the tide.
0: Right.
1: Okay, now let's take the call. Pradeep has been very patient. Pradeep, welcome to Market Mantra and ask your question, please.
2: Namaskar, Market Mantra team. Pradeep bol raha hu Delhi se.
1: Ji, sawal puche.
2: Sir, mera na ek mid cap mein chal raha hai SIP. Beech-beech mein main usme lump sum bhi karta rehta hu. To sir, usme na main round mein 5 lakh ke round mein abhi jama kara chuka hu usme paisa. Lekin wo mid cap aisa hai ki uska portfolio bada concentrated hai kafi.
0: Ji.
2: To main soch raha tha ki mere ko abhi usme jaise 5 lakh rupaye mera jama ho chuka. क्या मेरे को कोई दूसरा मिड कैप ले लेना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि मैं बीच बीच में ना लमसम करता हूँ, तो जैसे मेरा एक चल रहा है फार्मा में कर देता हूँ, मैं डिफेंस में चलता हूँ, एसआईपी मेरी चल रही है, तो बीच बीच में जैसे करेक्शन आती है तो मैं वहाँ लमसम कर देता हूँ, तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है क्या सर? प्लीज आप बताइए।
0: देखिए, पहले जैसे आपने बताया कि आप एक मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रहा था, आप एक ही मिड कैप फंड में आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा रखा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए, डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। सारा का सारा आपका जो पोर्टफोलियो केवल और केवल एक फंड पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि केवल वो एक फंड में, तो आपको एक दूसरा पोर्टफोलियो, एक दूसरा मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं।
1: वो यही जानना चाह रहे हैं कि वो क्या करें ऐसा।
0: हाँ जी, तो उस केस में आप एक और मिड कैप फंड ऐड करिए, बट केवल खाली एक यही कारण नहीं होना चाहिए कि उसमें अभी इतना अमाउंट हो गया कि 5 लाख का उसमें पूंजी इकट्ठी हो गई, इसलिए मैं दूसरे एक और फंड में लगा देता हूँ, अब इसमें हो गया। अगर वो फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और जो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनी हुई है, और फंड्स में निवेश है, आपने ठीक ठाक करा हुआ है, इसके अलावा आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी करा हुआ है, तो उस सिनेरियो में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप किसी एक और फंड को ऐड करें, क्योंकि वहाँ पर वरना फिर आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे और बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे।
3: जी, अगर कई बार ऐसा होता है, और अभी हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी वही बात बताई जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, कि हम एसआईपी कर रहे होते हैं और साथ के साथ हमारे पास लमसम भी अमाउंट होता है। आपने कहा हम जब शंकर जुड़े हुए थे भोपाल से, तो आपने कहा कि जो लमसम अमाउंट है, अगर वो अमाउंट अलाउ करता है तो आप उसको एसआईपी के तौर पर इन्वेस्ट करें, ना कि आप लमसम लगाएं पैसा। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं?
0: देखिए, जब भी आप एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बेसिकली जो आपकी परचेज कॉस्ट है, आप उसको एवरेज आउट कर देते हैं। जैसे कि इसको एक, अगर मैं एक उदाहरण में समझाऊं, मान लीजिए आज किसी के पास एक 1 लाख रुपए लमसम है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और उसने पूरा का पूरा आज मार्केट में डाल दिया, और एकदम ही डालने के बाद एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो जो उसका पूरा का पूरा पैसा है वो आज के एक मार्केट पॉइंट पे घुस गया है, और वो एक रिस्क बन गया, एक एंट्री पॉइंट का रिस्क बन गया। वहीं पे अगर उन्होंने ये जो अमाउंट है कुछ 3 महीने या 6 महीने में स्प्रेड करा होता, तो वो सारा का सारा पैसा आज इन्वेस्ट नहीं हुआ,
3: तुरंत लाल में नहीं जाता।
0: बिल्कुल, तुरंत लाल में नहीं जाता, और वो आगे आने वाले समय में जब मार्केट नीचे गिरा होता, वो ज्यादा खरीद पाते, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट सस्ता हो गया, हमने ज्यादा चीजें खरीद ली। बिल्कुल, तो एक आपके जो परचेज कॉस्ट है उसको एवरेज आउट कर देता है, और आपका जो रिस्क है वो उससे कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो जाता है मार्केट में गलत एंट्री पॉइंट में घुसने का।
3: बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, इनका नाम है सुभाष। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: जी सवाल पूछे सुभाष जी।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते सवाल
2: नमस्कार सुभाष जी।
1: सर मैं ये जानना चाह रहा था कि निफ्टी इंडेक्स फंड को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो होनी चाहिए मेन या कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए?
2: नहीं, मेन उसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा। देखिए जितने भी सारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये फंड्स ऐसे नहीं होते कि इनमें एक फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये फंड्स केवल आपका जो मार्केट है, जैसे निफ्टी आपने खुद बोला, उसको ट्रैक करेंगे। जिस रेशियो में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के इंडेक्स में, ये फंड्स आपका सारा पैसा उसी प्रपोर्शन में उन्हीं स्टॉक्स में उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो आमतौर पर जितने भी निफ्टी के या कोई से भी इंडेक्स फंड्स है जो एक सेम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे, उनके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। उनके रिटर्न्स में जो अंतर के कारण होते हैं वो दो होते हैं केवल। एक होता है आपका एक्सपेंस रेशियो और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर को अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये हो गया कि वो जो उस इंडेक्स को ट्रैक करने का काम कर रहा है उसको डुप्लीकेट करने का, रिप्लीकेट करने का कितने अच्छे से कर पा रहा है। अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा तो फिर ज़्यादा डिफरेंस होएगा, अदरवाइज डिफरेंस कम होएगा। तो आप केवल एक्सपेंस रेशियो पे सॉर्ट करिए शुरुआती तौर पे, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा, और आप उस इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं।
0: वी डू हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, सुजन नेगी इज कॉलिंग अस फ्रॉम देयर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल सुजन, प्राची व्हाई डोंट यू गिव अस हाउ द गोल्ड सिल्वर प्राइसेस वर ड्यूरिंग द वीक?
3: बिल्कुल श्रोताओं, अन्य खबरों में सोने और चांदी के भाव समझ लेते हैं। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमरीकी डॉलर, अमरीकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और निवेशकों की धारणा इस उम्मीद से भी प्रभावित हुई कि अमरीकी फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में भी आक्रामक मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 2.2% गिरकर 152,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 2% की गिरावट के साथ 231,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 1.2% की गिरावट के साथ $4,441.90 प्रति ट्राई आउंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 1.4% फिसलकर $66.04 प्रति ट्राई आउंस पर आ गया। और सुजान नेगी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते,
3: बहुत अभिनंदन।
4: हाँ जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में मनी, मतलब मैंने लगा रखे है उसमें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है मेरे पैसे, तो वो माइनस में दिखा रहा है, तो क्या मेरे को स्विच ओवर कर देना चाहिए किसी दूसरे फंड में? और करना चाहिए तो कौन से फंड मुझे को, अब कौन सा फंड लेना चाहिए, और स्विच करने का मतलब चार्ज लगता है क्या? तो यही कुछ क्वेश्चन है मैम मेरे।
2: देखिए सुजन जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय में मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा है, और जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो केवल उस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के वजह से आप एकदम से ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपको उस फंड से जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा उसमें रहकर कुछ उस फंड को थोड़ा और समय दीजिए और देखिए उसका जो रिटर्न्स है। यहीं पे दूसरी चीज़ आती है, जो एक आपने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा कि अगर आप स्विच करते हैं तो क्या उस स्विच करने के चार्जेस लगेंगे। देखिए जब भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में जाते हैं या निकालते हैं तो केवल दो तरीके के चार्जेस होते हैं, या जो एक कॉस्ट होती है उनको चार्जेस नहीं बोलना चाहिए, जो आपको इम्पैक्ट करेगी। पहला है कि उस पर जो भी टैक्स है, टैक्स हमारा म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन्स के तौर पे लगता है, और जो इक्विटी फंड्स है यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपका जो टैक्स है वो 12.5% रहता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूएंस है कि हर फाइनेंशियल ईयर में इक्विटीज़ के और इक्विटी फंड्स के जो भी आपकी गेन्स होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के होते हैं, वो पहले 1.25 लाख पर टैक्स की छूट होती है, उसके बाद 12.5% लगता है। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपका जो टैक्स उस गेन्स पे वो 20% लगता है। दूसरा एक कॉस्ट रहता है एग्जिट लोड का, अगर आप एक फंड के एक डिफाइंड पीरियड से बहुत जल्दी निकालते हैं तो वहां पे को आपके एनएवी का कुछ परसेंटेज काट लेते हैं।
3: दिल्ली से हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं, प्रकाश जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
3: नमस्कार
5: सर, रस्तोगी जी को भी नमस्कार।
2: नमस्कार सर,
5: सर मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 साल के लिए,

0: तो दो अच्छे मल्टी कैप फंड बता सकते हैं?
1: फंड स्पेसिफिक तो हम यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी अन्य सवाल हो तो जरूर अगले सप्ताह आप संडे को हमें कॉल करें, हमें संपर्क करें. बहुत बहुत धन्यवाद.
2: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. द 7 कोर ओपेक प्लस कंट्रीज सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवैत, Kazakhstan, Algeria and Oman met virtually today to review global market conditions and outlook. They decided to keep the grouping's oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision comes after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting comes against the backdrop of continuing disruptions to the oil exports, including those linked to the conflict involving Iran and disruption around the Strait of Hormuz. These disruptions have limited the impact of OPEC Plus production decisions on oil, global oil supplies and prices. And let's take the next call. Kunj Bihari is calling us from Mathura. Welcome to the program. Please ask your question.
3: धन्यवाद.
2: जी.
3: मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताते हैं कि आपका जो पैसा है एक मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, वो मैनेजर किसके द्वारा बिठाए जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट है जो हमारा पैसा कंपनियों में इधर लगाते हैं, क्या वो हमारे फायदे के लिए ही ठीक है, क्या कभी वो हमारे को लॉस भी करा सकते हैं?
4: से जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये उस फंड म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा नौकरी पे रखे जाते हैं, उनको एक काम असाइन किया जाता है और वो लोग एकदम प्रोफेशनल्स होते हैं. सो फंड मैनेजर्स का रोल ही होता है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे लोग, अगर हम लोग शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं चेक कर सकते कि कब कौन से स्टॉक में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग पढ़ाई करके प्रोफेशनल तरीके से और एक काम करते हैं. सो उनका फ़ायदा बेसिकली है कि उनका जॉब है, दे आर बीइंग पेड फॉर दिस.
1: अन्य खबरों में घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह पश्चिम एशिया में होने वाले घटनाक्रम, कमोडिटी कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और मुद्रा बाजार में होने वाले बदलावों पर रहेगा. प्राथमिक बाजार में मुख्य बोर्ड के 12 आईपीओ अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं. अमरीका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े समेत प्रमुख आर्थिक संकेतक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. इस बीच जापान, ब्रिटेन और यूरोजोन के जीडीपी के अनुमान भी जारी किए जाएंगे. चीन में पीपीआई और व्यापार से जुड़े आंकड़े प्रमुख आर्थिक संकेतकों में शामिल होंगे जिन पर निवेशकों की नजर होगी.
2: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. Discussions are also expected on linking national fast payment systems such as India's Unified Payments Interface or UPI and Brazil's PIX, along with interoperability between central bank digital currencies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, US tariff pressures and high dollar clearing costs.
1: आकार कार्यक्रम में आने के लिए मेरे और अनुभा के और हमारे तमाम श्रोताओं के और कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
4: धन्यवाद.
2: And before we close, a look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar. Namaskar.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:41 और 5 सेकंड। और महफिल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत की, जहां हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर के सदाबहार नगमे को, जिनकी धुन आज भी दिल में वही कशिश पैदा करती हैं। आज का ये पहला नगमा 1954 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म आर पार से। इस गीत को अपनी खूबसूरत आवाज दी है गीता दत्त जी ने। गीत के बोल लिखे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत तैयार किया था सदाबहार संगीतकार ओपी नैयर ने। आर पार का संगीत अपने चंचल अंदाज, लय और शहरी मिजाज के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है, और इसी संगीत यात्रा में यह गीत अपनी एक अलग पहचान रखता है, और वो गीत है बाबूजी धीरे चलना। इस गीत में एक शरारत है और नटखट अंदाज भी, तो दूसरी तरफ गीत के अल्फाज में छिपी है एक दिलचस्प सी नसीहत कि मोहब्बत की राह में जरा संभल कर कदम बढ़ाएं, क्योंकि दिल का मामला है जनाब, जहां जरा सी जल्दबाजी भी की तो कहानी बदल सकती है। गीता दत्त की आवाज की खासियत थी उसमें मिठास भी थी, शोखी भी और भावनाओं की बेहद स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी। इस गीत में उनकी आवाज का यही अंदाज हम सबको बेहद पसंद है।

फिल्मार पर का ये नगमा था, आवाज थी गीता दत्त जी की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। और ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है, 1957 में आई ये बेहद खूबसूरत फिल्म भाभी से। इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में बल्ला सानी, पांडारी बाई, नंदा, डेजी ईरानी, जवाहर कौल, श्यामा, राजा गोस्वामी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। और इस फिल्म की खास बात यह है, इस फिल्म की नहीं बल्कि इस फिल्म के जिस गीत को हम आपके लिए लेकर आए हैं उस गीत के पीछे की एक बेहद खूबसूरत कहानी है। दरअसल चित्रगुप्त जो इस फिल्म के संगीतकार थे, इस गाने के लिए एक कुछ अलग तरह का रिदम ढूंढ रहे थे जो पतंग की ढील और खिंचाई को महसूस करा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टूडियो में एक असली पतंग मंगवाई, रिकॉर्डिंग रूम में एक असिस्टेंट को खड़ा करके पतंग की डोर को लगातार खींचने और ढीला छोड़ने के लिए कहा, ताकि उसकी जो सरसराहट की आवाज होती है वो माइक्रोफोन पर कैच कर सके। उसी असली आवाज के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और वही सरसराहट इस नगमे में भी जरूर सुनाई देगी। तो आइए सुनते हैं फिल्म भाभी का वही बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा था फिल्म भाभी से। आगे सुनिए दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस बेहद खूबसूरत महफिल गीत मेरे मनमीत में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दिल की दास्तान हुआ करते थे। आज की हमारी अगली पेशकश यानी अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगला जिसमें एक बेहद खूबसूरत बात कही गई है, खूबसूरत फिल्म भी है और ये गायक महान गायक हैं जिसमें टूटे हुए दिल की कशिश, जुदाई का दर्द और मोहब्बत की बेबसी सब कुछ एक साथ महसूस होता है। और ये नगमा है 1946 में आई फिल्म शाहजहां का। फिल्म में इस गीत को अपनी आवाज दी महान गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल, जिन्हें हम केएल सहगल के नाम से जानते हैं। इस गीत की एक खास बात यह है कि इसमें सहगल साहब की आवाज का वो दर्द सुनाई देता है जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचता है। उनकी गायकी में बनावटीपन नहीं बल्कि एक सच्ची तड़प है और गहरी भावनात्मकता भी महसूस होती है उनकी गायकी में। फिल्म शाहजहां का संगीत उस दौर के बेहद मशहूर और प्रतिभाशाली संगीतकार नौशाद ने तैयार किया था, जबकि गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। इस तरह सहगल साहब की दर्द भरी आवाज, मजरूह के अल्फाज और नौशाद साहब की धुन, तीनों ने मिलकर इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया।

आजाद फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मंजू रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी हमारी मुलाकात। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगर से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने कहा कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को कल दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उपमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। चीन के सेंजन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल्स में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टेंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: first ever title at the China Masters. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम हमेशा बात करते हैं उन हस्तियों की, उन घटनाओं की, उस शख्सियत की जो किसी ना किसी प्रकार हमें प्रेरित करती है और हमें एक नया पक्ष जानने के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर देती है, हमें कुछ पढ़ने का अवसर देती है, कुछ जानने का अवसर देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, हमेशा ही प्रेरित करते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में अभिनेता उत्तम कुमार का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तम कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो किस प्रकार से उन्होंने समाज को कुछ दिया और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू क्या थे, आज इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं, संजीव श्रीवास्तव हैं, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजीव जी आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रदीप जी आपका स्वागत।
5: धन्यवाद, बहुत बहुत।
3: तो आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता उत्तम कुमार का उल्लेख किया है।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबेन।
3: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर के लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी। तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
4: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो

0: उपलब्धियां हैं उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वो बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आमतौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार, लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत ही उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखे अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, दो तीन फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में तो दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी।
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं, तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं। तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं, तो अपने नाम को बिल्कुल सार्थक करते हैं। उत्तम कुमार सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है।
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम जी, बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायक या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसी लिए बनाई, उनको ध्यान में रखकर
1: जी।
2: तो वो इस तरह का उनका वो था, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया है, बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले। उसके बाद उनको इस तरह के सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या दादा साहब फाल्के, जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं, तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसका नायक का रोल है,

0: संगीतकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए। बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है। आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह वो निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पर ध्यान देते थे। वही खूबियां उत्तम कुमार, उत्तम कुमार ने देखिए निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई, निर्माता निर्देशक इतने की और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया। और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य भी अभी तक याद है, जब 1980 में उनका निधन हुआ तो इतना सैलाब था, जन सैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जन सैलाब बहुत किसी अभिनेता के रूप में शायद कभी ना देखा गया। बाद में तो हम चाहे नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस समय तो कोई था ही नहीं। फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई उनकी फिल्म, कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था। लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अनछुए पहलू थे, और अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो तुरंत वहां पहुंचे। जी, यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
0: देखिए उनके मेरे को कई गाने पसंद है, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं तो अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म
1: जी,
0: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी
1: जी।
0: और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहाँ इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहाँ खूब चली और उत्तम कुमार बहुत खुश थे देखकर कि मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली बनाई। और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई, बंगला में भी आई, अमानुष भी ऐसी फिल्म थी। इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो वहाँ बंदी वहाँ चली यहाँ नहीं चली, लेकिन अमानुष वहाँ भी चली और यहाँ भी चली। उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो अमानुष का टाइटल सॉन्ग है और उसको जो इंदिवर ने लिखा है, और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
0: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द हैं, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है। इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा, और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर, श्रीमती टैगोर पीछे लेटी हुई है और जब गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है। लेकिन
1: और ये शब्द भी अमानुष,
0: अमानुष बना के छोड़ा, अमानुष मतलब अभी भी लोग सोचते अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति हो जो अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं
2: अमानुष। जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के। चूंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहाँ, क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे,
1: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे,
2: नायक की छवि से जोड़ पाएंगे। सत्यजीत रे ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम कुमार।
0: असल में इनका जो है उसके अंदर एक शराबी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शराबी बन गया बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और श्रीमती टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है वो। तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए रहे हैं, तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं, और भी फिल्मों की कथा उन्होंने
2: लिखी।
0: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में जो भी फिल्म आई वो कमलेश्वर ने लिखी।
1: यानी ये गीत हमें बहुत सारी कहानियां,
0: बहुत सारी कहानियां जोड़ता है।
2: मैं उसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
1: जी बिल्कुल,
2: कि ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, वो यह फिल्म बहुत पसंद की गई।
0: अब देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी। तो ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था, तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम, लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जब घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे। आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन होने वाला था उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था, तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है
0: जी।
1: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई, 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी
0: जी।
1: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं, जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं
0: जी।
1: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से
0: जी।
1: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब
0: जी।
1: इस तरह के कई सारे काम करते थे, लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है, उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित करवाते थे, उनको देते थे, और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें ऐसी है, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है, ये आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की
0: जी। और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते थे, आर्थिक मदद करते थे।
1: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे
0: जी।
1: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है, अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी
0: जी,
1: इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो 1971 की जो वार थी उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत प्रसंकट किया, उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उनके कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी बहुत दिया
0: जी।
2: तो ये बड़ी बात थी। दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे, राशि उसके अंदर जो मेरी जानकारी है 5,000 रूपए उन्होंने उस समय दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी।
0: जी जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहिए सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए और जो जिस तरह भारत में तरक्की शुरू की उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया, जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि लोग उदास निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेन

0: प्रॉम्प्ट करें, उनको उबारें, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें। तो ये बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा भी नेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया। विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली। नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से या अपनी, और सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी। कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी, कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से, पाथेर पंचाली से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था। तो अपनी पहली फिल्म से हो गई, तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने। की अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना, हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हो, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाए, सब जगह देखे जाए। तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है वो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा, जो उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठी उनके पैरों में जाकर बैठ के उनको फूल दिया, सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और संग राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था। तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो इतनी सुपरहिट हो गई और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम होगी, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी, तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। विजयंती माला जी से मेरी कितनी बार बात होती है, तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती है कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया, तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई। विजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है, स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडियाकर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा शताब्दी का
1: जी, इस अर्धशताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी,
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
1: जी
2: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम
1: जी,
2: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना
1: जी,
2: उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरु दत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया
1: जी।
2: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में। इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी, और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि अग्नि परीक्षा जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था छोटी सी मुलाकात जिसमें वो खुद ही थे
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा दूसरी फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला में बनी,
0: आशापूर्ण देवी के उस पर थी
2: हाँ
1: जी,
2: उपन्यास जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लाल पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही क्लासिक फिल्म है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी
1: जी।
2: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो फिल्म जिसका नाम चुपके चुपके है, और धर्मेंद्र उसमें
1: परिमल त्रिपाठी का किरदार
2: रोल में आते हैं, और धर्मेंद्र की वो बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में अगर अगर हम उनकी हम पांच पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं तो उसमें चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में, हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से
1: जी।
2: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं
1: जी।
2: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम कुमार जी ने निभाया था,
1: और अंगूर
2: अंगूर गुलजार साहब की अंगूर वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये देखते हैं
0: शेक्सपियर के उस पे थी
1: जी, कॉमेडी ऑफ एरर्स
0: जी, लेकिन इसको बांग्ला में बहुत चली वो।
2: इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर तो बहुत सारी कहानियां हैं
1: जी।
2: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सावंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
0: वैसे धोती कुर्ता बांधा उन्होंने जैसे उसे बांधा
2: जी, वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और आयुष खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए उस वक्त, जिस समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था
1: जी।
0: और इसका ये बता दूं, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के
2: जी,
0: वो भी हुगली में वही पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहाँ वो किया गया। और सिमरिया टैगोर बता रही थी कि वहाँ इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखा रहा था बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, कहते हमने उसमें भी काम किया, पांच दिन हमने उस गाने को शूट किया वहाँ पर।
1: ये उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था उस समय।
2: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भाव को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
1: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है, एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
0: देखिए, पीछे कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा
1: जी,
0: तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चटर्जी जैसे आप जानते हैं, दोनों बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे, 5 साल छोटे थे इनसे
1: जी।
0: और उन्होंने, वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है, तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो की फिल्म थी 1948 में दृष्टिदान
1: जी,
0: दृष्टिदान। तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से
1: जी,
0: तो वो फिल्म नहीं चली। तो उनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही।

0: उसके बाद जंजीर से चले वो 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, उससे चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल इन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की, उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था। आप देखिए इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो ये सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह माना एक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की नकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, आप जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत भी इधर भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी जुड़े रहे दोनों सिनेमा से, और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे, इनके पोते भी जो है उत्तम कुमार के वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है। कि बाकी और एक बेटा था, उनकी डेथ होगी बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था वो, इनके जो फादर थे, हमारे सिनेमा था इंदिरा सिनेमा, उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि ये सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देख के, ये नहीं कि आप सिनेमा में आपको काम मिल जाएगा, तो थिएटर में काम करना शुरू किया। तो फिर थिएटर से जो है इनको धीरे धीरे वो हुआ, फिर 1948 में इनकी दृष्टि जान आई, और फिर जाके इनकी पिक्चर 1953 के अंदर इनकी चलनी शुरू हुई, और फिर देखिए वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार, आज हम याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके उनको दोबारा से लाइव कर दिया, जो उनको भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए, चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार, उत्तम कुमार कौन है, नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है, क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगवान में ज्यादा रहे, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने, और जैसे
1: बताया संजीव कुमार जी से चेहरा मिलता था, संजीव कुमार देखिए जो आंधी फिल्म है
0: वो भी कमलेश्वर ने लिखी थी, और कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले उत्तम कुमार को। अब आपने बात की मुझे याद आ गया, जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं
1: हुए।
0: आंधी फिल्म में, 1973 में जब ये फिल्म हुई, तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें,
1: सुचित्रा
0: सेन इसके अंदर थी, और सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी इनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह की। तो लेकिन आप देखिए वो आंधी फिल्म है, वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और शिल्पा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं, क्योंकि शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी, और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही, तो उनकी दो अभिनेत्रियां तो उनकी बहुत ज्यादा रही जो इनकी इस तरह। बाकी सुप्रिया देवी जो उनके साथ बाद में जीवन में आई, पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से, तो लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई, 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का, फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रही। तो इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया दूसरे ने ज्यादा कमाया तीसरे ने कम कमाया, तो इस तरह आता था कि बहुत आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में रंगमंच में बहुत काम किया, रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों ने किया, हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं, कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया,
1: और उस समय रंगमंच जन जागरण का कार्य करता था,
0: उनकी जेनिफर जो उनकी पत्नी रही वो भी उनको शशि कपूर को वही मिली, तो वो थिएटर करती थी उन अपने फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी। तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है, रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, मैं जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, रंगमंच के अंदर उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहां रहा, जिसनी फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे, तो इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है खासतौर, कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे, वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा की
1: राजधानी है संस्कृति। जी बिल्कुल,
2: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र

0: किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे
1: जी।
0: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ जो मैं चाहता हूँ उसे मेंशन करूँ, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
1: जी।
0: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी
0: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी। तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव
1: जी,
0: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने
2: भूपेन हजारिका को
0: मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है। और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं
1: जी,
0: तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है। तो सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है। और खासतौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है।
2: राज कपूर तो ऐसे हैं, उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
1: जी,
2: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने वो सॉफ्ट पावर की चर्चा की।
1: बिल्कुल, कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
2: राज कपूर भी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर, दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े जिनको बुलाया जाता, दोनों ने अभिनय, सत्यजीत रे उस तरह के, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही सकते, उनकी जन्म शताब्दी अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उत्तम कुमार की,
1: कुमार
2: संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और ओपी नैयर है उनकी जन्म शताब्दी मनाई है, अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राज कपूर, देवानंद, इन सबकी हम जो त्रिमूर्ति रही, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना, तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना, और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका अतीत, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाके उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया कि हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
1: जी, और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे, और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा मिलती है और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है
1: जी।
0: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, सामाजिक काम करते हुए
1: जी।
0: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: इस तरह की कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की

0: संख्या शायद 10, 20, 25 ही होती है जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है
1: जी।
0: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेन जी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
1: जी।
0: ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी
1: जी। तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
2: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है
1: जी।
2: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है
1: जी।
2: यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअल लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते हैं।
1: लेकिन बहुत
2: हमने क्या
1: कि
2: देखिए, हमने जिस दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में
1: जी।
2: कि जब ये बहुत आप किसी से कोई आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं, आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 में, उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश साहब बच्चन जो मेरे गुरु रहे, हम तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से। तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे, हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको जरूर कल दें, परसों दें, तरसों दें, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए, तभी गए तभी दीजिए, लेकिन पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने, लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, तारचंद बड़ियाती से मिलता था, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, उस समय के इतने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इससे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था। हमसे वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। तारचंद बड़ियाती जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसके स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा बताइए कैसे हैं, उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए जनपद पे गाड़ी रोककर, जब मैंने रिकॉर्डिंग कर आया गाने सुनिए, तो उस समय फिल्म समीक्षा की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सलाह ली जाती थी कि आप जानते हैं सिनेमा देखते हैं, लोगों की नफी पहचानते हैं, तो आप बताइए क्या है, हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं नहीं क्या फिल्म था, चित्रा बनाया, चलेगी नहीं, यही नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो के महावीर बड़जातिया थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे, क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे पास फोन आया, मैं चिंता मत कीजिए, ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं तो कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ, तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें, ये नहीं कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए, हम आपके कौन के लिए, सब लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया, इसने कहा था ऐसा होगा, पोस्टर दिखाया कि ये होगा, तो ये सब चीज अगर आप करेंगे गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचे हवाई हो जाए एकदम सब कुछ और हम ये बन जाए, पॉपुलर हो जाए, बहुत सारे पैसे कमा लें, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इसलिए आज भी हम बिल्कुल

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइस कन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें इसरो के निजीकरण या उनकी भूमिका कम किए जाने की बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और ना ही उसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य एक बड़ा, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष तंत्र तैयार करना है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिलों के प्रशासन ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। घटना के तुरंत बाद सिक्किम का जिला प्रशासन और आपातकालीन दल सक्रिय हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 8 सितंबर तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. A multi-story building housing a student-paying guest accommodation collapsed in Satyanaketan area of Delhi yesterday. Three persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magistrate

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

फिल्म का नाम दुनिया ना माने और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत मदन मोहन का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म का को निर्देशित किया था वी अवधूत ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी माला सिन्हा, प्रदीप कुमार, शेख मुख्तार, सुलोचना लाटकर और डेजी ईरानी ने। अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म छाया से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत सलील चौधरी का, और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था आशा पारेख और सुनील दत्त पर। ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म में सुनील दत्त, आशा पारेख, निरूपा रॉय और नज़ीर हुसैन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए निरूपा रॉय को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है आशा जी की आवाज़ में, और आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाज़ें थी आशा जी और रफ़ी साहब की, संगीत रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1967 में, जिसका निर्देशन किया था एम सादिक ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। अगला गीत फिर से आशा जी की आवाज़ में।

रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे।

7.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 32 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत गीता दत्त की आवाज में।

फिल्म का नाम आर पार और आवाज थी गीता दत्त की, संगीत ओपी नैयर साहब का और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का। ये फिल्म आई थी 1954 में और ये कॉमेडी रोमांटिक के साथ साथ कॉमेडी फिल्म भी थी जिसे निर्देशित किया था गुरुदत्त साहब ने, संगीत ओपी नैयर का था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी जॉनी वॉकर, श्यामा, शकीला, जगदीप और जगदीश सेठी ने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई मूवी से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और ये एक प्रेम कहानी थी जो 1960 में आई थी। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने और राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। और इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया और ये फिल्म अपने संगीत की वजह से श्रेष्ठ रही। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

गीत सुहानी प्रोग्राम का सफ़र आज के लिए यहीं तक। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के शांतिनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत

0: सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की दुखद घटना के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया है कि सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के तहत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिले के प्रशासन ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। घटना के तुरंत बाद सिक्किम का जिला प्रशासन और आपातकालीन दल सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. A multi-story building housing a student-paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. The Invajri Venkateshwara College of the University of Delhi will remain closed today, while Aryabhatta College

कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, आता भी किसको है ऐसा जादू वादू, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है तन और महक उठती है मेरे मन की मौलश्री। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 55 सेकंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

0: वाकई मिलन की रुत तो है, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो दिल एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और यहाँ जुड़ते हैं हम दिल से दिल तक। अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश, अगला गीत आप तक पहुँच रहा है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में।
1: मुझे कुछ कहना है

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम सभी के पास अपने नियर डियर से कहने के लिए बहुत कुछ होता है, पर हम सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, है ना? और सही वक्त पर आए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। मुझे लगता है कि जब दिल की बात कह दी जाए वही सही वक्त है। अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

बस ये बात तो सच है कि जब दिल किसी एक के प्यार में रंग जाता है तो फिर संसार के जितने भी रंग होते हैं वो सारे फीके लगने लगते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात जरूरी समझी। वक्त हुआ है 2:39 और 10 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।
1: तुमने वो क्या देखा

तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, मगर दिल की तसल्ली को जरा इजहार हो जाए।

लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, यूं मेरे दिल में चले आओ कि आहट भी ना हो।

रोकने का मन तो नहीं है, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी भारती। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सतनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह की संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सतनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने

ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बात करके स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिससे इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा, ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इसमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमराही में। ये इश्क शायद वही है जिसमें कोई पास न होकर भी दिल के सबसे करीब रहता है, जिसका ख्याल रात की खामोशी में भी मुस्कान बनकर होठों पर आ ही जाए, वही तो मोहब्बत है।

इंतजार की भी अपनी एक खूबसूरती होती है। जब दिल को यकीन हो कि जिस शख्स का इंतजार है उसकी एक मुलाकात सारी बेचैनी को सुकून में बदल देगी, तो वो इंतजार इंतजार नहीं होता।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय है प्रोग्राम हमराही का। कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि किसी अपने तक पहुंचने के लिए भी होता है। और जब सफर में किसी की याद साथ हो तो दूरियां भी कम लगने लगती हैं।

अच्छे से चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहब्बत, मोहब्बत हमेशा बड़ी बड़ी बातों की मोहताज नहीं होती। कभी किसी के कह दो मीठे बोल ही दिल में ऐसी जगह बना देते हैं जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाता।

दिल को कब किससे और कैसे मोहब्बत हो जाए ये शायद दिल भी नहीं जानता। बस एक एहसास धीरे धीरे दिल में उतरता है और फिर हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है।

मोहब्बत के बाद दुनिया वही रहती है, मगर उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। फूल कुछ ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, रातें कुछ ज्यादा हसीन, और किसी की याद कुछ ज्यादा ही प्यारी लगने लगती है।

आज की रात बस इतना याद रखिए, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो हर पल साथ दिखाई दे, सच्ची मोहब्बत तो वो है जो हर दूर रहकर भी दिल में अपना एहसास बनाए रखे। कुछ रिश्ते मुलाकातों से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान है। इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति और छोड़ के जा रही हूँ बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, और आपसे मिलूंगी अब मैं 4:10 पर जी हाँ प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस पुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश

0: विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वह 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन में तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियांगकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिले के प्रशासनों ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ताशकंद में कल अपने अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। इसके साथ ही भारत ने 20 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के मुख्य चरण में जगह बनाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. A multi-story building housing a student-paying guest accommodation collapsed in Satya Niketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Meanwhile, Delhi Mayor Pravesh Bhai has announced that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both the countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both the sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah stated that drugs worth around 1.89 lakh crore rupees were seized between 2014 and 2026. Indian Space Research Organization

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है कार्यक्रम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की नया रास्ता फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले ने, संगीतकार एन दत्ता, गीतकार साहिर लुधियानवी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म प्यासा सावन से किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार ओपी नायक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 101 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नसीब से सुमन कल्याणपुर, कमलेश अवस्थी और अनवर की आवाज में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मजा नहीं आ

अभी आपने गीत सुना फिल्म देवता से आशा भोसले उषा मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन, गीतकार साहिर लुधियानवी। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म नजराना से, लता मंगेशकर मुन्ना और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।

बहुत दूर बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिदेशक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वो संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के

एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। सुबह की पहली किरण के साथ भोलेनाथ का स्मरण मन को शांति देता है। जीवन में चाहे कितनी भी उलझने हो, विश्वास रखिए जिसके सर पर महादेव का हाथ हो, उसके रास्तों में उम्मीद का उजाला हमेशा बना रहता है। आज का दिन प्रार्थना से शुरू करें और संकल्प लें कि किसी के जीवन में दुख नहीं बल्कि मुस्कान का कारण बनेंगे।

मीठे शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक प्रेम से कहा हुआ वाक्य किसी थके हुए मन को हिम्मत दे सकता है। इसलिए आज कोशिश करें कि हमारी वाणी किसी के लिए बोझ नहीं, सहारा बने। शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। जिंदगी भी एक सुंदर संगीत की तरह है, कभी सुर ऊंचे होते हैं तो कभी धीमे। जरूरी ये नहीं कि हर सुर हमारे मन के मुताबिक हो, जरूरी ये है कि हम अपनी धुन को विश्वास के साथ निभाते रहें। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी जिंदगी का गीत अपने अंदाज में गाइए।